नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरे देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गया है। विगत 9 वर्षों में रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो से लेकर रेल कनेक्टिविटी में यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश विगत 9 वर्षों में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन गया है।

0: है, आज देखो किसान आत्महत्या कर रहा है, आज युवा बेरोजगार है, और ये सब परिस्थिति में महिला भी पूछ रही है कि जो कीमतें हैं आसमान से टकरा गई है। लेकिन ये नहीं, आपको कहीं भटकाना है, पूरे इशू को कहीं और लेके जाना है।
1: और जो लोग बेचारे छोटे छोटे घर बना के बैठे हैं उनको इलीगल बोल के तोड़ दिया जाएगा तो जाएंगे कहाँ वो? ये बुलडोजर कार्रवाई जो यूपी से शुरू हुई है ना, एक फैशन बन गया, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए।
2: एमआईएम आए, मुस्लिम लीग आए, राहुल गांधी आए, उद्धव ठाकरे आके खड़े रह जाए, बांग्लादेशी को पकड़ पकड़ के वापस भेजा जाएगा। बांद्रा टर्मिनस बांग्लादेशी मुक्त बन गया है।
3: हम लोगों ने ऐसा बचाव पक्ष दिया कि कहा कोर्ट को कि भाई ऑलरेडी जब डेमोलिशन 19 तारीख से हो रहा था, ठीक है, तो फिर पथरावबाजी 20 तारीख की शाम में अचानक कैसे होता है? जब अगर पहले से प्रिपरेशन कोई करता है तो फिर 19 तारीख को ही पथरावबाजी होना चाहिए था, तो 20 तारीख की शाम में कैसे पथरावबाजी हो सकती है? ये पथरावबाजी जब हुई है, जब मस्जिद को डेमोलिशन और जो मस्जिद का जो गुंबद है, जो तोम बोला जाता है, उसको डेमोलिशन किया, तब जाके लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई और वहाँ पर फिर मोमेंट थोड़ा सा हीट हो गया, तब जाके वहाँ पे फिर पथरावबाजी हुई। दोनों तरफ से फिर लाठीचार्ज भी हुआ, यहाँ से वहाँ से पथरावबाजी भी। जब अगर सुनियोजित तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है तो फिर ये जो डेमोलिशन के लिए आते हैं तो 19 तारीख को ही हो जाना चाहिए था ना, ये ऑल ऑफ अ सडन 20 तारीख की शाम में कैसे होता है? इस वजह से होता है क्योंकि ये लोग जानबूझ के मस्जिद को डेमोलिश करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट हुए थे। तो जब मस्जिद को डेमोलिशन किया गया तब लोगों ने भड़का और लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि हमको वो हमारे हाथ से हम तोड़ेंगे, हमको एटलीस्ट जो रिलीजियस बुक है वो भी हमको निकालने नहीं दिया।
4: On that note, sipping into very short break, more news and updates on the other side. Stay with us.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: फ्रॉम रूरल क्लासरूम्स टू ग्लोबल कैंपसेस इंडियाज एजुकेशन स्टोरी इज चेंजिंग द क्वेश्चन इज सिंपल हाउ डू वी मेक एवरी चाइल्ड फ्यूचर रेडी Visionaries, disruptors, policymakers, one big conversation charting the future of India's young minds. NDTV Learn Next Conclave, 25th May, only on NDTV.
2: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
0: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
3: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100
4: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
5: This car makes no sense, yet it makes every sense.

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
3: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.

0: Well, the latest we're tracking this morning, we're told security has been tightened around the Bhojshala complex in Madhya Pradesh ahead of prayers. With barricades set up in and around the complex, as tensions and legal questions surrounding this site continue to deepen. This development comes after the Muslim side approached the Supreme Court of India seeking permission to offer namaz at the site, arguing that prayers were historically held there and should be allowed to continue. But at the moment, Ajay Sharma joins us from Ground Zero with all that we need to know. Ajay, tell us, what is the security situation around the Bhojshala complex this morning, and how extensive are the restrictions and barricading measures?
1: देखिए बिल्कुल तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये भूशाला की तस्वीरें हैं, धार भूशाला है। यहाँ पे तमाम सारे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम आज सुबह से सख्त किए गए हैं। ये कई सालों बाद, सैकड़ों सालों बाद जो है भूशाला में शुक्रवार के दिन जब है जुमे की नमाज नहीं होगी और यहाँ पर निर्बाध तरीके से पूजा पाठ कार्यक्रम किया जाएगा। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहाँ पर ना सिर्फ लोग पूजा पाठ करते हुए तस्वीरों में नज़र आ जाएंगे, ये बैठे हुए तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा यदि बात करूँ तो सिक्योरिटी की, तो तमाम सारे सिक्योरिटी के इंतजाम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अलग किए हैं और अलग अलग फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है ताकि यहाँ पर शहर में जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो। और तमाम लोगों से जितने नमाजी हैं जो आम तौर पर शुक्रवार के दिन नमाज अदा करने के लिए भूशाला में आते थे, उनको उनकी तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है कि वो भूशाला आज नहीं आएंगे और अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करेंगे। लास्ट फ्राइडे यहाँ पर जो सिचुएशंस थी वो ये थी कि इसी जिस प्लेसेस पर मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर तमाम जो नमाजी थे वो नमाज अदा कर रहे थे और ठीक इसी परिसर के सामने नमाज पढ़ी जा रही थी। तस्वीरों में देख सकते हैं माँ वाघ देवी की प्रतिमा है, कुछ लोग हैं उनसे मैं बात करता हूँ जो यहाँ पर मौजूद हैं। आज काफ़ी अरसे बाद आप यहाँ पूजा पाठ करने शुक्रवार को आए।
2: हाँ, काफ़ी।
1: कितने साल बाद?
2: 25 साल बाद
1: मतलब मैं,
2: अब ये तो पहले से ही चल रहा है, 720 साल पहले।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: एंड जॉइनिंग मी लाइव नाउ टुनाइट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन टेलीविजन इज त्विशा शर्मा'स वेरी ओन ब्रदर मेजर हर्षित शर्मा, who has been at the forefront of the fight for justice for his beloved sister Twisha. Harshit, Major Harshit, thank you for agreeing to speak to me tonight. I would like to start by offering you our unqualified condolences. Our thoughts and prayers are with you, that you are fighting a fight even while you're grieving the loss of your beloved sister.
2: Welcome back. Let's get you the latest update from Maharashtra now. Mumbai specifically witnessed one of its biggest anti-encroachment operations as Western Railway launched a demolition drive near Bandra station to reclaim railway land worth nearly 600 crore rupees, triggering protests and violence. We are told at least 17 people have been arrested for rioting and stone pelting during the demolition drive in Mumbai's Bandra East. All the arrested accused have been sent to police custody till the 26th of May. Mumbai police told the court that stone pelting was pre-planned and that stones and cement blocks were arranged in advance. Social media reels spreading misinformation are under the police's scanner at the moment, and this demolition drive has now sparked a political showdown, with the opposition questioning the manner in which the action was carried out. Here are the crucial political reactions you need to listen to.
3: Andhra Purva mein jo karwai chal rahi hai, usme अतिक्रमण निकालने का कार्य चल रहा है। अतिक्रमण निकालते समय कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, पुलिस पर पत्थर फेंके, इसलिए पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको कंट्रोल में लाया, उसके बाद जो पत्थर फेंकने वाले थे उनको अरेस्ट किया है।
4: तिथे जे कोण अजित दादांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते हे लोकांची माती भडकवत होते, यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे। काल जे किरीट सोमय्या लोकांची घरं तुटत असताना मी तोडली करून आधीच त्यांना जे भडकवण्याचे धंदे करत होते, याचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे। म्हणजे एका बाजूला घरं तोडत असताना ज्यांनी लोकांची माती भडकवली, कोणी त्यांना प्रवृत्त केलं पोलिसांवर अटॅक करायला, या सगळ्या घटनेची चौकशी झाली पाहिजे। जर ती झाली नाही तर हे वारंवार संपूर्ण मुंबईभर महाराष्ट्रभर असंच होईल। उद्या जर कुठे दंगल घडली तर या दंगलीसाठी जबाबदार कोण, हे सुद्धा पोलिसांनी शोधून काढलं पाहिजे।
5: हर जगह भाजपा करना चाहती है। आज तो बेरोजगारी बढ़ रही है, आज देख रहे हो हीट बढ़ रही है, आज देखो किसान आत्महत्या कर रहा है, आज युवा बेरोजगार है, और ये सब परिस्थिति में महिला भी पूछ रही है कि जो कीमतें हैं आसमान से टकरा गई है। लेकिन ये नहीं, आपको कहीं भटकाना है, पूरे इशू को कहीं और लेके जाना है।
6: और जो लोग बेचारे छोटे छोटे घर बना के बैठे हैं उनको इलीगल बोल के तोड़ दिया जाएगा तो जाएंगे कहाँ वो? ये बुलडोजर कार्रवाई जो यूपी से शुरू हुई है ना, एक फैशन बन गया, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए।
7: एमआईएम आए, मुस्लिम लीग आए, राहुल गांधी आए, उद्धव ठाकरे आके खड़े रह जाए, बांग्लादेशी को पकड़ पकड़ के वापस भेजा जाएगा। बांद्रा टर्मिनस बांग्लादेशी मुक्त बन गया है।
8: हम लोगों ने ऐसा बचाव पक्ष दिया कि कहा कोर्ट को कि भाई ऑलरेडी जब डेमोलिशन 19 तारीख से

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: वेलकम बैक। यू नो, इफ दिल्ली फील्स लाइक अ लिटिल लेस लाइक द नेशनल कैपिटल दिस मॉर्निंग एंड अ लिटिल मोर लाइक अ कन्वेक्शन ओवन, यू आर नॉट इमेजिनिंग इट। From North India to central regions, temperatures have crossed the 45 degree mark in several areas across the country, with the IMD warning that extreme daytime conditions are likely to persist through this week. And the impact, well, that's visible everywhere. Schools have been shut in several states. Children are struggling through punishing afternoon temperatures. Animals, birds, they are under visible stress. In fact, zoos are deploying air coolers, special hydration measures. Rescue and cooling centers are becoming activated in some regions too. And there's another pressure point we can't ignore, which is electricity demand. India recorded a peak power demand crossing 270 gigawatts on Thursday, which is another reminder that this heat wave is now testing infrastructure, our energy systems, and public health capacity simultaneously. Speaking of the heat wave, afternoons these days have become particularly brutal for people working outside of office. I'm talking about gig workers. They have said they're not provided with any heat protecting materials. And my colleague Anushka spoke to some gig workers in the national capital about the scorching heat and how they're coping with it. Here's what they told Anushka.
2: It is almost the end of May and the temperature in the national capital is nearing around 45 degrees to 48 degrees Celsius. And in the afternoon, the heat is particularly brutal. Today, NDTV has reached on the ground amongst all the gig workers who are here, and we are trying to talk to them about how they are managing in this particular heat that everybody is right now facing in the capital.
3: बहुत problem है, traffic भी देखना पड़ता है, वहाँ जाके customer भी कई बार गुस्सा करते हैं।
2: आप बाहर निकलते तो उसके लिए कुछ आपके पास gears है, safety gear?
3: ऐसा वो कोई भी safety नहीं।
4: मैम, मुश्किल तो है, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, इसकी वजह से मुश्किल तो बहुत है। तो दिक्कत जगह तो कट जाते हैं और उसके बाद ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगते हैं।
2: देख, कितना मुश्किल होता है बिना किसी हीट यू नो प्रोटेक्टेंट के आप लोग इस तरीके से बाहर में घूमते रहते हैं?
4: मैम, बहुत मुश्किल होता है, धूप भी बहुत तेज़ होती है, फिर भी हम लोग डिलीवर करते हैं और ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम होता है, इन सब चीज़ों को देख करके फिर भी काम करते हैं हम लोग।
2: कोई सुविधा मिलती है जैसे ग्लूकोज?
4: नहीं नहीं, कोई सुविधा नहीं मिलती है। नहीं, कंपनी एक नया ऑफर निकाल रखा है, मतलब तेरे ऑर्डर पे 325 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं, तो वो भी मतलब 4 घंटे में लगाना होता है तेरे ऑर्डर, तो वो भी तेरे ऑर्डर लग नहीं पाते 4 घंटे में।
2: चलिए, सुबह के टाइम तो फिर भी लोग थोड़ा बहुत ठीक ठाक काम कर लेते हैं, दोपहर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है।
5: मेरी स्किन देखो कैसे जले गई है, ये देखो भाई की, ये भी ऑर्डर मारता है दोपहर में, देखो स्किन कैसे जले गई है, कमजोरी भी आ रही है शरीर में ऑर्डर मारने से। ये ग्लूकोज वगैरह का भी इंतजाम नहीं कर रहे, हफ्ते में एक दो दिन करते हैं बस।

0: उसमें अतिक्रमण निकालने का कार्य चल रहा है। अतिक्रमण निकालते समय कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, पुलिस पर पत्थर फेंके, इसलिए पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको कंट्रोल में लाया, उसके बाद जो पत्थर फेंकने वाले थे उनको अरेस्ट किया है।
1: तिथे जे कोण अजितदादांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते हे लोकांची माती भडकवत होते, यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे। काल जे किरीट सोमय्या लोकांची घरं तुटत असताना मी तोडली करून आधीच त्यांना जे भडकवण्याचे धंदे करत होते याचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे। म्हणजे एका बाजूला घरं तोडत असताना ज्यांनी लोकांची माती भडकवली, कोणी त्यांना प्रवृत्त केलं पोलिसांवर अटॅक करायला, या सगळ्या घटनेची चौकशी झाली पाहिजे। जर ती झाली नाही तर हे वारंवार संपूर्ण मुंबईभर महाराष्ट्रभर असंच होईल। उद्या जर कुठे दंगल घडली तर या दंगलीसाठी जबाबदार कोण हे सुद्धा पोलिसांनी शोधून काढलं पाहिजे।
2: हर जगह भाजपा करना चाहती है, आज तो बेरोजगारी बढ़ रही है, आज देख रहे हो हीट बढ़ रही है, आज देखो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आज युवा बेरोजगार है, और ये सब परिस्थिति में महिला भी पूछ रही है कि जो कीमतें हैं आसमान से टकरा गई है। लेकिन ये नहीं, आपको कहीं भटकाना है, पूरे इशू को कहीं और लेके जाना है।
3: और जो लोग बेचारे छोटे छोटे घर बना के बैठे हैं उनको इलीगल बोल के तोड़ दिया जाएगा तो जाएंगे कहाँ वो? ये बुलडोजर कार्रवाई जो यूपी से शुरू हुई है ना, एक फैशन बन गया, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए।
4: एमआईएम आए, मुस्लिम लीग आए, राहुल गांधी आए, उद्धव ठाकरे आके खड़े रह जाए, बांग्लादेशी को पकड़ पकड़ के वापस भेजा जाएगा। बांद्रा टर्मिनस बांग्लादेशी मुक्त बन गया है।
5: All right, so big controversy over that demolition drive. With that, we'll slip into a short break. On the other side, we'll tell you about how North India is reeling from a heat wave. More on that.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: Samarth Singh, but where does the probe stand when it comes to searching for the man, the husband, who has been absconding for over 10 days now?
1: Yes, you must have heard the police commissioner 3 days back when I spoke to him. He said that 6 teams are already, you know, on the they are hunting Samarth Singh, but the FIR was lodged after 2 days, and after good 5 days, Samarth was here only. He filed an anticipatory bail plea. That application was rejected by a court here in Bhopal, and after that, the police announced a reward of 10,000 rupees, which was increased to 30,000 rupees. And now Samarth Singh has filed an anticipatory bail plea application at the Jabalpur High Court, and that plea is likely to come up at around 2:30 p.m. But the state government has already made it clear that they will oppose his anticipatory bail plea application. The local court here in Bhopal has already rejected that bail plea.
0: All right, thanks for joining me live there, Anurag. We'll keep coming back to you for more. The Thrisha death case is now raising even more serious and deep questions. Investigators are now closely examining the CCTV timeline, possible gaps in footage, and what happened on the night when Thrisha died. Who had access to the surveillance system after the incident? Thrisha's mother-in-law, Garibala Singh, allegedly contacted the CCTV technician soon after Thrisha's death. Sources say Garibala called both the CCTV technician and the owner of the CCTV firm handling the system to her residence. NDTV also spoke with the technician and the firm owner, whom Garibala Singh had called to her residence after Thrisha's death.
2: तो अब ये जो सीसीटीवी फुटेज है इस पे सब गौर कर रहे हैं, जिस तरह से वो बॉडी वो सबसे पहले तो त्रिशा शर्मा ऊपर जाती है, वो किस समय ऊपर गई, उसके बाद जो लोग ऊपर से उसको नीचे लाए हैं वो किस समय हुआ, और इसमें भी कुछ अंतर आ रहा है जो डेट और टाइम, इसके बारे में क्या बता सकते
3: हैं? हाँ, वो मेरी टेक्नीशियन से बात हुई थी, 2 दिन 2 घंटे 20 मिनट का डिफरेंस है।
2: तो ये कैसे?
3: ये एक्चुअली क्या होता है, सीसीटीवी को समय पे अगर रिपेयर कराते रहें तो उसमें दिक्कत नहीं आती। ये 2.5 साल से इनने रिपेयर नहीं कराया है, तो इसमें सीएमएस बैटरी होती है, वो चेंज होनी होती है।
2: ठीक है, आपका कहना है कि आपकी
3: रिकॉर्डिंग पूरी है, रिकॉर्डिंग पूरी है और हार्ड डिस्क फुल भरी हुई है, जो पुलिस को हैंड ओवर किया हुआ है उसमें सारे फुटेज है।
2: ऑलराइट, आपका कहना है आपके टेक्नीशियन वहां गया अगले दिन, गया 11 बजे, और फिर 3 घंटे का सीसीटीवी फुटेज निकाल के उन्होंने पुलिस को दे दिया। अब ये फुटेज जो है लीक,
3: हार्ड डिस्क वगैरह सब उन्हीं के पास है, पुलिस के पास ही है वो।
2: ऑलराइट, और ये सीसीटीवी फुटेज अब लीक भी हो गई, ये किस कहां पर लीक हुई है? क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस
3: तो प्रश्न उठ रहे हैं, पुलिस का जो निकालते उन्हीं को दे दिया है।
2: जी बोलिए विनोद।
3: हाँ, ये हमें नहीं मालूम मैडम, हम तो वहां जब गए तो पुलिस वाले थे, उन्हीं को निकाल के दे दिया, डीवीआर भी उन्हीं के पास है।
2: क्योंकि प्रश्न उठ रहे हैं कि ये सब पब्लिक के सामने कैसे आया, मीडिया के पास भी सारी सीसीटीवी फुटेज है, तो लीक कहां से हुआ? आपका कहना आपके टेक्नीशियन ने सीधे पुलिस को हैंड ओवर किया था?
3: हाँ, हमारे बंदा जो गया था उसने सीधे पुलिस को हैंड ओवर किया।
2: ऑल राइट, ऑल्सो घर में सीसीटीवी हैं, कितने लगाए गए थे? आपका कहना है कि उसकी मेंटेनेंस नहीं की जा रही थी?
3: मैंने 2023 में, जनवरी 2023 में इनके 8 कैमरे का सेटअप लगाया था मैम।
2: 8 कैमरे का कहां कहां पर?
3: वो तो मैं तो नहीं गया था, मेरे टेक्नीशियन जाते हैं वहां पे, तो 2023 अच्छा। में जो लड़का गया था उसने 8 कैमरे का सेटअप लगाया था उनके यहाँ।
2: तो अभी तो हमारे सामने ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक जगह की है, जो सीढ़ी है वहां की है,
3: पर पुलिस वालों को पूरे 8 कैमरे का बैकअप दिया हुआ है और पूरी डीवीआर वगैरह सब पुलिस वाले लेके गए हैं।
2: ऑलराइट, और पुलिस के आपसे क्या बात हुई पुलिस वालों की?
3: पुलिस वालों ने नहीं बात करी, वही तो उसी दिन हुई कि भैया ये हमें सही चाहिए, उनको दे दिया हमने और फिर वो लेके चले गए।
2: Alright, so questions over, you know, the police probe has also been taking place. Vinod ji, फिर से हमारे viewers के लिए अगर आप बता सकते हैं आपको किस समय फोन आया, गिरिबाला सिंह ने आपको फोन किया था और अगले सुबह जो आपने अपने टेक्नीशियन को फिर भेजा तब ये सारा वीडियो मतलब दिया गया था पुलिस को?
3: मेरे पास सुबह 9 बजे फोन आया था, मैं जब पूजा कर रहा था 9 बजे के आसपास, तो मैंने उनसे बोला भाई मैडम अभी तो नहीं भेज पाऊंगा,
2: फोन आया
3: मैंने बोला था तुरंत भेज दो, तो

0: बोला अभी तो नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि मैं अभी घर पे हूँ, मैं ऑफिस खोलता हूँ 11 बजे, उसके बाद ही भेज पाऊंगा।
1: हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। रोहित से बात हो रही है।
2: जी सर, रोहित बात हो रही।
1: रोहित जी, आप लोग सीसीटीवी भी लगाते हैं ना?
2: जी
1: मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो कटारा हिल्स में गिरिवाला जी हैं, उनके घर में आप ही लोगों ने सीसीटीवी लगाया ना? जी
2: जी जी हमने लगाया है। बिल्कुल
1: अच्छा। तो 13 तारीख को उन्होंने कुछ शाम को आपको 4 बजे के आसपास फोन किया था। हेलो। हाँ, तो क्या पूछ रही थी वो उस दिन?
2: जी, वो पुलिस प्रशासन आया हुआ था तो उन्होंने फोन लगवाया था कि वो आपके सीसीटीवी टेक्नीशियन को बुलवा लीजिए, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग निकालना है।
1: अच्छा, तो सिर्फ रिकॉर्डिंग निकालने के लिए उन्होंने फोन किया था आपको, और कोई वजह नहीं थी?
2: जी, और कोई वजह नहीं।
1: कभी उन्होंने आपसे कुछ कहा कि उसकी टाइमिंग वाइमिंग चेंज हो गई है या कुछ खराब हो रहा है उसमें?
2: नहीं, जब 2023 में लगा हुआ था इसके बाद उनसे इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि उनके पास भी समय नहीं रहता था, कभी
1: अच्छा
2: सर्विस भी नहीं हुई उनकी।
1: अच्छा कभी सर्विस नहीं हुई, क्योंकि उसमें टाइम वाइम भी अलग आ रहा है ना, वो
2: हाँ
1: डेट टाइम अलग आ रहा है, तो वो
2: जी,
1: सर्विस नहीं हुई इस वजह से अलग
2: हाँ
1: आ रहा है आप कह
2: बिल्कुल
1: रहे हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: अच्छा, तो उस दिन सिर्फ आपको इसीलिए बुलाया था कि पुलिस प्रशासन आया तो कुछ फुटेज निकाल के देना है।
2: जी।
1: और आपको कुछ पता है क्या इस पूरे केस के बारे में कुछ? और इसके बाद का भी उन्होंने फोन किया क्या आपको 13 तारीख के बाद?
2: जी, थोड़ा सा किया था कि हमारा DVR पुलिस वाले ले गए हैं,
1: हाँ
2: तो
1: हाँ
2: पुलिस वाले ले गए थे कहीं,
1: हाँ
2: तो
1: हाँ
2: हमारे पास थोड़ा सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा सा हमारा कुछ करिए, तो नया DVR लगाया था
1: अच्छा,
2: दो
1: नया
2: दिन बाद
1: DVR
2: में।
1: लगा था। ओके, और पुराने DVR में कोई छेड़छाड़ या कोई ऐसी चीज तो नहीं हुई थी ना?
2: नहीं, सर कोई छेड़खानी नहीं हुई सर।
1: अच्छा ठीक है। आप और विनोद वाणी जी गए थे वहां पर?
2: नहीं, मैं अकेला गया था, ग्रोथ वाणी जी मेरे बना रहे बस।
1: अच्छा, ठीक है ना।
3: We have some breaking news coming in. The Delhi High Court has granted interim bail to activist and former JNU student leader Omar Khalid from the 1st to the 3rd of June in the 2020 Northeast Delhi riots larger conspiracy case in view of his mother's surgery. Omar Khalid, remember, had moved the High Court seeking 15 days of interim bail from the 22nd of May to the 5th of June after trial court on the 19th of May rejected his plea for temporary release. Nupur Dogra joining me live. Nupur, the details from court on this development.
4: Well, yes, Vedika, today he has been given a 2 days bail that he will be out on June 1 and he will have to surrender on June 3 back to the jail. He has just been granted this time to visit his mother who has undergone surgery. Now, remember, he had in fact sought 15 days of interim bail. However, the Delhi's Karkaduma court had in fact refused to grant him this relief. He moved against that order to the Delhi High Court. Now, Delhi High Court has, instead of granting him 15 days, has just granted him 2 days bail, and for 2 days he can in fact now visit his ailing mother.
3: So that update, that's the latest that we have for you. The Vijay government has seen two cabinet expansions in a span of 2 days, with the VCK and the IUML formally joining the cabinet. IUML MLA Shahjahan and VCK MLA Vanni Arasu took oath as ministers in the presence of the chief minister as well as the governor. The move has received sharp backlash from the DMK as well. DMK leaders have criticized this move, slamming the party's DMK leader A. Raja made a reference to a coconut tree, suggesting that the parties had bent over to give Vijay support. Hitting back at the DMK leader's comments, TVK termed the comments as uncivil and said that the party feared the end of its family monopoly. VCK too hit back, saying that indulging in slander will not benefit the DMK.
5: DMK spokesperson joins us on the phone line. Saravanan, good morning. How would you rate this morning for the DMK, the VCK, IUML, crucial allies of the DMK, which were part of the Secular Progressive Alliance, joining the cabinet with the TVK? Does this mean that the DMK's relationship with both the VCK and the IUML is over as of this moment?
6: Yeah, see, congratulations to TVK. What is never possible in the state of Tamil Nadu, they made it possible. This IRM, DIRM politics, this politics of horse trading was never there in the state of Tamil Nadu. Congratulations, TVK and its leader, Mr. Vijay, the chief minister. This politics is also making an entry into the state of Tamil Nadu. And see, they want power and they

0: विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: Some of the details of the affidavit that has been filed with the High Court to cancel Giribala's bail plea. We will bring you all those details and more through our coverage on this very important story. And NDTV has also exclusively spoken to Twisha's friends, who claimed that Samarth Singh, who is the husband of Twisha, would humiliate Twisha publicly. Listen in to that conversation.
1: कहीं ना कहीं उनके पीछे डिस्प्यूट चल रहे थे, जो बच्चे को लेके बात थी, तो उनकी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी थी, तो उसमें भी वो लोग उस पर बहुत टॉर्चर करते थे और ये बोलते थे कि ये किसका बच्चा लेके डोल रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो ऐसे में कैसे कोई भी मदर ऐसे बच्चे को क्यों लेके जाएगी जिसमें इतने एलिगेशंस हैं कि किसी और का बच्चा क्या है. तो इस वजह से कहीं ना कहीं उसने अवॉर्ड कराया और वो उसे कैरी नहीं करना चाहती थी.
2: आई हर्ड दैट कि समर्थ अपने फ्रेंड सर्कल में तुषा को ह्यूमिलिएट करता था, दैट इसको कुछ नहीं पता है. सीज गवार, क्या पढ़ी, क्या MBA है, क्या पढ़ी लिखी है,
3: उन पब्लिकली इंसल्ट ह्यूमिलिएट
2: इंसल्ट करते थे अपने फ्रेंड सर्कल के रिलेटिव्स के बीच में. इस तरीके की बातें करना, हर हमेशा उसके बारे में बुरा बोलना सबको कि ये इसको ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, कुछ नहीं कर रही हैं. सो ग्रेजुअली ये चीज़ बिल्डअप होने लगता है. एंड उसके बाद मुझे लग रहा
3: है क्यों क्या वो तो मिस पुणे रह चुकी है.
2: एग्जैक्टली,
3: शी वॉज अ आई मीन वेल एजुकेटेड, जॉब भी कर रही थी, वो वेल टू डू, फैमिली से भी थी.
2: एग्जैक्टली वही तो प्रश्न है ना कि आप जब शादी में रिलेशनशिप में जाते हो, एक तरफ आपने ऐसे ऐसे प्रॉमिस किया कि आई विल मेक हर फील कम्फर्टेबल इन माई हाउस. अगर आप वीडियोज़ देखेंगे समर्थ के शादी के, ही टॉक लाइक दिस. एट द सेम टाइम शुरुआत से ही आपने उसे डिप्रेशन में डाल दिया.
4: उनकी प्रॉपर वीडियोज़ है शादी में, जैसे जहाँ पे उसने बोला कि वो दूसरी सिटी में जा रही है और मैं इसका ध्यान रखूँगा. मतलब अब लग रहा है कि यस ये फेक प्रोमिसज थे. इससे तो ये पता चल रहा है कि वो उसका ध्यान ही नहीं रख पाए उसका.
3: ऐसी भी कोई गिरबाला कह रही थी कि आप लोगों ने ही काम मना कर दिया आने के लिए, कैंसिल करवा दिया टिकट एंड ऑल.
1: उसके पेरेंट्स 13 को जाने वाले थे, उनकी टिकट्स थी, लेकिन गिरिवाला सिंह जी ने ये बोला कि अगर आप इसे आएंगे और ले जाएंगे तो आज के बाद ये दरवाजे बंद हो जाएंगे.
3: ये
1: उन्हीं ने बोला था. एज ए पेरेंट्स अगर आपको उसके आपकी बेटी के इन लॉज बोलते हैं कि आप आओगे ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि वो घर उसका बर्बाद हो जाए.
0: Now the Twisha death case is raising even more serious questions. Investigations are closely examining the CCTV timeline, possible gaps in footage, and who had access to the surveillance system after the incident. Twisha's mother-in-law, Ms. Singh, allegedly contacted CCTV technicians soon after Twisha's death. Sources say Giribala called both the CCTV technician and the owner of the firm of the CCTV handling the system at her residence. We've spoken to both of them. Listen in.
5: तो अब ये जो सीसीटीवी फुटेज है इस पर सब गौर कर रहे हैं, जिस तरह से वो बॉडी वो सबसे पहले तो त्विशा शर्मा ऊपर जाती है, वो किस समय ऊपर गई, उसके बाद जो लोग ऊपर से उसको नीचे लाए हैं वो किस समय हुआ, और इसमें भी कुछ अंतर आ रहा है जो डेट और टाइम, इसके बारे में क्या बता सकते
6: हैं? हाँ, वो मेरी टेक्नीशियन से बात हुई थी, 2 दिन 2 घंटे 20 मिनट का डिफरेंस है.
5: तो ये कैसे?
6: ये एक्चुअली क्या होता है, सीसीटीवी को समय पे अगर रिपेयर कराते रहे तो उसमें दिक्कत नहीं आती. ये 2.5 साल से इन्हें रिपेयर नहीं कराया है, तो इसमें CMOS बैटरी होती है वो चेंज होनी होती है.
5: ठीक है, आपका कहना है कि आपकी
6: रिकॉर्डिंग पूरी है, रिकॉर्डिंग पूरी है और हार्ड डिस्क फुल भरी हुई है, जो पुलिस को हैंड ओवर किया हुआ है उसमें सारे फुटेज है.
5: ऑलराइट, आपका कहना है आपके टेक्नीशियन वहां गया अगले दिन, गया 11 बजे, और फिर 3 घंटे का सीसीटीवी फुटेज निकाल के उन्होंने पुलिस को दे दिया. अब ये फुटेज जो है लीक,
6: हार्ड डिस्क वगैरह सब उन्हीं के पास है, पुलिस के पास ही है वो.
5: ऑलराइट, और ये सीसीटीवी फुटेज अब लीक भी हो गई, ये किस कहां पर लीक हुई है? क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस
6: प्रश्न उठ रहे हैं, पुलिस का जो निकाल के उन्हीं को दे दिया है.
5: जी बोलिए विनोद.
6: ये हमें नहीं मालूम मैडम, हम तो वहां जब गए तो पुलिस वाले थे, उन्हीं को निकाल के दे दिया, DVR भी उन्हीं के पास है.
5: क्योंकि प्रश्न उठ रहे हैं कि ये सब पब्लिक के सामने कैसे आया, मीडिया के पास भी सारी सीसीटीवी फुटेज है, तो लीक कहां से हुआ? आपका कहना आपके टेक्नीशियन ने सीधे पुलिस को हैंड ओवर किया था?
6: हाँ, हमारे बंदा जो गया था उसने सीधे पुलिस को हैंड ओवर किया.
5: ऑलराइट, ऑल्सो घर में सीसीटीवीज हैं, कितने लगाए गए थे? आपका कहना है कि उसकी मेंटेनेंस नहीं की जा रही थी.
6: मैंने 2023 में, जनवरी 2023 में इनके 8 कैमरे का सेटअप लगाया था मैम.
5: 8 कैमरे का कहां कहां पर?
6: वो तो मैं तो नहीं गया.

0: था, मेरे टेक्नीशियन जाते हैं वहाँ पे, तो 2023
1: अच्छा
0: में जो लड़का गया था उसने 8 कैमरे का सेटअप लगाया था उनके यहाँ।
1: तो अभी तो हम हमारे सामने ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक जगह की है, जो सीढ़ी है वहां की है।
0: पर पुलिस वालों को पूरे 8 कैमरे का बैकअप दिया हुआ है और पूरी डीवीआर वगैरह सब पुलिस वाले लेके गए थे।
2: हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। रोहित से बात हो रही है?
3: जी सर, रोहित चाटुरी
2: रोहित जी, आप लोग सीसीटीवी भी लगाते हैं ना?
3: जी।
2: मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो कटारा हिल्स में गिरिवाला जी हैं, उनके घर में आप ही लोगों ने सीसीटीवी लगाया ना जी?
3: जी, हमने ही लगाया है। बिल्कुल
2: अच्छा, तो 13 तारीख को उन्होंने कुछ शाम को आपको 4 बजे के आसपास फोन किया था। हेलो, हाँ, तो क्या पूछ रही थी वो उस दिन?
3: जी, वो पुलिस प्रशासन आया हुआ था तो उन्होंने फोन लगवाया था कि वो आपके सीसीटीवी टेक्नीशियन को बुलवा लीजिए, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग निकालना है।
2: अच्छा, तो सिर्फ रिकॉर्डिंग निकालने के लिए उन्होंने फोन किया था आपको, और कोई वजह नहीं थी?
3: जी, और कोई वजह नहीं थी।
2: कभी उन्होंने आपसे कुछ कहा कि उसकी टाइमिंग वाइमिंग चेंज हो गई है या कुछ खराब हो रहा है उसमें?
3: नहीं, जब 2023 में लगा हुआ था इसके बाद उनसे इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि उनके पास भी समय नहीं रहता था, कभी
2: अच्छा
3: सर्विस भी नहीं हुई उनकी।
2: अच्छा कभी सर्विस नहीं हुई, क्योंकि उसमें टाइम वाइम भी अलग आ रहा है ना, वो
3: हाँ
2: डेट टाइम अलग आ रहा है, तो वो सर्विस
3: जी,
2: नहीं हुई इस वजह से अलग
3: हाँ
2: आ रहा है आप कह
3: बिल्कुल
2: रहे हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल
2: अच्छा, तो उस दिन सिर्फ आपको इसीलिए बुलाया था कि पुलिस प्रशासन आया तो कुछ फुटेज निकाल के देना है।
3: जी।
2: और आपको कुछ पता है क्या इस पूरे केस के बारे में? कुछ और इसके बाद का भी उन्होंने फोन किया क्या आपको 13 तारीख के बाद?
3: जी, थोड़ा सा किया था कि हमारा डीवीआर पुलिस वाले ले गए हैं,
2: हाँ
3: तो
2: हाँ
3: पुलिस वाले ले गए थे ये टाइम,
2: हाँ
3: तो
2: हाँ
3: हमारे पास थोड़ा सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा सा हमारा कुछ करिए। तो नया डीवीआर लगाया था
2: अच्छा,
3: दो
2: नया
3: दिन बाद।
2: डीवीआर लगा था। ओके,
3: जी
2: और पुराने डीवीआर में कोई छेड़छाड़ या कोई ऐसी चीज तो नहीं हुई थी ना?
3: नहीं सर, कोई छेड़खानी नहीं हुई सर।
2: अच्छा ठीक है, आप और विनोद वाणी जी गए थे वहां पर?
3: नहीं, मैं अकेला गया था, द्रोणवाणी जी मेरे ओनर हैं बस।
2: अच्छा, ठीक है ना।
4: In news from Mumbai now, the city witnessed one of its biggest anti-encroachment operations as Western Railways launched a demolition drive near Bandra Station to reclaim railway land worth nearly 600 crore rupees, triggering protests and violence. At least 19 people have been arrested for rioting, for stone pelting during the demolition drive in Bandra East, which is a suburban area of Mumbai. All the arrested have been sent to police custody till the 26th of May. The Mumbai police claims the stone pelting incident was pre-planned and that stones and cement blocks were arranged for in advance. Social media reels spreading misinformation are also under the scanner of the Mumbai police. The demolition drive has sparked a political showdown, with the opposition questioning the manner in which the action was carried out in Bandra East.
5: Bandra Purva mein jo karwai chal rahi hai usme अतिक्रमण निकालने का कार्य चल रहा है। अतिक्रमण निकालते समय कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, पुलिस पर पत्थर फेंके, इसलिए पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको कंट्रोल में लाया, उसके बाद जो पत्थर फेंकने वाले थे उनको अरेस्ट किया है।
6: तिथे जे कोण अजित दादांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते हे लोकांची माती भडकवत होते, यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे। काल जे किरीट सोमय्या लोकांची घरं तुटत असताना मी तोडली करून आधीच त्यांना जे भडकवण्याचे धंदे करत होते, याचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे। म्हणजे एका बाजूला घरं तोडत असताना ज्यांनी लोकांची माती भडकवली, कोणी त्यांना प्रवृत्त केलं पोलिसांवर अटॅक करायला, या सगळ्या घटनेची चौकशी झाली पाहिजे। जर ती झाली नाही तर हे वारंवार संपूर्ण मुंबईभर महाराष्ट्रभर असंच होईल। उद्या जर कुठे दंगल घडली तर या दंगलीसाठी जबाबदार कोण हे सुद्धा पोलिसांनी शोधून काढलं पाहिजे।
7: हर जगह भाजपा करना चाहती है। आज तो बेरोजगारी बढ़ रही है, आज देख रहे हो हीट बढ़ रही है, आज देखो किसान आत्महत्या कर रहा है, आज युवा बेरोजगार है, और ये सब परिस्थिति में महिला भी पूछ रही है कि जो कीमतें हैं आसमान से टकरा गई है। लेकिन ये नहीं, आपको कहीं भटकाना है, पूरे इशू को कहीं और लेके जाना है।
8: और जो लोग बेचारे छोटे छोटे घर बना के बैठे हैं उनको इलीगल बोल के तोड़ दिया जाएगा तो जाएंगे कहाँ वो? ये बुलडोजर कार्रवाई जो यूपी से शुरू हुई है ना, एक फैशन बन गया। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए।
9: एमआईएम आए, मुस्लिम लीग आए, राहुल गांधी आए, उद्धव ठाकरे आके खड़े रह जाए, बांग्लादेशी को पकड़ पकड़ के वापस भेजा जाएगा। बांद्रा टर्मिनस बांग्लादेशी मुक्त बन गया है।
10: हम लोगों ने ऐसा बचाव पक्ष दिया कि कहा कोर्ट को कि भाई ऑलरेडी जब डेमोलिशन 19 तारीख से हो रहा था, ठीक है, तो फिर पथरावबाजी 20 तारीख की शाम में अचानक कैसे होता है? जब अगर पहले से प्रिपरेशन कोई करता है तो फिर 19 तारीख को ही पथरावबाजी होना चाहिए था, तो 20 तारीख की शाम में कैसे पथरावबाजी हो सकती है? ये पथरावबाजी जब हुई है जब मस्जिद को डेमोलिशन और जो मस्जिद का जो गुंबद है जो तोम बोला जाता है उसको डेमोलिशन किया तब जाके लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई और वहाँ पे फिर मोमेंट थोड़ा सा हीट हो गया, तब जाके वहाँ पे फिर पथरावबाजी हुई, दोनों तरफ से फिर लाठीचार्ज भी हुआ, यहाँ से वहाँ से पथरावबाजी भी। जब अगर सुनियोजित तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है तो फिर ये जो डेमोलिशन के लिए आते हैं तो 19 तारीख को ही हो जाना चाहिए था ना, ये ऑल ऑफ अ सडन 20 तारीख की शाम में कैसे होता है? इस वजह से होता है क्योंकि ये लोग जानबूझ के मस्जिद को डेमोलिश करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट हुए थे। तो जब मस्जिद को डेमोलिशन किया गया तब लोगों ने भड़का और लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि हमको वो हमारे हाथ से हम तोड़ेंगे, हमको एटलीस्ट जो रिलीजियस बुक है वो भी हमको निकालने नहीं दिया।
4: Moving away from the political heat to the heat on the ground, a scorching heat wave is sweeping across parts of India with maximum temperatures crossing the 45 degree mark as well in several regions of the country. Citizens are struggling to stay hydrated as fears of heat strokes now mount. The soaring temperature is also taking a toll not only on people but also on animals and birds. Hospitals nationwide have opened cooling centers distributing ORS solutions to help residents cope with the rising heat. Several states have ordered school closures while zoos are installing air coolers to protect animals. Authorities have also set up rescue and cooling centers to provide relief during this relentless heat wave.
11: Quick tips for all our viewers who are working outdoors.
12: So a simple precautionary measures such as covering yourself up in cotton clothes with high porosity, light colored clothes, and more importantly, giving yourself, for those of our countrymen who cannot avoid going outside in the inclement weather, taking shade breaks and fluid breaks at regular interval, meaning thereby, after 1 hour or 45 minutes of work, a person, whether he or she is tired or not, must make it a point to take sit and rest for some time, 10-15 minutes in a shaded area, either under a tree or under the shadow of a tall building, preferably still in front of a cooler, and followed by fluid breaks.
4: Afternoons have become particularly brutal for people working outside of office. Gig workers have said they're not provided with any heat protecting materials. My colleague Anushka spoke to gig workers in the national capital to get a sense of what they endure on such hot and scorching days.
13: It is almost the end of May and the temperature in the national capital is nearing around 45 degree to 48 degrees Celsius, and in the afternoon the heat is particularly brutal. Today NDTV has reached on the ground amongst all the gig workers who are here, and we are trying to talk to them about how they are managing in this particular heat that everybody is right now facing in the capital.
14: Bahut problem hai, traffic bhi dekhna padta hai, wahan jaake customer bhi kai bar gussa karte hain.
13: Bahar nikalte to uske liye kuch aapke paas gears hai, safety gear?
14: Aisa koi bhi safety nahi.
15: Ma'am, mushkil to hai kyunki abhi garmi bahut zyada pad raha hai, iski wajah se mushkil to bahut hai.
13: कितना मुश्किल होता है बिना किसी हीट यू नो प्रोटेक्टेंट के आप लोग इस तरीके से बाहर में घूमते रहते हैं?
15: बहुत मुश्किल होता है, धूप भी बहुत तेज होती है, फिर भी हम लोग डिलीवर करते हैं, और ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम होता है, इन सब चीज़ों को देख करके फिर भी काम करते हैं हम लोग.
13: कोई सुविधा मिलती है जैसे ग्लूकोज?
15: नहीं नहीं, कोई सुविधा नहीं मिलती है. नहीं, कंपनी एक नया ऑफर निकाल रखा है, मतलब तेरे ऑर्डर पे 325 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं, तो वो भी मतलब 4 घंटे में लगाना होता है तेरे ऑर्डर, तो वो भी तेरे ऑर्डर लग नहीं पाते 4 घंटे में.
13: चलिए सुबह के टाइम तो फिर भी लोग थोड़ा बहुत ठीक ठाक काम कर लेते हैं, दोपहर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है.
16: मेरी स्किन देखो कैसे जल गई है, ये देखो भाई की, ये भी ऑर्डर मारता है दोपहर में, देखो स्किन कैसे जल गई है, कमजोरी भी आ रही है शरीर में ऑर्डर मारने से. ये ग्लूकोज वगैरह का भी इंतजाम नहीं कर रहे, हफ्ते में 1-2 दिन करते हैं बस.
4: The Delhi government, under its Heat Wave Action Plan 2026, has also set up multiple cooling zones across the city to provide shaded relief with coolers, fans, chilled water and ORS packets amid extreme summer heat. My colleague Shreya tracks the story from the ground.
11: While you and I are busy sitting in our air-conditioned offices and homes and complaining about the brutal heat wave, it is the unsung heroes on the ground, the backbone of our society, be it the construction laborers, the traffic cop, the sheet vendors, who are actually bearing the brunt of this grueling heat wave.
17: पेट के लिए कुछ भी करने पड़ता है, ठीक है. अगर जो गरीब आदमी हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगा. एक सुबह से भी आने पड़ता है काम करने के लिए.
11: लगता है ऑनलाइन क्लासेस कर देना चाहिए?
18: हाँ मेरे नज़र में तो कर देना चाहिए। और ये जो हमें एक्स्ट्रा क्लास दिया जाता है वो भी अभी बंद करना चाहिए, अभी इतनी गर्मी है ना 26 में।
11: And I'm going to show you what the Delhi government has done to protect its citizens who are working outdoors in this extreme heat. They have set up this one lone cooling zone here outside the iconic Red Fort. You can see water coolers, ORS, first aid, everything is provided. Anyone who wants some respite from the heat can come here. Itna ye help kar rahe logon ko
19: yahan pe pani ki help hai, cooler ki help hai, pankhe ki help hai, kursiyan hain, बैठने की सुविधा सारी कुछ अच्छी तरीके से दे रखी है।
11: भैया एक चीज़ बताइए आप हमें, ये जो कूलिंग जोन सरकार ने बनाई है ये सब साइड से ओपन है तो गर्म हवा तो बाहर से तो आ ही रही है।
20: मैम अब इनकी अपनी मर्जी से बनाया, अब इनको सोचना चाहिए। हमें तो ये है कि आने जाने में थोड़ा सा थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठ गया, रेस्ट मिल गया।
4: एंड माई कॉलीग विश्वास इज फाइल रिपोर्ट फ्रॉम जयपुर स्पीकिंग टू गिग वर्कर्स।
21: As the various states of northern India, Rajasthan is also prevailing severe heat wave conditions. At Rajasthan's Sri Ganganagar, 45.1 degree Celsius temperature has been recorded. It's the maximum temperature in Rajasthan's. Apart from that, various districts are recording highest temperatures around 44 to 45 degree Celsius and even beyond that. Due to this intense heat, in Rajasthan, 43 cases have been reported so far for illness related to heat wave, and these all, you know, gig workers have to suffer for this heat wave. The sun is shining brighter. Sir, आप लोग तो बहुत ज़्यादा दिन भर में डिलीवरी वगैरह देने जाते हैं, कितनी मुश्किलें आती है? गर्मी बहुत है।
22: बहुत सर, बहुत मुश्किलें आती है, हमें काफ़ी मुश्किलें आती है। स्टोर से लेके कस्टमर तक ऑर्डर देते हैं उस तक मुश्किलें आती है, हमें वे में जाना पड़ता है उसमें भी मुश्किल आती है, ऑर्डर वहाँ देते हैं कस्टमर वहाँ पे भी मुश्किल आती है, बाइक चलाना बहुत आसानी है।
21: अच्छा कितना कैसे उसको डील कर रहे हैं? ये बैग आपने टांग रखा है, किस तरीके से उसको कैसे कैरी करते हैं?
22: सर अब हमें पता है कैसे करना पड़ता है, भारी भारी बैग लेके जाना पड़ता है, दो दो तीन तीन मंजिल, पाँच पाँच मंजिल सीढ़ियों से जाना पड़ता है, कभी लिफ्ट से जाना पड़ता है, कस्टमर भी गलत करता है, बहुत दिक्कत आती है।
21: So, you know, they are just, you know, depicting their trouble. Sir, आप भी जाते होंगे कहीं पे, जाते हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है, कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं?
23: सबसे पहले सर नमस्कार। अब देखो सर, गर्मी तो आपको पता ही है, मौसम के अकॉर्डिंग 12 बजे से 4 बजे तक का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। अपन को क्या है कि अब सुविधा के लिए अपन एज ए हेलमेट ही यूज करते हैं, अपन जैसे हेलमेट ही लगाते हैं, और इससे और तो कोई बचाव के लिए अपना कुछ ऐसा है नहीं जो अपन कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर सकें।
4: Slipping to short break, but we leave you with these visuals of Prime Minister Modi's selfie diplomacy, which has taken the globe by storm yet again. In the latest, Cyprus president was seen taking a selfie with Prime Minister Narendra Modi after bilateral talks.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: the lower court. And remember, he remains absconding. Money has also been offered for any information on his whereabouts. Also, police teams are searching for Samarth Singh, who himself is a lawyer.
1: फिलहाल इस पूरे मामले में अग्रिम जमानत को लेकर पुलिस की अगली क्या कार्रवाई है और क्या अपडेट अब तक इस मामले में है?
2: इसमें हमने एंटीसिपेटरी बेल कैंसिलेशन के लिए लगाया है एक आरोपी के, क्योंकि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, और जो समर्थ है उनकी गिरफ्तारी के लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं।
1: सीसीटीवी फुटेज में जो लोग नजर आ रहे हैं, क्या उनसे भी कुछ पूछताछ की जा रही है?
2: वो जो तीन व्यक्तियों का जिक्र कर रहे हैं, उसमें दो व्यक्ति हैं जिनके बयान हो चुके हैं, एक समर्थ सिंह है जो फरार हैं।
1: सर, इसको लेकर भी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा सीबीआई जांच के लिए। पुलिस ने तमाम जो तथ्य हैं, जो कहीं कोई चूक थी, वो सब चीज़ें उपलब्ध यहाँ पर करवा दी गई हैं।
2: नहीं, उसमें वो राज्य शासन ने लिखा है सीबीआई जांच के लिए, बाकी तो हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं।
1: सर, समर्थ सिंह को ढूंढने के लिए भी पुलिस टीमें लगी, क्या मध्य प्रदेश, भोपाल या इसके अलावा बाहर भी उसकी तलाश की जा रही है?
2: जो जो उसकी गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तो लगी हुई हैं सभी टीमें।
3: 40 ग्राम वाले लोगों की बात आ रही है, उसके बारे में
4: सब चीज़ों के लिए माय एडवोकेट विल बी देयर टू आंसर।
3: जी,
4: मैंने आपको बताया है ना कि हमारे लोग भी तो कंडोलेंस तो देंगे ना, इतनी दुखद घटना सुनेंगे, एंड जो इतने प्रेम से उन्होंने, हम लोगों ने सब ने मिल के बहू का स्वागत किया था। ठीक है, आपने उस दिन भी देखा, मैं ऑफिस भी जा रही थी, पुलिस को मेरे बयान लेने थे, भाई पत्रकार ले रहे तो आप लोग वो तो ले ही सकते हैं ना। दे हैव नॉट बॉदर टू टेक माय स्टेटमेंट, दे डिडंट बॉदर टू कलेक्ट द सीसीटीवी, आई एम, वी आर गिविंग देम डॉक्यूमेंट्स।
3: तो ये जो फोन कॉल्स हुए, आपसे बातचीत हुए, ये सिर्फ आश्वासन देने के लिए, सांत्वना देने के लिए?
4: मुझे तो इतना है, बिकॉज़ माय आई मीन इट्स अ कंप्लीट ब्रेन फॉग। इसके अलावा तो क्या हो सकता है भाई? What can they do? No, if they could influence the police, आज ये क्यों स्थिति आ रही कि मेरे गैर हाजिरी पुलिस अंदर घुस रही है? वो ऐसा मेरे घर के अंदर घुस के चुपचाप से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ये IT एक्ट का भी उल्लंघन है विदाउट माय नोटिस। ठीक है, तो और वो डॉक्टर्ड वीडियोस हैं, डॉक्टर्स और डॉक्टर्ड ऑडियोज हैं, उन्होंने कुछ भी अपना कॉन्वर्सेशन कुछ तो भी।
1: हर्षित, सीबीआई जांच के लिए आप लोगों ने सीएम से मुलाकात की थी और सीएम ने अब इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिख दिया है।
5: जी, सो इट इज़ अ बिग डेवलपमेंट इन दिस केस। अभी तक जो आश्वासन थे वो फाइनली दे आर कमिंग ऑन पेपर, सो दैट इज़ वन गुड थिंग दैट वी हैव रिसीव्ड इन द मॉर्निंग, एंड वी आर होपफुल कि इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, कंसिडरिंग इट्स अ रिकमेंडेशन बाय द सीएम ऑफ दिस स्टेट।
1: आप लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी, उसके लिए राज्य ने पत्र लिखा है और अब आप सेकेंड पोस्टमार्टम के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट में आज इस फैसले की सुनवाई है, इस पर हालांकि ये न्यायिक क्रिया है, न्यायिक व्यवस्था है, लेकिन अगर ये आपके पक्ष में फैसला नहीं जाता है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे या फिर कोई फैसला परिवार मिलकर लेगा?
5: मैम, इट इज़ अ फाइट दैट इज़ ऑनगोइंग मैम, और लड़ाई में अगर उतार चढ़ाव भी आते हैं, जैसे पहला जो उतार आया था वो था जब इनको गिरिबाला सिंह की बेल ग्रांट हो चुकी थी, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड इट कि वो कैसे ग्रांट हुई है, और उसके बाद भी हम लड़ रहे थे। तो अगर खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे भी अगर ऐसा होता है, विच आई एम वेरी डाउटफुल ऑफ, एंड वी आर वेरी होपफुल कि शुड गो इन आर फेवर, कंसिडरिंग जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जितने हमारे तत्व हैं, वो दे आर ऑन पेपर, इट इज़ रिकॉर्डेड, तो इट शुड नॉट बी द केस दैट इट इज़ रिजेक्टेड, गॉड फॉरबिड नॉट, बट इफ इट इज़ रिजेक्टेड वी विल स्टिल फाइट इट ऑन, वी हैव अनदर हायर एचलॉन ऑफ द जुडिशरी टू अप्रोच टू, एंड वी विल डू दैट।
6: मैम, आपने सही कहा कि वो जो मेहनत आपने जो बताई, वो मेहनत हमारी नहीं है, मेहनत वो सब लोग जो इस समय साथ दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से, जहाँ जहाँ से भी आप लोगों के प्लेटफॉर्म के माध्यम, उन सब की वजह से ये एक पहली बार अब एक छोटी सी उम्मीद जगी है, और जो शासन ने जो इस पर देर से लेकिन अब जो सही कदम उठाया है, हम उनका आभार देते हैं, और हमें उम्मीद है कि अब इस पर कार्रवाई जो है द्रुत गति से हो। इसमें हर घंटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका शव अभी भी मॉर्चुरी में है, अभी भी हम जो है PM2 कराने के लिए हाईकोर्ट में दोपहर 1 बजे हमारी याचिका पर सुनवाई है, उसके साथ साथ जो बेल दी गई हैं उसकी एप्लीकेशन हमने लगाई हुई हैं कि उसको खारिज किया जाए, वो बिल्कुल गलत बेबुनियाद बेल दी गई है, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं दी गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि देर से सही लेकिन शासन प्रशासन और न्याय व्यवस्था की आंखें खुली होंगी, जो जिन लोगों ने इन अपराधियों का साथ दिया था या अभी तक अभी भी शायद कोई दे भी रहा हो, तो उन लोगों को भी जो है अभी एक जी जी उनको वो भी सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से जो नंबर्स 13 तारीख को जो गिरिबाला ने जो बड़े बड़े अहदे पर बैठे हुए लोगों और रसूखदारों को किए हैं,

0: And I think this was again must be a question that must be police that the Madhya Pradesh police should be asked that what kind of tools and police system that would they need in order to culprit? Do they have to announce rewards in order to catch such culprits? Had it been any other person who would not have been in such an influential position, would they have conducted themselves in the same manner? So these are very, very serious questions. The people who have colluded, as I said, and that can be identified if the state intends to, as the CBI would now be, we believe, would be taking up the case. Our request is that they do it as early as possible. I mean, that execution is initiated as quickly as possible and in a very, very unbiased manner. All the
1: Right.
0: people, not only the police, but the people who have helped the perpetrators of this crime to, you know, sustain and cover up this entire thing must be brought very clear, because people who have lost their conscience would continue to abuse power. There must be examples which must be set in this country. This is a great opportunity for all those who have a heart, who have ethics, to perform their duties as expected from them. And the various lacunas in investigations and law. This is a moment that we do a cross check. We do
1: Right.
0: a facing to the mirror and improvise things.
1: Absolutely. It's been such a tragic case, and there should be no doubt or questions in the minds of Twisha's family. Thank you so much, Ashish, for joining us. And we'll continue to track this case very closely. As Ashish was saying, it's been 10 days since Samarth Singh has been missing, the husband of Twisha Sharma. And even though the police claim that there are all these teams that are on the lookout for him, they still haven't managed to find him. Since Twisha was found dead, the probe is intensifying. The Home Department of the Madhya Pradesh government has sent a proposal to the central government requesting a CBI inquiry into the death. As you heard, the family really welcoming that move because they want a non-bias, they want a thorough probe into her death. Earlier, Twisha's family had asked for this CBI probe. The Madhya Pradesh government has also asked for cancellation of Giribala's bail. That hearing is now going to take place on Monday. Meanwhile, Twisha's family has also alleged that Giribala Singh attempted to influence the probe after Twisha's death, with nearly 46 calls made to several influential people. The family has also written a letter to the chief minister demanding her removal from her current position. As we said, Samarth Singh, the husband's anticipatory bail is in the High Court. He's removed it from there and gone back to the lower court now.
2: इस पूरे मामले में अग्रिम जमानत को लेकर पुलिस की अगली क्या कार्रवाई है और क्या अपडेट अब तक इस मामले में है?
3: इसमें हमने एंटीसिपेटरी बेल कैंसिलेशन के लिए लगाया है एक आरोपी के, क्योंकि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, और जो समर्थ है उनकी गिरफ्तारी के लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं।
2: सीसीटीवी फुटेज में जो लोग नज़र आ रहे हैं, क्या उनसे भी कुछ पूछताछ की जा रही है?
3: वो जो तीन व्यक्तियों का जिक्र कर रहे हैं, उसमें दो व्यक्ति हैं जिनके बयान हो चुके हैं, एक समर्थ सिंह हैं जो फरार हैं।
2: सर, इसको लेकर भी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है सीबीआई जांच के लिए। पुलिस ने तमाम जो तथ्य हैं, जो कहीं कोई चूक थी, वो सब चीज़ें उपलब्ध यहाँ पर करवा दी गई हैं।
3: नहीं, उसमें वो राज्य शासन ने लिखा है सीबीआई जांच के लिए, बाकी तो हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं।
2: सर, समर्थ सिंह को ढूंढने के लिए भी पुलिस टीमें लगी, क्या मध्य प्रदेश, भोपाल या इसके अलावा बाहर भी उसकी तलाश की जा रही है?
3: जो जो उसकी गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तो लगी हुई हैं सभी टीमें।
4: मैंने आपको बताया है ना कि हमारे लोग भी तो कंडोलेंस तो देंगे ना, इतनी दुखद घटना सुनेंगे। एंड जो इतने प्रेम से उन्होंने, हम लोगों ने सबने मिलके बहू का स्वागत किया था, ठीक है। आपने उस दिन भी देखा, मैं ऑफिस भी जा रही थी, पुलिस को मेरे बयान लेने थे, भाई पत्रकार ले रहे तो आप लोग वो तो ले ही सकते हैं ना। दे हैव नॉट बॉदर टू टेक माय स्टेटमेंट, दे डिडंट बॉदर टू कलेक्ट द सीसीटीवी, आई एम, वी आर गिविंग देम डॉक्यूमेंट्स।
5: तो ये जो फोन कॉल्स हुए, आपसे बातचीत हुए, ये सिर्फ आश्वासन देने के लिए, सांत्वना देने के लिए?
4: मुझे तो इतना है, बिकॉज माय, आई मीन, इट्स अ कंप्लीट ब्रेन फॉग। इसके अलावा तो क्या हो सकता है भाई? व्हाट कैन दे डू? नो, इफ दे कुड इन्फ्लुएंस द पुलिस। आज ये क्यों स्थिति आ रही कि मेरे गैर हाजिरी पुलिस अंदर घुस रही है? वो ऐसा मेरे घर के अंदर घुस के चुपचाप से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ये आईटी एक्ट का भी उल्लंघन है, विदाउट माय नोटिस, ठीक है। तो और वो डॉक्टर्ड वीडियोस हैं, डॉक्टर्ड ऑडियोज हैं, उन्होंने कुछ भी अपना कॉन्वर्सेशन कुछ तो भी
2: सीबीआई जांच के लिए

0: लोगों ने सीएम से मुलाकात की थी और सीएम ने अब इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिख दिया है।
1: जी, सो इट इज़ अ बिग डेवलपमेंट इन दिस केस। अभी तक जो आश्वासन थे वो फाइनली दे आर कमिंग ऑन पेपर, सो दैट इज़ वन गुड थिंग दैट वी हैव रिसीव्ड इन द मॉर्निंग एंड वी आर होपफुल कि इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए कंसिडरिंग इट्स अ रिकमेंडेशन बाय द सीएम ऑफ द स्टेट।
0: आप लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी, उसके लिए राज्य सरकार ने पत्र लिखा है और अब आप सेकंड पोस्टमार्टम के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट में आज इस फैसले की सुनवाई है, इस पर हालांकि ये न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक व्यवस्था है, लेकिन अगर ये आपके पक्ष में फैसला नहीं जाता है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे या फिर कोई फैसला परिवार मिलकर लेगा?
1: मैम, इट इज़ अ फाइट दैट इज़ ऑन गोइंग मैम, और लड़ाई में अगर उतार चढ़ाव भी आते हैं, जैसे पहला जो उतार आया था वो था जब इनको गिरिबाला सिंह की बेल ग्रांट हो चुकी थी, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड इट कि वो कैसे ग्रांट हुई है, और उसके बाद भी हम लड़ रहे थे। तो अगर खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे भी अगर ऐसा होता है, विच आई एम वेरी डाउटफुल ऑफ, ना वी आर वेरी होपफुल कि शुड गो इन आर फेवर कंसिडरिंग जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जितने हमारे तत्व हैं वो दे आर ऑन पेपर, इट इज़ रिकॉर्डेड, तो इट शुड नॉट बी द केस दैट इट इज़ रिजेक्टेड, गॉड फॉरबिड नॉट, बट इफ इट इज़ रिजेक्टेड वी विल स्टिल फाइट इट ऑन, वी हैव अनदर हायर एचलॉन ऑफ द जुडिशरी टू अप्रोच टू एंड वी विल डू दैट।
2: All right, so that was the brother speaking to us. And meanwhile, when media asked pointed questions to Giribala Singh and her legal team earlier today, she evaded questions, but then her legal team lashed out at the media, her lawyer lashing out at the media. Listen in.
3: Ma'am, CBI.
4: अरे जाने दो भाई, व्हाट इज दिस,
5: बयान दर्ज कराने जा रहे हैं मैम, आप बयान दर्ज कराने जा रहे हैं मैडम,
4: प्लीज व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग
5: मैडम, हमारी कोई हालत नहीं है, चलो चलो ओपनिंग
6: जांच को लेकर आप शरद शरद
2: Now, NDTV has also spoken to other friends of Twisha's who claim that Samarth used to humiliate Twisha, that is, the husband used to humiliate her publicly, he used to question her about her the identity of her baby's father when she was pregnant. Listen into what these friends have now disclosed about the marriage.
7: कहीं ना कहीं उनके पीछे डिस्प्यूट चल रहे थे, जो बच्चे को लेके बात थी, तो उनकी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी थी, तो उसमें भी वो लोग उस पर बहुत टॉर्चर करते थे और ये बोलते थे कि ये किसका बच्चा लेके डोल रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो ऐसे में कैसे कोई भी मदर ऐसे बच्चे को क्यों लेके जाएगी जिसमें इतने एलिगेशन हैं कि किसी और का बच्चा क्या है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उसने अबॉर्ट कराया और वो उसे कैरी नहीं करना चाहती थी।
8: में आई हर्ड दैट कि समर्थ अपने फ्रेंड सर्कल में तुषा को ह्यूमिलिएट करता था, दैट इसको कुछ नहीं पता है, सीज गवार, क्या पढ़ी, क्या MBA है, क्या पढ़ी लिखी है,
9: उन पब्लिकली इंसल्ट ह्यूमिलिएट
8: इंसल्ट करते थे, अपने फ्रेंड सर्कल के रिलेटिव्स के बीच में इस तरीके की बातें करना, हर हमेशा उसके बारे में बुरा बोलना सबको कि ये इसको ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, कुछ नहीं कर रही हैं, सो ग्रेजुअली ये चीज़ बिल्डअप होने लगता है, एंड उसके बाद मुझे लग रहा
9: है क्यों गया, वो तो मिस पुणे रह चुकी है।
8: Exactly.
9: She was well educated, job भी कर रही थी वो, well to do family से भी थी।
8: Exactly, वही तो प्रश्न है ना कि आप जब शादी में रिलेशनशिप में जाते हो, एक तरफ आपने ऐसे ऐसे प्रॉमिस किया कि आई विल मेक हर फील कम्फर्टेबल इन माई हाउस, अगर आप वीडियोज़ देखेंगे समर्थ के शादी के, ही टॉक लाइक दिस, एट द सेम टाइम शुरुआत से ही आपने उसे डिप्रेशन में डाल दिया।
10: उनकी प्रॉपर वीडियोज़ है शादी में जैसे, जहाँ पे उसने बोला कि वो दूसरी सिटी में जा रही है और मैं इसका ध्यान रखूँगा, मतलब अब लग रहा है कि यस ये फेक प्रोमिसज थे, इससे तो ये पता चल रहा है कि वो उसका ध्यान ही नहीं रख पाए उसका।
9: फिर ऐसी भी कोई गिरबाला कह रही थी कि आप लोगों ने ही कैम मना कर दिया आने के लिए, कैंसिल करवा दिया टिकट एंड ऑल।
7: उसके पेरेंट्स 13 को जाने वाले थे, उनकी टिकट्स थी, लेकिन गिरिवाला सिंह जी ने ये बोला कि अगर आप इसे आएंगे और ले जाएंगे तो आज के बाद ये दरवाजे बंद हो जाएंगे।
9: ये उन्हीं ने बोला था
7: एज ए पेरेंट्स, अगर आपको उसके आपकी बेटी के इन लॉज बोलते हैं कि आप आओगे ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि वो घर उसका बर्बाद हो जाए।
2: Now, Twisha's death case is raising a more serious questions. Investigators are examining the CCTV timeline and possible gaps in the footage and who had access to the surveillance system after the incident. Also, this video that you're seeing, you know, it's all over social media. Who leaked out this video? Twisha's mother-in-law, Giribala Singh, allegedly contacted the CCTV technician soon after her death. Sources say Giribala called both the CCTV technician and owner of the firm handling the system to her residence. In fact, I spoke to the CCTV firm owner and he said that Giribala Singh called him in the morning, 9 o'clock, and said that something has happened and send a technician here. The technician only managed to go there by 11 a.m. when they found out that a death had taken place. Listen in to what he said to me. तो अब ये जो सीसीटीवी फुटेज है इस पे सब गौर कर रहे हैं जिस तरह से वो बॉडी वो सबसे पहले तो त्विशा शर्मा ऊपर जाती है वो किस समय ऊपर गई उसके बाद जो लोग ऊपर से उसको नीचे लाए हैं वो किस समय हुआ और इसमें भी कुछ अंतर आ रहा है जो डेट और टाइम इसके बारे में क्या बता सकते
11: हैं वो मेरी टेक्नीशियन से बात हुई थी दो दिन दो घंटे 20 मिनट का डिफरेंस है
2: तो ये कैसे
11: ये एक्चुअली क्या होता है सीसीटीवी को समय पे अगर रिपेयर कराते रहे तो उसमें दिक्कत नहीं आती ये दो ढाई साल से इनने रिपेयर नहीं कराया है तो इसमें सीएमएस बैटरी होती है वो चेंज होनी होती है
2: ठीक है आपका कहना है कि आपकी
11: रिकॉर्डिंग पूरी है और हार्ड डिस्क फुल भरी हुई है जो पुलिस को हैंड ओवर किया हुआ है उसमें सारे फुटेज है
2: ऑलराइट आपका कहना है आपके टेक्नीशियन वहां गया अगले दिन गया 11 बजे और फिर 3 घंटे का सीसीटीवी फुटेज निकाल के उन्होंने पुलिस को दे दिया अब ये फुटेज जो है
11: हार्ड डिस्क वगैरह सब उन्हीं के पास है पुलिस के पास ही है वो
2: ऑलराइट और ये सीसीटीवी फुटेज अब लीक भी हो गई ये किस कहां पर लीक हुई है क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस
11: प्रश्न उठ रहे हैं पुलिस का जो निकाल के उन्हीं को दे दिया है
2: जी बोलिए विनोद
11: ये हमें नहीं मालूम मैडम हम तो वहां जब गए तो पुलिस वाले थे उन्हीं को निकाल के दे दिया डीवीआर भी उन्हीं के पास है
2: क्योंकि प्रश्न उठ रहे हैं कि ये सब पब्लिक के सामने कैसे आया मीडिया के पास भी सारी सीसीटीवी फुटेज है तो लीक कहां से हुआ आपका कहना आपके टेक्नीशियन ने सीधे पुलिस को हैंड ओवर किया था
11: हाँ हमारे बंदा जो गया था उसने सीधे पुलिस को हैंड ओवर किया
2: ऑलराइट ऑल्सो घर में सीसीटीवीज हैं कितने लगाए गए थे आपका कहना है कि उसकी मेंटेनेंस नहीं की जा रही थी
11: मैंने 2023 में जनवरी 2023 में इनके 8 कैमरे का सेटअप लगाया था मैं
2: 8 कैमरे का कहां पर
11: वो तो मैं तो नहीं गया था मेरे टेक्नीशियन जाते हैं वहां पे तो 2023 में जो लड़का गया था उसने 8 कैमरे का सेटअप लगाया था उनके यहाँ
2: तो अभी तो हमारे सामने ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक जगह की है जो सीढ़ी है वहां की है
11: पर पुलिस वालों को पूरे 8 कैमरे का बैकअप दिया हुआ है और पूरी डीवीआर वगैरह सब पुलिस वाले लेके गए हैं
2: ऑलराइट और पुलिस के आपसे क्या बात हुई पुलिस वालों की
11: पुलिस वालों ने नहीं बात करी वही तो उसी दिन हुई कि भैया ये हमें सही चाहिए उनको दे दिया हमने और फिर वो लेके चले गए
2: All right, so questions over, you know, the police probe has also been taking place. Vinod ji, फिर से हमारे viewers के लिए अगर आप बता सकते हैं, आपको किस समय फोन आया, Giribala Singh ने आपको फोन किया था, और अगले सुबह जो आपने अपने technician को फिर भेजा, तब ये सारा video मतलब दिया गया था पुलिस को।
11: मेरे पास सुबह 9 बजे फोन आया था, मैं जब पूजा कर रहा था 9 बजे के आसपास, तो मैंने उनसे बोला था, मैडम अभी तो नहीं भेज
2: पाऊंगा
11: मैंने बोला था तुरंत भेज दो तो मैंने बोला अभी तो नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि मैं अभी घर पे हूँ मैं ऑफिस खोलता हूँ 11 बजे उसके बाद ही भेज पाऊंगा
12: हेलो
13: हेलो गुड मॉर्निंग रोहित से बात हो रही है
12: जी सर रोहित से बात हो रही
13: रोहित जी आप लोग सीसीटीवी भी लगाते हैं ना
12: जी
13: मैं ये जानना चाह रहा था ये जो कटारा हिल्स में गिरिबाला जी हैं उनके घर में आप ही लोगों ने सीसीटीवी लगाया ना जी
12: जी जी हमने लगाया है
13: अच्छा अच्छा तो 13 तारीख को उन्होंने कुछ शाम को आपको 4 बजे के आसपास फोन किया था हेलो
12: जी जी किया था
13: तो क्या पूछ रही थी वो उस दिन
12: जी वो पुलिस प्रशासन आया हुआ था तो उन्होंने फोन लगवाया था कि वो आपके सीसीटीवी टेक्नीशियन को बुला लीजिए थोड़ा सा रिकॉर्डिंग निकालना है
13: अच्छा तो सिर्फ रिकॉर्डिंग निकालने के लिए उन्होंने फोन किया था आपको और कोई वजह नहीं थी
12: जी और कोई वजह नहीं
13: कभी उन्होंने आपसे कुछ कहा कि उसकी टाइमिंग वाइमिंग चेंज हो गई है या कुछ खराब हो रहा है उसमें
12: नहीं नहीं जब 2023 में लगा हुआ था, इसके बाद उनसे इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई क्योंकि उनके पास भी समय नहीं रहता था, कभी
13: अच्छा
12: सर्विस भी नहीं हुई उनकी।
13: अच्छा कभी सर्विस नहीं हुई क्योंकि उसमें टाइम वाइम भी अलग आ रहा है ना, वो
12: हाँ
13: डेट टाइम अलग आ रहा है, तो वो
12: जी
13: सर्विस
12: जी
13: नहीं हुई इस वजह से अलग
12: हाँ
13: आ रहा है आप कह
12: बिल्कुल
13: रहे हैं।
12: बिल्कुल बिल्कुल
13: अच्छा तो उस दिन सिर्फ आपको इसीलिए बुलाया था कि पुलिस प्रशासन आया तो कुछ फुटेज निकाल के देना है।
12: जी।
13: और आपको कुछ पता है क्या इस पूरे केस के बारे में कुछ, और इसके

0: ऐसा ग्राउंड वाली जी मेरे होना है बस।
1: अच्छा, ठीक, ठीक है ना।
2: ऑलराइट, सो दैट वाज द टेक्नीशियन हु एक्चुअली वेंट टू द होम आल्सो स्पीकिंग टू एनडीटीवी। नाउ मीनवाइल त्विशा'स ब्रदर मेजर हर्षित स्पोक टू द मीडिया आफ्टर द कोर्ट हैज नाउ अलाउड फॉर दैट सेकंड ऑटोप्सी दे हैव बीन डिमांडिंग। ही सेज दैट दिस इज अ स्मॉल विन एंड द रोड फॉर जस्टिस इज अ लॉन्ग फाइट।
3: हमें ये अपडेट मिला है कि पीएम टू की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई है। एंड अभी इसमें थोड़ा ये भी है कि एम्स दिल्ली से शायद से एक टीम आने वाली है एम्स भोपाल में, तो अभी इट इज़ येट टू बी कंफर्म कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है, बट आर प्ली हैज़ बिन एक्सेप्टेड। वी हैव गॉटन द डायरेक्शन, इट इज़ अ वेरी स्मॉल विन, द फाइट इज़ लॉन्ग। हमें एक सही राह पे हम जा चुके हैं बस।
2: All right, the family welcoming this move but calling it a small win. With that, we'll sip into a short break. More news coming up on the other side. Do stay with us.

0: के माध्यम से हमारी बात रखने की कोशिश करेंगे, और ये भी साथ ही साथ हम करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ हमेशा से नमाज होती है ये, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम वापस से हमारी नमाज जारी रखेंगे। जहाँ जहाँ भी मुस्लिम समाज को पढ़ना है अपने अपने मोहल्लों की मस्जिदों में, अपने घरों पर, अपने निजी स्थानों पर, वो बेखुद पढ़ सकते हैं। हमने प्रशासन से परमिशन मांगी थी नमाज के लिए, लेकिन प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर और हाई कोर्ट का हवाला देते हुए हमारी परमिशन को कैंसिल कर दिया।
1: हम 2003 में भी एक विवाद हुआ था, हमारा राधा बसंत पंचमी के रोज़ हमारा राधा के सुंदरकांड मंडल पालकी यात्रा में आया था। 2016 में भी जो विवाद हुआ उसमें भी हमारा राधा के सुंदरकांड मंडल देदला से पालकी यात्रा में यहाँ आया था।
2: आज शुक्रवार को आमतौर पर आ पाते थे आप मंदिर?
3: शुक्रवार को नहीं आ पाते थे,
2: आज सालों बाद।
3: हाँ,
1: हमें बहुत खुशी, और जल्दी से जल्दी हमारी माता यहाँ विराजमान हो, लंदन से उनकी प्रतिमा आए और यहाँ विराजमान हो।
4: लेकिन आज हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी माँ विराजमान हो गई है, ज्योति अखंड यहाँ पे आ गई है, तो बहुत खुशी का मौका है हम लोगों के लिए।
5: कई समय में हमको मौका मिला इस बार शुक्रवार के दिन पूजा करने का, और बहुत खुशी है, और पूरे धार के हिंदू समाज को बहुत खुशी कि आज शुक्रवार के दिन हमें मिला है माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए।
6: In other news, Mumbai witnessed one of its biggest anti-encroachment operations as the Western Railways launched a demolition drive near Bandra station to reclaim railway land, which is worth nearly 600 crore. But this has triggered a protest and violence as well as the shanty. This is called Garib Nagar, that after the shanties were removed and this effort made. Just take a look at the amount of police there and the violence with stone pelting and even cement slabs. At least 19 people have now been arrested for this rioting and stone pelting during the demolition drive. All the arrested have been sent to police custody till the 26th of May. The Mumbai police claim stone pelting incident was pre-planned and that stones and cement blocks were arranged. A social media reel spreading misinformation are also under the police's radar. The demolition drive has sparked a political showdown now, though, with the opposition questioning the manner in which the action was carried out. Take a look at all these reactions.
7: बांद्रा पूर्व में जो कार्रवाई चल रही है उसमें अतिक्रमण निकालने का कार्य चल रहा है। अतिक्रमण निकालते समय कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, पुलिस पर पत्थर फेंके, इसलिए पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको कंट्रोल में लाया, उसके बाद जो पत्थर फेंकने वाले थे उनको अरेस्ट किया है।
8: तिथे जे कोण अजित दादांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते हे लोकांची माती भडकवत होते, यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे। काल जे किरीट सोमय्या लोकांची घरं तुटत असताना मी तोडली करून आधीच त्यांना जे भडकवण्याची धंदे करत होते याचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे। म्हणजे एका बाजूला घरं तोडत असताना ज्यांनी लोकांची माती भडकवली, कोणी त्यांना प्रवृत्त केलं पोलिसांवर अटॅक करायला, या सगळ्या घटनेची चौकशी झाली पाहिजे। जर ती झाली नाही तर हे वारंवार संपूर्ण मुंबईभर महाराष्ट्रभर असंच होईल। उद्या जर कुठे दंगल घडली तर या दंगलीसाठी जबाबदार कोण हे सुद्धा पोलिसांनी शोधून काढलं पाहिजे।
9: हर जगह भाजपा करना चाहती है। आज तो बेरोजगारी बढ़ रही है, आज देख रहे हो हीट बढ़ रही है, आज देखो किसान आत्महत्या कर रहा है, आज युवा बेरोजगार है, और ये सब परिस्थिति में महिला भी पूछ रही है कि जो कीमतें हैं आसमान से टकरा गई है। लेकिन ये नहीं, आपको कहीं भटकाना है, पूरे इशू को कहीं और लेके जाना है।
10: और जो लोग बेचारे छोटे छोटे घर बना के बैठे हैं उनको इलीगल बोल के तोड़ दिया जाएगा तो जाएंगे कहाँ वो? ये बुलडोजर कार्रवाई जो यूपी से शुरू हुई है ना, एक फैशन बन गया, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए।
11: एमआईएम आए, मुस्लिम लीग आए, राहुल गांधी आए, उद्धव ठाकरे आके खड़े रह जाए, बांग्लादेशी को पकड़ पकड़ के वापस भेजा जाएगा। बांद्रा टर्मिनस बांग्लादेशी मुक्त बन गया है।
12: हम लोगों ने ऐसा बचाव पक्ष दिया कि कहा कोर्ट को कि भाई ऑलरेडी जब डेमोलिशन 19 तारीख से हो रहा था, ठीक है, तो फिर पथरावबाजी 20 तारीख की शाम में अचानक कैसे होता है? जब अगर पहले से प्रिपरेशन कोई करता है तो फिर 19 तारीख को ही पथरावबाजी होना चाहिए था, तो 20 तारीख की शाम में कैसे पथरावबाजी हो सकती है? ये पथरावबाजी जब हुई है जब मस्जिद को डेमोलिशन और जो मस्जिद का जो गुंबद है जो तोम बोला जाता है उसको डेमोलिशन किया, तब जाके लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई और वहाँ पर फिर मोमेंट थोड़ा सा हीट हो गया, तब जाके वहाँ पे फिर पथरावबाजी हुई, दोनों तरफ से फिर लाठीचार्ज भी हुआ, यहाँ से वहाँ से पथरावबाजी भी। जब अगर सुनियोजित तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है तो फिर ये जो डेमोलिशन के लिए आते तो 19 तारीख को ही हो जाना चाहिए था ना, ये ऑल ऑफ अ सडन 20 तारीख की शाम में कैसे होता है? इस वजह से होता है क्योंकि ये लोग जानबूझ के मस्जिद को डेमोलिश करने के लिए वहाँ पर प्रेजेंट हुए थे।

मस्जिद को डेमोलिशन किया गया, तब लोगों ने भड़का और लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि हमको वो हमारे हाथ से हम तोड़ेंगे, हमको एटलीस्ट जो रिलीजियस बुक है वो भी हमको निकालने नहीं दिया।

0: हुआ है उसमें सारे फुटेज है।
1: ऑलराइट, आपका कहना आपके टेक्नीशियन वहां गया अगले दिन, गया 11 बजे और फिर 3 घंटे का सीसीटीवी फुटेज निकाल के उन्होंने पुलिस को दे दिया। अब ये फुटेज जो है लीक,
0: हार्ड डिस्क वगैरह सब उन्हीं के पास है, पुलिस के पास ही है वो।
1: ऑलराइट, और ये सीसीटीवी फुटेज अब लीक भी हो गई, ये किस कहां पर लीक हुई है? क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस
0: क्वेश्चन उठ रहे हैं जो
1: पुलिस का जो प्रोब है। जी बोलिए विनोद।
0: हाँ ये हमें नहीं मालूम मैडम, हम तो वहां जब गए तो पुलिस वाले थे, उन्हीं को निकाल के दे दिया, डीवीआर भी उन्हीं के पास है।
1: क्योंकि प्रश्न उठ रहे हैं कि ये सब सब पब्लिक के सामने कैसे आया, मीडिया के पास भी सारी सीसीटीवी फुटेज है, तो लीक कहां से हुआ? आपका कहना आपके टेक्नीशियन ने सीधे पुलिस को हैंडओवर किया था।
0: हाँ हमारे बंदा जो गया था उसने सीधे पुलिस को हैंडओवर किया।
1: ऑलराइट, ऑल्सो घर में सीसीटीवी हैं कितने कितने लगाए गए थे? आपका कहना है कि उसकी मेंटेनेंस नहीं की जा रही थी।
0: मैंने 2023 में, जनवरी 2023 में इनके 8 कैमरे का सेटअप लगाया था मैम।
1: 8 कैमरे का कहां कहां पर?
0: वो तो मैं तो नहीं गया था, मेरे टेक्नीशियन जाते हैं वहां पे, तो 2023
1: अच्छा।
0: में जो लड़का गया था उसने 8 कैमरे का सेटअप लगाया था उनके यहाँ।
1: तो अभी तो हमारे सामने ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक जगह की है, जो सीढ़ी है वहां की है।
0: पर पुलिस वालों को पूरे 8 कैमरे का बैकअप दिया हुआ है और पूरी डीवीआर वगैरह सब पुलिस वाले लेके गए हैं।
1: ऑलराइट, और पुलिस के आपसे क्या बात हुई पुलिस वालों की?
0: पुलिस वालों ने नहीं बात करी, वही वही तो उसी दिन हुई कि भैया ये हमें सही चाहिए, उनको दे दिया हमने और फिर वो लेके चले गए।
1: ऑलराइट, सो क्वेश्चंस ओवर, यू नो द पुलिस प्रोब इज आल्सो बीन टेकिंग प्लेस। विनोद जी, फिर से हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप बता सकते हैं आपको किस समय फोन आया, गिरिबाला सिंह ने आपको फोन किया था और अगले सुबह जो आपने अपने टेक्नीशियन को फिर भेजा तब ये सारा वीडियो मतलब दिया गया था पुलिस को?
0: मेरे पास सुबह 9 बजे फोन आया था, मैं जब पूजा कर रहा था 9 बजे के आसपास, तो मैंने उनसे बोला भाई मैडम अभी तो नहीं भेज पाऊंगा।
1: फोन आया,
0: मैंने बोला था तुरंत भेज दो, तो मैंने बोला अभी तो नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि मैं अभी घर पे हूँ, मैं ऑफिस खोलता हूँ 11 बजे, उसके बाद ही भेज पाऊंगा।
1: All right, so all these technical aspects also under close scrutiny now. We'll continue to track all the developments in this case. Samarth Singh is expected to surrender by around 5 p.m. So do continue watching NDTV for the latest. For the moment, we're slipping into a short break. On the other side, the latest in the Karnataka Game of Thrones.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: एंड जॉइनिंग मी लाइव नाउ टुनाइट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन टेलीविजन इज त्विशा शर्मा'स वेरी ओन ब्रदर मेजर हर्षित शर्मा, who has been at the forefront of the fight for justice for his beloved sister Twisha. Harshit, Major Harshit, thank you for agreeing to speak to me tonight. I would like to start by offering you our unqualified condolences. Our thoughts and prayers are with you, that you are fighting a

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Let's do it.
6: That has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
7: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
8: The line of control, Ship Arur, NDTV.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: एंड जॉइनिंग मी लाइव नाउ टुनाइट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन टेलीविजन इज त्विशा शर्मा'स वेरी ओन ब्रदर मेजर हर्षित शर्मा, who has been at the forefront of the fight for justice for his beloved sister Twisha. Harshit, Major Harshit, thank you for agreeing to speak to me tonight. I would like to start by offering you our unqualified condolences. Our thoughts and prayers are with you, that you are fighting a fight even while you're grieving the loss of your beloved sister. So please accept NDTV's condolences on this. I'd like to start, Harshit, by asking you about the allegations and the many things that have been said by Twisha's mother-in-law about your sister. I have listed some of those right now. She's talked about psychological issues. She's talked about multiple partners. She has talked about sexual past. Many things that she has said. I want your opening comments on what Giribala Singh has said about Twisha. Welcome, Harshit.
2: First of all, thank you for having me here. I'm here strictly in a personal capacity. The things that this woman has stooped down to by making derogatory remarks about my deceased sister.
3: Welcome back. Let's get you news from Mumbai, where there's been a demolition drive that has created a huge controversy. Now, this is a demolition drive taking place in Bandra and a lot of political back and forth over this as well. Mumbai witnessing one of this biggest anti-encroachment operations by the Western Railways, which has launched this demolition drive against the shanty in Bandra station to reclaim railway land, which is worth nearly 600 crore. But this is, as always, triggered massive protests and violence as well. 19 people have been arrested for rioting and stone pelting during this demolition drive. All the arrested have now been sent to police custody till the 26th. The Mumbai police claims that this was pre-planned, that stone pelting was all pre-planned, and that stones and cement blocks were actually arranged in advance. Social media reels spreading misinformation are also under the police's radar. One of the reasons it's been so controversial is a mosque was also demolished in this, Garib Nagar, as it's called. The demolition drive sparked a political showdown, with the opposition questioning the manner in which this action was carried out. Listen in.
4: अतिक्रमण निकालने का कार्य चल रहा है। अतिक्रमण निकालते समय कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, पुलिस पर पत्थर फेंके, इसलिए पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको कंट्रोल में लाया, उसके बाद जो पत्थर फेंकने वाले थे उनको अरेस्ट किया है।
5: तिथे जे कोण अजित दादांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते हे लोकांची माती भडकवत होते, यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे। काल जे किरीट सोमय्या लोकांची घरं तुटत असताना मी तोडली करून आधीच त्यांना जे भडकवण्याचे धंदे करत होते, याचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे। म्हणजे एका बाजूला घरं तोडत असताना ज्यांनी लोकांची माती भडकवली, कोणी त्यांना प्रवृत्त केलं पोलिसांवर अटॅक करायला, या सगळ्या घटनेची चौकशी झाली पाहिजे। जर ती झाली नाही तर हे वारंवार संपूर्ण मुंबईभर महाराष्ट्रभर असंच होईल। उद्या जर कुठे दंगल घडली तर या दंगलीसाठी जबाबदार कोण, हे सुद्धा पोलिसांनी शोधून काढलं पाहिजे।
6: हर जगह भाजपा करना चाहती है। आज तो बेरोजगारी बढ़ रही है, आज देख रहे हो हीट बढ़ रही है, आज देखो किसान आत्महत्या कर रहा है, आज युवा बेरोजगार है, और ये सब परिस्थिति में महिला भी पूछ रही है कि जो कीमतें हैं आसमान से टकरा गई है। लेकिन ये नहीं, आपको कहीं भटकाना है, पूरे इशू को कहीं और लेके जाना है।
7: और जो लोग बेचारे छोटे छोटे घर बना के बैठे हैं, उनको इलीगल बोल के तोड़ दिया जाएगा तो जाएंगे कहाँ वो? ये बुलडोजर कार्रवाई जो यूपी से शुरू हुई है ना, एक फैशन बन गया। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए।
8: एमआईएम आए, मुस्लिम लीग आए, राहुल गांधी आए, उद्धव ठाकरे आके खड़े रह जाए, बांग्लादेशी को पकड़ पकड़ के वापस भेजा जाएगा। बांद्रा टर्मिनस बांग्लादेशी मुक्त बन गया है।
9: हम लोगों ने ऐसा बचाव पक्ष दिया कि कहा कोर्ट को कि भाई ऑलरेडी जब डेमोलिशन 19 तारीख से हो रहा था, ठीक है, तो फिर पथरावबाजी 20 तारीख की शाम में अचानक कैसे होता है? जब अगर पहले से प्रिपरेशन कोई करता है तो फिर 19 तारीख को ही पथरावबाजी होना चाहिए था। तो 20 तारीख की शाम में कैसे पथरावबाजी हो सकती है? ये पथरावबाजी जब हुई है, जब मस्जिद को डेमोलिशन और जो मस्जिद का जो गुंबद है, जो तोम बोला जाता है, उसको डेमोलिशन किया, तब जाके लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई और वहाँ पर फिर मोमेंट थोड़ा सा हीट हो गया, तब जाके वहाँ पे फिर पथरावबाजी हुई। दोनों तरफ से फिर लाठीचार्ज भी हुआ, यहाँ से वहाँ से पथरावबाजी भी। जब अगर सुनियोजित तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है तो फिर ये जो डेमोलिशन के लिए आते हैं तो 19 तारीख को ही हो जाना चाहिए था ना, ये ऑल ऑफ अ सडन 20 तारीख की शाम में कैसे होता है? इस वजह से होता है क्योंकि ये लोग जानबूझ के मस्जिद को डेमोलिश करने के लिए वहाँ पर प्रेजेंट हुए थे। तो जब मस्जिद को डेमोलिशन किया गया तब लोगों ने भड़का और लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि हमको वो हमारे हाथ से हम तोड़ेंगे, हमको एटलीस्ट जो रिलीजियस बुक है वो भी हमको निकालने नहीं दिया।
3: Well, news now from Madhya Pradesh, and days after the Madhya Pradesh High Court declared that the disputed structure in Dhar district is a temple, not a mosque. Now the Muslim side has approached the Supreme Court over this. The Muslim side has gone to the top court after this was declared a temple, and they've expressed hope that the apex court would stay the High Court order, which quashed the 2003 Archaeological Survey of India order that had allowed for both the Muslim community and the Hindu community to offer prayers there, and Muslim community was allowed to offer namaz on Fridays. They said that whatever rights the constitution has given us, we will take our point forward, and this mosque should remain and will remain a mosque. Meanwhile, security was increased at the Bhojshala complex today ahead of the Friday prayers. Police also put up barricades. And remember, since this order from the High Court, prayers have been offered at the Bhojshala complex, treating it as a Saraswati temple.
10: ये बात जो हमारी हाई कोर्ट के समक्ष नहीं रख पाए हम, कुछ मिसकनेक्शन हुआ है, वो हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमारी बात रखने की कोशिश करेंगे। और ये भी साथ ही साथ हम करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ हमेशा से नमाज होती है ये, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम वापस से हमारी नमाज जारी रखेंगे। जहां जहां भी मुस्लिम समाज को पढ़ना है, अपने अपने मोहल्लों की मस्जिदों में, अपने घरों पर, अपने निजी स्थानों पर वो बेखुद पढ़ सकते हैं। हमने प्रशासन से परमिशन मांगी थी नमाज के लिए, लेकिन प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर और हाई कोर्ट का हवाला देते हुए हमारी परमिशन को कैंसिल कर दिया।
11: हम 2003 में भी एक विवाद हुआ था, हमारा राधा बसंत पंचमी के रोज़ हमारा राधा के सुंदरकांड मंडल पालकी यात्रा में आया था। 2016 में भी जो विवाद हुआ उसमें भी हमारा राधा के सुंदरकांड मंडल देदला से पालकी यात्रा में यहाँ आया था।
12: आज शुक्रवार को आमतौर पर आ पाते थे आप मंदिर?
13: शुक्रवार को नहीं आ पाते थे,
12: आज सालों बाद।
13: हाँ,
11: हमें बहुत खुशी, और जल्दी से जल्दी हमारी माता यहाँ विराजमान हो, लंदन से उनकी प्रतिमा आए और यहाँ विराजमान हो।
14: लेकिन आज हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी माँ विराजमान हो गई है, ज्योति अखंड यहाँ पे आ गई है, तो बहुत खुशी का मौका है हम लोगों के लिए।
15: कई समय में हमको मौका इस बार शुक्रवार के दिन पूजा करने का, और बहुत खुशी है, और पूरे धार के हिंदू समाज को बहुत खुशी कि आज शुक्रवार के दिन हमें मिला है माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए।
3: All right, let's now focus on the big issue that's affecting so many people, and that is heat wave, the scorching temperatures across vast swaths of the country. Remember, some of the areas are experiencing over 45 degrees, and it's causing a lot of distress to people who have to work out in the open. It's causing heat strokes as well among the public. So let's take you through these developments. Hospitals nationwide have opened cooling centers distributing ORS solutions to help residents cope. Several states have even ordered school closures. Zoos are installing air coolers to protect animals. Authorities have also set up rescue and cooling centers to provide relief during this relentless heat wave that is affecting so many parts of the country. And the national capital as well is being impacted by this heat wave. In fact, the IMD has warned that the heat conditions, this high temperatures, will continue for the next couple of days as well.
16: Quick tips for all our viewers who are working outdoors.
17: So a simple precautionary measures such as covering yourself up in cotton clothes with high porosity, light colored clothes, and more importantly, giving yourself, for those of our countrymen who cannot avoid going outside in the inclement weather, taking shade breaks and fluid breaks at regular interval, meaning thereby, after 1 hour or 45 minutes of work, a person, whether he or she is tired or not, must make it a point to take sit and rest for some time, 10-15 minutes in a shaded area, either under a tree or under the shadow of a tall building, preferably still in front of a cooler, and followed by fluid breaks.
3: All right, so do stay safe in the midst of this heat wave. Follow all precautions. That's our message to the viewers. For the moment, time for us to slip into a short break. Thanks so much for watching. News updates continue right here on NDTV.
0: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
18: हाई रेट चेक द ऑडियो
19: लेट्स स्टार्ट
20: ब्रेकिंग स्टोरी वी आर जंपिंग स्ट्रेट इनटू इट
21: वी गॉट अ पिक्चर ऑफ द लेटर
22: व्हाट इज इन योर लेटर
23: यू कैन नेवर प्रेडिक्ट व्हाट्स गोना हैपन इन तमिलनाडु पॉलिटिक्स
24: 21 डेज इन कश्मीर अनफिल्टर्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स आई सॉ एंड ऑब्जर्व्ड ऑन द ग्राउंड
25: वेरी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम द लाइन ऑफ कंट्रोल देयर वर सम चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट लिम्ब्स इन द शेलिंग
26: फॉर अ कंट्री That has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
27: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
28: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
29: The news.
30: Ayush, since when do we do scripts?
29: Fair point.
30: Picture this. The biggest stage. Floodlights.
29: Wow.
30: 4K. The works.

0: in front of the judge in Jabalpur or the investigating officer. We all are waiting as we say that, as we know that he's a criminal lawyer by profession.
1: Yeah.
0: So he know how to avoid how to law. And that's why for the past 10 days, six police teams are chasing Samarth Singh, but he evaded them, he avoided them, he was nowhere to be seen, and the amount has just increased from 10,000 rupees to 30,000 rupees for the whereabouts of Samarth Singh. Mm. But when the High Court, the matter of his anticipatory bail plea reached High Court, the family of Trisha was ready to oppose, the state government was ready to oppose. His lawyers informed the court that they are withdrawing their application as per their communication with his client, I mean with Samarth Singh, and then they informed the court that Samarth will surrender before the trial court. But it's already, you know, the time is running out, and his lawyers have just now informed in front of all the cameras that he's there in Jabalpur, but when he will surrender, that has to be seen.
1: Mm. Right, Anurag, thanks for getting us all the latest. As we speak, Twisha's husband is in Jabalpur, has not reached the court. Will he surrender or not? That seems to be the million-dollar question. But let's tell you more about all that has happened. It's day 10 since Twisha was found dead at her in-laws. And now the probe has only intensified. After justice for Twisha chorus grew louder, the Madhya Pradesh court has now ordered a second post-mortem with a special AIIMS Delhi team set to travel to Bhopal for the fresh autopsy. Meanwhile, key accused Samarth Singh has withdrawn his anticipatory bail plea, and he is all set to surrender before the court. As we speak, he's reached Jabalpur court. On the other hand, Twisha's mother-in-law, a retired judge, Giribala Singh's role is also under scanner. The Madhya Pradesh government has moved court seeking cancellation of Giribala's bail. The state government has argued that bail was granted in a hurry. The next hearing in the matter is scheduled for May 25th. Madhya Pradesh government has also written to the centre seeking a CBI probe in this very case. This came after Twisha's father met Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav as well. And as we speak, there is of course second post-mortem of Twisha's body which has been ordered. Take a listen to all the reactions coming in, what the police officers are saying at this point of time.
2: फिलहाल इस पूरे मामले में अग्रिम जमानत को लेकर पुलिस की अगली क्या कार्रवाई है और क्या अपडेट अब तक इस मामले में है?
3: इसमें हमने एंटीसिपेटरी बेल कैंसिलेशन के लिए लगाया है एक आरोपी के, क्योंकि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, और जो समर्थ है उनकी गिरफ्तारी के लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं।
2: सीसीटीवी फुटेज में जो लोग नज़र आ रहे हैं, क्या उनसे भी कुछ पूछताछ की जा रही है?
3: वो जो तीन व्यक्तियों का जिक्र कर रहे हैं, उसमें दो व्यक्ति हैं जिनके बयान हो चुके हैं, एक समर्थ सिंह हैं जो फरार हैं।
2: सर, इसको लेकर भी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है सीबीआई जांच के लिए। पुलिस ने तमाम जो तथ्य हैं, जो कहीं कोई चूक थी, वो सब चीज़ें उपलब्ध यहाँ पर करवा दी गई हैं।
3: नहीं, उसमें वो राज्य शासन ने लिखा है सीबीआई जांच के लिए, बाकी तो हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं।
2: सर, समर्थ सिंह को ढूंढने के लिए भी पुलिस टीमें लगी, क्या मध्य प्रदेश भोपाल या इसके अलावा बाहर भी उसकी तलाश की जा रही है?
3: जो जो उसकी गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तो लगी हुई हैं सभी टीमें।
4: पहली बार ये 40 ग्राम सारे लोगों की बात आ रही है,
5: इसके बारे में सब चीज़ों के लिए माय एडवोकेट विल बी देयर टू आंसर।
4: जी,
5: मैंने आपको बताया है ना कि हमारे लोग भी तो कंडोलेंस तो देंगे ना, इतनी दुखद घटना सुनेंगे, एंड जो बड़े प्रेम से उन्होंने, हम लोगों ने सब ने मिल के बहू का स्वागत किया था। ठीक है, आपने उस दिन भी देखा, मैं ऑफिस भी जा रही थी, पुलिस को मेरे बयान लेने थे, भाई पत्रकार ले रहे तो आप लोग वो तो ले ही सकते हैं ना। दे हैव नॉट बॉदर टू टेक माय स्टेटमेंट, दे डिडंट बॉदर टू कलेक्ट द सीसीटीवी, एंड वी आर गिविंग देम डॉक्यूमेंट्स।
4: तो ये जो फोन कॉल्स हुए, आपसे बातचीत हुए, ये सिर्फ आश्वासन देने के लिए, सांत्वना देने के लिए?
5: मुझे तो इतना है, बिकॉज माय आई मीन इट्स अ कंप्लीट ब्रेन फॉग। इसके अलावा तो क्या हो सकता है भाई, व्हाट कैन दे डू? नो, इफ दे कुड इन्फ्लुएंस द पुलिस। आज ये क्यों स्थिति आ रही कि मेरे गैर हाजिरी पुलिस अंदर घुस रही है, वो ऐसा मेरे घर के अंदर घुस के चुपचाप से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ये आईटी एक्ट का भी उल्लंघन है विदाउट माय नोटिस। ठीक है, तो और वो डॉक्टर्ड वीडियोस हैं।
1: Well, in the Twisha death case, her mother-in-law, Giribala, is also at the epicenter. Let's tell you more about that. First up, Giribala's anticipatory bail plea hearing is on May 25th. Giribala Singh's lawyer has withdrawn from the case itself. advocate Enoch George Carlo has perhaps withdrawn midway. And apart from that, the Madhya Pradesh government has also given consent for a CBI probe for Twisha death case to be transferred from Madhya Pradesh to for a CBI probe. Apart from that, Giri Bala also may lose her position as a consumer

0: समर्थ
1: दो नंबर
2: क्या आप
3: क्या कह रहे
2: हैं? आप सरेंडर कर रहे हो या सरेंडर नहीं करने दे रहे हैं? आप सरेंडर कर रहे हो या सरेंडर नहीं करने दे रहे हैं? आप सरेंडर कर रहे हो या सरेंडर नहीं करने दे रहे हैं? आप सरेंडर कर रहे हो या सरेंडर नहीं करने दे रहे हैं? आप सरेंडर कर रहे हो या सरेंडर नहीं करने दे रहे हैं? आप सरेंडर कर रहे हो या सरेंडर नहीं करने दे रहे हैं? आप सरेंडर कर रहे हो या सरेंडर नहीं करने दे रहे हैं?
4: That's the latest that we are picking up here on NDTV. Latest visuals of Samarth Singh, the husband of Trisha Sharma, inside the Jabalpur court. And these are first and exclusive visuals coming to you on NDTV. NDTV is the only network in the country that is relentlessly chasing this case and has brought you the first visuals of Samarth. Joining us live from Bhopal are Harpreet and Anurag. Anurag, I'll come to you first. This is, you know, a big moment, really. Samarth Singh finally surrendering before the court, but will the surrender really happen, or will he have to travel to Bhopal, or is there an MP police team present in Jabalpur that can take his custody? Could you tell us the legal standard operating procedures that will happen now?
5: Yes, Aditya, and first of all, NDTV broke the story before anyone else that Samarth is inside the court from ISIS in Jabalpur. He was sitting inside courtroom number 32, wearing a cap and a mask. He tried to evade our reporters, but we relentlessly chased him. And now Samarth Singh surrendered in front of the district judge in Jabalpur. But it has to be seen, because the IO, the investigating officer, he is Commissioner of Police Rajneesh Kashyap, he is also there in Jabalpur, because remember today the High Court, when the matter came up in front of the High Court for his anticipatory bail plea, because the trial court here in Bhopal rejected his anticipatory bail plea on 18th, and after that he moved to the High Court, and when the matter came up for hearing, his lawyers withdrew the application, saying that, you know, Samarth will surrender before the trial court or the investigating officer. But we have seen the courtroom drama which is happening there in Jabalpur, and now he wants to surrender in Jabalpur, but the police has made it clear that they will arrest him first, because he's absconding for the past 10 days. He evaded the police. I spoke to top police officials, and they clearly said that, you know, he's a criminal lawyer by profession, so he knows all the tricks how to evade the police. They have also said that they don't have much relatives in Bhopal, and they tried to track him for the past so many days. Six teams were there to chase Samarth, but he evaded evaded the Bhopal police for 10 days. Initially, the police announced a cash reward of 10,000 rupees for his whereabouts. That amount was increased to 30,000 rupees. And when his lawyers informed the High Court that he will surrender before the investigating officer or the trial court, what we are learning now that he has reached Jabalpur court to surrender. Aditya?
4: Just that we are picking up. Anurag, stay with us, because we want to know more details on this case. This is perhaps the first step towards justice in this entire case. Latest visuals, viewers, on your screens right now of Samarth Singh inside the Jabalpur court, and the proceedings are underway for his surrender. He will be taken into custody by the Madhya Pradesh police and then brought into Bhopal. Harpreet also joins us. Harpreet, aap kya keh sakti hain? Jaise Bhopal mein abhi court mein case chala, wahan par jo hai arzi lagai gayi surrender ke liye, lekin Jabalpur mein kuch aisi तकनीकी चीजें बनती रहीं, और अब बताया जा रहा है कि समर्थ सिंह ने सरेंडर कर लिया है। ये दृश्य हमको एक्सक्लूसिवली वहां से जबलपुर से मिल रहे हैं, और क्या बता सकती हैं कि क्या उनको भोपाल लाया जाएगा और उसके बाद पुलिस उनकी कस्टडी लेगी?
6: ना, अभी नहीं हुआ है।
7: अरे, अभी मीटिंग चल रही है।
0: बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ टुशा के परिवार के जो वकील हैं अंकुर, वो मौजूद हैं। अंकुर, समर्थ ने सरेंडर कर दिया, अब आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी? वहाँ की लोकल पुलिस उन्हें अपने हिरासत में ले गई, और उसके बाद क्या यहाँ की पुलिस पहुंचेगी उन्हें लेने?
1: अभी सरेंडर कंफर्म नहीं है, वहाँ जो
0: कंफर्म हो गया
1: तो उसके बाद उनको आना यहीं पड़ेगा जो ट्रायल कोर्ट है, जहाँ पे केस रजिस्टर हुआ है। कटारा हिल्स थाने में यहाँ केस रजिस्टर हुआ है, सरेंडर हो भी गए हैं वहाँ, तो अल्टीमेटली आना यहीं पड़ेगा और यहीं सारी प्रक्रिया होगी।
0: पुलिस कस्टडी से बचने के लिए जुडिशियल कस्टडी में पहुंचे हैं वो, ये एक वजह है।
1: हमको तो ये लगता है कि पुलिस ने शुरू से उनकी मदद करी है और कहीं ना कहीं उन्हीं के संरक्षण में ये सारा काम हो रहा है, उन्हीं के हिसाब से सारी कहानी रची गई है, और इसलिए वो जबलपुर में सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन अच्छा है, हम ये चाहते हैं कि जस्टिस मिले, क्या हकीकत है वो सामने आए, इसके लिए उनका सरेंडर करा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ आएंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और जो भी सच है।
0: भगत का आरोप लगा रहे हैं इस तथ्य पर, और भी मजबूती इस बात की भी है कि आज ही अग्रिम जमानत याचिका उन्होंने वापस ली है और आज ही वो वहाँ पहुँच गए। इतने दिन से पुलिस 6 टीमें बना के उनको ढूंढ रही है, पुलिस की लापरवाही, मिली भगत, और क्या रणनीति? परिवार की लगातार बात भी हो रही थी।
1: हम तो शुरू से आपको रणनीति बताएं, 12 तारीख के बाद से जब से घटना घटी है, एक तो आज नंबर आए हैं उसमें, जो कटारा हिल्स के SHO हैं उनने आरोपी से बात करी है, गिरेवाला सिंह, उनका नंबर निकला है उसमें से, तो वो क्यों बात कर रहे थे, और IO की कमी रही इसीलिए SIT बनी। अब SIT ने बताया 6 टीमें बनी है, 30,000 रुपये घोषित कर दिए, पासपोर्ट कैंसिलेशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन आरोपी पूरे मध्य प्रदेश में आराम से घूम रहा है, जबलपुर पहुंच गया, जहां भी गया, तो पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा? इतनी बड़ी बड़ी टीमें बनी और पुलिस की कमी है, ये हम भी नहीं कहते, ये तो शासन प्रशासन भी मानता है, इसीलिए CBI को कंसेंट दिया गया है, और हो सकता है बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हों, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
0: मामला बेहद गंभीर है, आरोप बेहद गंभीर है, 304B का मामला है। तय माना जाए कि समर्थ को पुलिस रिमांड पर लेगी, क्योंकि भद्द तो पुलिस के वैसे ही पहले पिट चुकी है,
1: रिमांड पे उनको लेना पड़ेगा, और जो परिवार की लड़ाई है वो लड़ाई चलती रहेगी।
4: एक सवाल,
1: पुलिस से बाहर ही CBI इसकी जांच करे, और CBI अच्छे से जांच करके जो चीजें हैं वो सब सामने लाए।
4: हरप्रीत, एक सवाल आप इनसे जरूर पूछें कि क्या आपको लगता है कि ये जो रसूख था गिरबाला सिंह का, क्योंकि वो जज रही हैं, एक रसूख है, उनकी पहचान है, चाहे वो जजों के साथ हो, पुलिस के साथ हो, और क्या आपको लगता है कि ये जो आक्रोश पूरे देश भर में रहा, चाहे वो मीडिया की तरफ से रिपोर्टाज रही या लोगों का प्रदर्शन रहा, उसी के दबाव में अब पुलिस एक एक्शन कर रही है?
0: बिल्कुल अंकुर, लगातार ये मामला ना सिर्फ भोपाल, मध्य प्रदेश, पूरे देश में सुर्खियों में रहा है, और गिरीबाला का रसूख किसी से छिपा हुआ नहीं है, यही वजह है कि अग्रिम जमानत उनको यहाँ पर मिल गई, मीडिया भी यहाँ पर सामने आया, लगातार कैंडल मार्च निकाले गए, यही वजह है कि अब पुलिस दबाव में आई और इस मामले के जो छुपे हुए तथ्य थे या लापरवाही भरे थे वो सामने आए, और अब इस पूरे मामले में ट्विशा के घर वालों के फेवर में जाता हुआ मामला दिख रहा है।
1: 100% उनके फेवर में जाएगा, केवल इस केस में ये 2 आरोपी नहीं हैं, इन 2 आरोपियों की जिनने मदद करी, अगर कोई टेम्परिंग हुई है एविडेंसेस के साथ, इसकी जांच होनी चाहिए, और जितने लोग इसमें आरोपी हैं सबको सजा पड़ेगी, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, और पूरा परिवार शुरू से लगा हुआ है, जो कमियां हैं उसको बताता चल रहा है, जो काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का था वो परिवार कर रहा है बेचारा आके, उनकी बच्ची की बॉडी, डेड बॉडी एम्स भोपाल में पड़ी हुई है, इसके बाद भी जो एविडेंस मिल रहे हैं वो रोज़ सुबह उठते हैं, आवेदन देते हैं, सारे एविडेंसेस जमा कराते हैं, उसके बाद भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कछुए की चाल चल रहा है, क्योंकि उन्हें कोई जाँच करनी नहीं है, शुरू से डिरेल करने की कोशिश करी, पूरी इन्वेस्टिगेशन में इतने सारे फाउल प्ले हैं जिसको हमने उजागर करा, इसीलिए आज कहीं ना कहीं जो हमें धीरे धीरे रिलीफ मिल रहा है, और CBI इसमें जांच करे, सरकार का एक अच्छा कदम है, सारी चीज़ें बाहर आ।
0: उम्मीद की जा सकती है कि अगले 1 या 2 दिन में दिल्ली एम्स की टीम पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पहुँचेगी कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार?
1: समय के संबंध में उच्च न्यायालय में जब सुनवाई चल रही थी तो बात हुई थी, लेकिन क्योंकि 2 स्टेट इन्वॉल्व हैं, 2 एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हैं, एम में भी टाइम लगेगा, तो कोई टाइम बाउंड कोर्ट ने नहीं दे सकता था डायरेक्शन, इसलिए उनने दिया एट अर्लीएस्ट, जल्दी से जल्दी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हो, और इस समय को देखते हुए कोर्ट ने भी गंभीरता को माना कि यहाँ से तुषा की बॉडी दिल्ली ले जाना संभव नहीं है, इसलिए दिल्ली एम्स की एक टीम कॉन्स्टिट्यूट हो और वो यहाँ आके सेकंड पोस्टमार्टम।
0: बिल्कुल, शायद इसलिए कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और उनसे कोई बच नहीं सकता। 11 दिनों की मेहनत जो है ट्विशा के परिवार की रंग लाई है, हालांकि परिवार बहुत दुखी है, लेकिन मन में संतुष्टि है कि पिछले 11 दिन से जो जंग एक बेटी के लिए माता पिता और उसके परिजन लड़ रहे थे, अब वो मेहनत रंग लाती हुई नजर आ रही है। जी
4: हरप्रीत, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि 10 दिन से ये परिवार गुहार लगा रहा था न्याय के लिए, और अब ऐसा लगता है कि पुलिस या फिर पूरा जो प्रशासन है अब जागा है और अब कार्रवाई कर रहा है। अनुराग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, इफ आई कैन कम टू यू, कुड यू टेक अस थ्रू द एंटायर 10-11 डेज? व्हाट काइंड ऑफ एन ऑर्डियल हैज दिस बीन फॉर द फैमिली ऑफ ट्विशा शर्मा? रिमेंबर द काइंड ऑफ कैरेक्टर असैसिनेशन दैट द मदर इन लॉ इंडल्ज्ड इन। इमेजिन, शी हैज बीन अ जज, शी हैज बीन समबडी हु हैज टू सेफगार्ड द लॉ एंड प्रोटेक्ट द पीपल, एंड शी वॉज कैरेक्टर असैसिनेटिंग हर ओन डॉटर इन लॉ।
5: Yes, Aditya, and I just wanted to quote few of the statements made by the Madhya Pradesh government in front of the Jabalpur High Court while moving for the cancellation of the anticipatory bail plea, because the Madhya Pradesh government, where Giribala is now serving as a president for the Bhopal Consumer Forum, which comes under the Food and Civil Supplies Ministry. The court has clearly said that the trial court has committed a grave error by overlooking statutory provisions of sections 118 of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023, wherein it is provided that if a woman dies within 7 years of a marriage under unnatural circumstances, the general presumption is against the husband and in-laws that they have caused death. And again, for that, the anticipatory bail granted to Giribala Singh be cancelled for the reason that she is also trying to tamper the evidence. This is what has been said by the Madhya Pradesh police, and obstruct the investigation as she held a press conference. This was also mentioned in that plea, that she held a press conference on 18th of May, on that day when bail application of his son Samarth Singh was rejected. And the police is also saying that during the investigation, police authorities seized their CCTV footage of the house of Giribala Singh on 13th of May, which is a part of investigation. But the respondent, who had already saved CCTV footage with herself strategically in a manner to tamper the prosecution evidence and obstruct the investigation, leaked a small clip of CCTV footage in social media. And this part was also corroborated when NDTV spoke to the CCTV technicians in the morning.
4: All right, Anurag, thank you very much for joining us. Thank you, Harpreet, as well. We have to go across to our guests on this big story, Samarth surrendering in Jabalpur. But the larger question is also about a patriarchal silence, a character assassination, and justice still a far-fetched thought. Joining us live here on NDTV, Meghna Pant, author Shivangi Deshwal, gender-based violence specialist, also joining us live. Shivangi, if I can come to you first, what is your first reaction to Samarth surrendering under pressure, perhaps, here in Jabalpur court? Because we've seen for 10 days a lawyer, a son of a judge, actually evading the law completely, and in fact the entire family indulging in character assassination. What does this say about the mentality and the way things have been?
3: Thank you for having me, Aditya. I think it's very important to understand what people were also discussing, that he was from a very elite law school, that he comes from affluence, that he comes from a judiciary background, he has links, power, English-speaking civility, family honor, good status. And that's exactly what I said, that should not provide you with impunity when you do this kind of crimes.
4: Right.
3: And about the culture of silence, right, it, just to bring in some data here, India is at the help-seeking rate is at the lowest. 1% of women who face violence go to police, legal, or any form of service provider when they are faced with violence. And this is an epidemic, the fact that you have such a culture of silence, especially in upper class and upper caste societies where the honor is higher and they are afraid to come out because of the shame, because of the honor, and in this case, in some cases, the fear of death. Aditya, yeah.
4: Right. I'll go to Meghna Pant in a bit from now. Let's actually play out this entire sequence that we have from Jabalpur. NDTV is the only network chasing Samarth Singh, and we have these exclusive visuals of his surrender inside the Jabalpur court.
2: Samarth.
6: I say SIT जहाँ भी है यहाँ पे आए, इनका लुकआउट नोटिस जारी है.
2: समर्थ समर्थ
6: I say SIT जहाँ भी है यहाँ पे आए, इनका लुकआउट नोटिस जारी है.
2: समर्थ समर्थ
4: All right, Samarth Singh is evading NDTV questions. We will be getting you the latest on this. But going back to Meghna Pant, author, who's joining us, and there's been an uproar all across the country. Meghna, you wrote on X, and in fact, this went viral all across.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबा केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
4: Check the audio.
5: That has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
6: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
4: The line of control, Ship Arun, NDTV.
7: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज़।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Let's do it.
6: That has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
7: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
8: The line of control, Shiv Arun, NDTV.
9: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.

0: Why? कुछ एक कॉमन कर्टसीज तो होती ही है ना. आप कहेंगे मैं आपको अनुराग जी बोलूंगी, आप भी राधिका खेड़ा को राधिका खेड़ा बोलेंगे, आप उनसे गाली गलौज तू तड़ाक नहीं करेंगे. ये कॉमन कर्टसीज अब क्यों भुलाई जा रही है? अनुराग भदौरिया,
1: बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है, बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने पद्मजा जी. ये जो राजनीति में भाषा की मर्यादा लगातार जो गिरती जा रही है, ये चिंता का विषय है. और ये छोटी मोटी चिंता नहीं है, बड़ी चिंता करनी चाहिए, चूंकि गंभीर मामला है. 2014 के बाद से जो अजय राय ने, मैं इस पे पहले बोलता हूँ, जो अजय राय जी ने बोला, अगर AI नहीं है, सही वीडियो है, तो भाषा की मर्यादा ये नहीं होनी चाहिए. लेकिन साथ साथ सत्ता पक्ष के लोगों की भी भाषा विपक्ष के लिए अच्छी होनी चाहिए. सत्ता पक्ष के लोग भी जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, माँ की गाली तक देते हैं, लेकिन बीजेपी कभी कोई कार्रवाई नहीं करती है. अगर ये सब चीज़ अगर बीजेपी भी कार्रवाई कर देती तो आज इन पे भी सवाल पूछने को होता था कि कांग्रेस भी कार्रवाई करे. लेकिन बीजेपी ने तो जिन माँ की गाली दे देते हैं उन पे भी कार्रवाई नहीं करते. हमारे जो सैनिक अधिकारी हैं उनको आतंकवादी की बहन बोल देते तब भी कार्रवाई नहीं करते. और तो और सोचिए, हम लोग तो उन संस्कारों में से हैं कि आपने देखा होगा कि हम श्री अखिलेश यादव जी उनको भी देखने गए जिन्होंने उनका पुतला जलाया. हम तो वो लोग हैं, हम तो इस मानते हैं कि राजनीति अलग चीज़ है, व्यवहार जो हमारी व्यवहारिकता वो अलग चीज़ है. सामाजिक व्यवहारिकता हमेशा रहनी चाहिए. हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. कोई भाषा अगर जो पार्लियामेंट में भाषा बोली गई थी, जिस तरह भाषा का रमेश बिदुड़ी ने इस्तेमाल किया था, अगर उसको पार्टी से निकाल दिया होता तो आज मैं भी यही कह रहा होता कि आज मैं भी आपके साथ आवाज़ में आवाज़ मिला रहा होता कि ऐसा व्यक्ति चाहे किसी दल में हो, अगर किसी प्रधानमंत्री जी के बारे में या संवैधानिक पद के ऊपर बैठे लोगों के बारे में गलत भाषा का इस्तेमाल होगा तो ऐसे आदमी को पार्टी.
0: आप ही के तो नेता थे. अभी जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि पेट्रोल की बचत कीजिए, आपके कौन से नेता थे, कौन लोधी जी, क्या नाम उनका याद नहीं आ रहा, उन्होंने किस शब्द का इस्तेमाल किया था? अनुराग जी,
1: उसमें समाजवादी, सुने, उसमें समाजवादी ने क्या बोला था? आपने मुझसे पूछा था, तुरंत हमने बोला था जिस भाषा की, जो भाषा का इस्तेमाल किया है समाजवादी पार्टी, ऐसी भाषा को इंडोर्स नहीं करती है.
0: निकाल दिया आपने उनको पार्टी से?
1: किसी नेता ने बोला? सुने,
0: अभी आपने कहा ना कि बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेती है इसीलिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है.
1: मैं बोल रहा हूँ
0: लोधी जी को निकाल दिया पार्टी से.
1: अरे हाँ, आप वही, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या विजय शाह ने जिस बात का इस्तेमाल किया था, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसको कोई नोटिस दी? क्या पार्लियामेंट के अंदर में जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ था, क्या स्पीकर साहब ने कुछ बोला? जिस माँ की गाली दी गई थी जिसको, क्या उस माँ के बारे में, या मेयर साहब ने जो बोला था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लखनऊ के अंदर में, क्या उसमें कोई कार्रवाई हुई? या माँ तक पहुँच जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, या कोई दूसरी पार्टी के लोग भी भाषा की मर्यादा गिरती. मैं ऐसी भाषा को जो अजय राय जी के माध्यम से हो या किसी के माध्यम से हो, ऐसी भाषा को हम समाजवादी लोग इंडोर्स नहीं करते. लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए जिस भाषा शैली का वो चाहते हैं उनके लिए इस्तेमाल हो, वही भाषा शैली का इस्तेमाल हो.
0: तो अजेंद्र सिंह लोधी को अभी आपने रखा है पार्टी में, निकाल दिया है, क्योंकि उन्होंने तो सीधे सीधे मोदी जी का नाम लेकर के उनको गाली दी थी ना. मोदी जी ने पिछली बार किसको समाजवादी पार्टी के अंदर गाली दी है? और जिसने भी, आप जो कह रहे हैं कि किसी ने माँ की गाली दिया है किसी को, आप उसका नाम लीजिए. और उसका मैं पॉइंटेड सवाल, आई विल आस्क टू राधिका खेड़ा एंड तुषार गुप्ता, आप मुझे बताइए कि अजेंद्र सिंह लोधी, उन्होंने नाम लेके प्रधानमंत्री को गाली दी है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? वो तो सांसद है आपके, उनको निकाल दिया ना आपने.
1: मैं पूछ रहा हूं,
0: उनको बेदखल कर दिया है पार्टी से.
1: सुनो, उत्तर प्रदेश की लखनऊ की मेयर साहिबा ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया था, आप उनसे पूछिएगा क्या,
0: किसके लिए
1: कार्रवाई,
0: किसके लिए?
1: श्री अखिलेश यादव जी के लिए.
0: क्या बोला उन्होंने?
1: पूछेगा अभी बार बार शब्द. अब आप खुद ही, आपको मालूम है, मैं अपने शब्दों में बोल भी नहीं सकता, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं आपसे.
0: तो फिर आप मेयर साहिबा के खिलाफ एक्शन लीजिए और आप आपस में लड़िए ना.
1: मेरी बात तो,
0: प्रधानमंत्री को जो गाली दी जा रही है, क्या उन्होंने आपके किसी नेता को गाली दी है?
1: मैंने आपको बोला साफ साफ शब्दों में, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जिस भाषा शैली का इस्तेमाल हुआ है, हम कतई उसको इंडोर्स नहीं करते, हम कतई उसका समर्थन नहीं करते.
0: अरे इंडोर्स तो कोई भी नहीं करता. कौन सा प्रधानमंत्री जो मेयर ने भाषा इस्तेमाल किया उसका एंडोर्समेंट कर रहे हैं?
1: सुन तो लीजिए. नहीं, हाँ, मैं प्रधानमंत्री जी, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ. मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, मैंने खंडन किया. हम ऐसी भाषा शैली का हम सपोर्ट नहीं करते. लेकिन सवाल ये है कि 2014 के बाद से जिस भाषा शैली का स्तर गिर रहा है, इस पर रोकने की बात क्यों नहीं सरकार करती? सत्ता पक्ष अगर विपक्ष के बारे में भाषा, गलत भाषा का इस्तेमाल करता है, विपक्ष सत्ता की अगर गलत भाषा का इस्तेमाल करता है, दोनों गलत है. तो हम समाजवादी लोग तो हमेशा भाषा के, आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुंह से कभी किसी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं सुना होगा. हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय,
0: ठीक है, राधिका खेड़ा जल्दी से इस पे रिस्पॉन्ड कर दीजिए. प्लीज रिस्पॉन्ड टू व्हाट अनुराग भदौरिया इज सेइंग, दैट समाजवादी पार्टी इवन बिलीव्स, एंड आई वांट टू टेल आवर व्यूअर्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हिच दैट एपिसोड ही मेंशनड, दैट देयर वर अ फ्यू पीपल हु वर बर्निंग द एफिजी ऑफ अखिलेश यादव. वन ऑफ द लेडीज सस्टेन्ड सम बर्न्स बिकॉज इट गॉट आउट ऑफ हैंड. ही वेंट टू विजिट द प्रोटेस्टर्स. दैट इज द काइंड ऑफ आउटरीच द समाजवादी पार्टी डज. अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो रेसिप्रोसिटी फ्रॉम द बीजेपी साइड. एवरीथिंग इज गेटिंग वेरी कोर्सेंट.

0: राधिका खेर.
1: Padmaja ji, you rightly pointed out about Ajender Singh Lodhi, who spoke a very bad word starting with H for the Prime Minister, and they didn't take any action. And it didn't end over there. Samajwadi Party. Manoj Yadav, आपके साथ के स्पोक्सपर्सन है अनुराग जी, उन्होंने क्या कहा था? चिरपुट, चिरपुट कहा था ना प्रधानमंत्री जी को, भूल गए, ज्यादा दिन नहीं हुए. आजम खान, उन्होंने भी किसका बच्चा कहा था मोदी जी को, कौन से जानवर का बच्चा कहा था? कुत्ते का बच्चा, याद है ना आपको? बादशाह, कमीनापन, कमीना, ये सब शब्द कहे थे ना. मुझे ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए नेशनल टेलीविजन पर आप लोग तो एक सेकंड भी नहीं सोचते दुनिया के सामने, बच्चों के सामने, सबके सामने ये बोलने के लिए. लगातार मोदी जी के परिवार, उनकी माता जी पे आजम खान साहब ने कितनी बार अटैक किया, और आप क्या करते हैं? आजम खान को सर पे बिठाते हैं, दामाद बना के उनकी भैंसे खोती है, तो सरकार के अंडर आई हुई पुलिस भैंसों को ढूंढने जाती है. ये है प्यार आजम खान और अखिलेश यादव का. अखिलेश यादव जी ने भी कई बार प्रधानमंत्री जी पे टॉन्ट्स लगाए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमेशा क्या बोला, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में बोला था कि अखिलेश यादव मेरे मित्र है, डिस्पाइट द फैक्ट्स कि कितने गंदे गंदे टॉन्ट अखिलेश यादव ने बात है. क्या क्या बोला है? काशी में आखिरी वक्त बिताते हैं, याद है ना वो बात 2021 दिसंबर में, आपको तो याद होगा. ये शब्द कहे थे अखिलेश यादव ने, खत्म करने दीजिए. नफरत के भाईजान किसने कहा था, वो भी आप ही के एक ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुआ था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के खिलाफ, आपको याद है. फिर फिरोज खान, आपके समाजवादी पार्टी के संभल के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, उन्होंने मोदी जी के लिए क्या कहा था, ये लोग बंदर हैं, ये लोग बस आतंक मचाते हैं, मोदी जी के लिए कहा था. तो ये तो बस मैं थोड़ी सी बातें बता रही हूँ. बट पद्मजा,
2: लेट मी,
1: वन सेकेंड, आप उसके बाद बोल लीजिएगा. नाउ व्हेन द सुप्रीम मैट्रियार्क सेज मौत के सौदागर, नीच आदमी, दे कॉल प्राइम मिनिस्टर रावण, भस्मासुर, दुर्योधन, बोटी बोटी बोटी बोटी कर देंगे उसको, तो इन्होंने समाजवादी पार्टी में ले लिया था, उसके बाद कांग्रेस ने टिकट दी, एमपी बन गए दोनों के अलायंस में, एंड ही हैज अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद समाजवादी पार्टी.
0: ओके, लेट हिम रिस्पोंड, यू आर टॉकिंग अबाउट इमरान मसूद. यस, अनुराग भदौरिया.
2: देखिए इतने सारे इन्होंने गिराए, तो इनसे पूछिएगा कि मैं बोलना भी नहीं चाहता राम जादे, उसके बाद आगे क्या था, किसने बोला था ये शब्द बताइए आप, आपको तो याद होगा किसने बोला था, किसने बोला था यहाँ पे?
1: उन्होंने तो नहीं बोला था, जिन्होंने कहा था कि ब्राह्मण हमारे दिए हुए पैसों से चलते हैं,
2: मैंने नहीं बोला. मैंने आपको सुना, मुझे सुनिया, तो मैं जवाब दे रहा हूँ, मैंने आपको सुन लिया. गद्दारों को गोली मारो, किसने बोला था ये, आपको याद होगा. आपको ये भी याद होगा कि किस तरह की गाली दी गई थी. एक जाखड़ा जी थे आपके सांसद, उन्होंने क्या बोला था, 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था, बोला था उनमें वीरांगना का भाव नहीं, बहनों को यही बोला था ना उन्होंने. और सुबह से लेकर शाम तक आपकी पार्टी के लोग, आपके कार्यकर्ता और जिले के प्रेसिडेंट और पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोलते रहते. मैंने मेयर की बात की तो आपने जवाब ही नहीं दिया. सवाल ये है कि आप उन शब्द, आप अपने शब्दों की लिस्ट गिनाते हो, ये गिनाने की जरूरत नहीं है. भाषा की मर्यादा 2014 के बाद से गिरी है, ये जिम्मेदारी हमारी आपकी संयुक्त होती है, लेकिन बीजेपी की वजह.
0: यू नो, आई रियली अप्रिशिएट योर कंसर्न अबाउट भाषा की मर्यादा, बट वेरी जेंटली आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अनुराग जी, कभी जाकर के समाजवादी पार्टी मीडिया सेल का आप हैंडल देखिएगा प्लीज, और अगर वो इस वक्त देख रहे हो टीवी पे, आप प्लीज भाषा की मर्यादा थोड़ा सा एक मैनुअल आप प्रिपेयर करके जो भी उस हैंडल को देख रहा है उसको जरूर दीजिएगा, क्योंकि दैट हैंडल बॉस, दैट इज अ केस स्टडी ऑन द लोअरिंग ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स. Be that as it may, I'm glad at least you are saying that this should not be done in public life. Sir, वो तू तड़ाक से तो वो शुरू करते हैं, आगे जो वो बोलते हैं, I again cannot repeat it on TV. But let me bring in Tushar Gupta finally. Let me, because he's been waiting very patiently. Anurag ji, please 10 second लीजिएगा, because Tushar Gupta के पास फिर 10 second रह नहीं जाएंगे.
2: 10 second. मैं तो चैलेंज करके बोलता हूँ, राधिका खेड़ा जी एक भी ऐसा शब्द सुना दे जो श्री अखिलेश यादव जी की, अखिलेश यादव जी ने अमर्याद भाषा का इस्तेमाल किसी के लिए भी किया हो.
1: अभी तो पढ़ के सुनाया, काशी में आखिरी वक्त बताते हैं दिसंबर 2021
2: परिवार,
1: प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे थे.
2: अरे वो राजनीतिक चुनाव की बात है, चुनाव की बात है, चुनाव हार जाएंगे, चुनाव हार जाना बोलना अलग बात है, गाली बकना अलग बात है. कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें करते हैं आप, चुनाव हार जाना बात अलग होती है. आपको नहीं पता
1: है,
2: आप समझ रहे हैं कभी भी वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. मैं ये वादे के साथ और चैलेंज के साथ आपको बोलता हूँ, श्री अखिलेश यादव जी कोई भी भाषा का ऐसा इस्तेमाल नहीं करते जो अमर्यादित हो, असंसदीय हो, असंसदीय हो.
0: ओके, लेट मी ब्रिंग इन तुषार गुप्ता नाउ, एंड आई वांट टू गो बैक टू द ओरिजिनल कंस्पिरेसी थ्योरी दैट आई हैड स्टार्टेड विद. Is this deliberate? Because I refuse to believe that Ajay Rai would not have known somebody around him has a smartphone, that this will be captured. And he used that word twice. He said, वही जिसने मोदी का, and then he said wahi jisne modi ka. So he repeated it twice. Either there is a sense that this kind of language is going to fire up my worker, that my worker actually likes this, he wants to hear this, he is going to work harder. Is that really a sense?
3: No. I think that kind of language will get the worker fired in the eyes of the electorate. They'll fire him from his job. It's that simple. Anurag Bhadauria here was giving a long list of cuss words that were hurled at his party. It is his party that has been accusing the Congress of enabling the BJP in the center. समाजवादी पार्टी का ये बयान था ना कि कांग्रेस की वजह से आज बीजेपी सत्ता में है. तो अनुराग भदौरिया जी जो अजय राय जैसे भाषण देते हैं, जैसे गाली गलौज करते हैं, आपको लगता है यूपी की महिलाएं सुनेंगी? उनको क्या लगेगा? यूपी के बच्चे सुनेंगे, युवा सुनेंगे, क्या सोचेंगे? आपको लगता है वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या वो आपकी पार्टी के साथ जाएंगे जो कांग्रेस के साथ खड़ी होती है? आपको लगता है कि भाजपा जीती है तो क्या हुआ, कैसे हुआ? यही कारण है. ये जो भाषा है, जो गाली गलौच हो रही है, आप कहते हैं भाजपा किस नेता ने वो कहा, उसने ऐसा कह दिया तो हमने ऐसा कह दिया. कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है, उसकी हालत हो चुकी है ऐसी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे. उनके अलायंस पार्टनर्स उन्हें गद्दार कहते हैं, तो वो प्रधानमंत्री को गद्दार कह देते हैं.
2: नहीं नहीं, आप क्या है, अलायंस
3: पार्टनर उनको छोड़ना चाहते हैं तो वो
2: बीजेपी के पीछे लग जाते हैं.
3: उनके अलायंस पार्टनर उन्हें
2: बड़ी दिक्कत है भैया, इंडिया गठबंधन से
3: क्यों तकलीफ हो रही है?
2: पॉलिटिकल विशेषण है क्या है, क्या है आप? क्या
0: पॉलिटिकल एनालिस्ट है अनुराग भदौरिया? पॉलिटिकल एनालिस्ट है और एक तरीके से तो आपको खुशी होना चाहिए ना. जितना अजय राय ऐसा बोलेंगे उतना आपकी स्थिति मजबूत होगी. आज अखिलेश यादव ने बोली दिया है कि सारी की सारी सीटों पर इस बार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ने को तैयार हो रहे हैं. एक तरीके से आपके जमीन तैयार कर रहे हैं अजय राय.
2: 400 देखो, समाजवादी पार्टी हमेशा 403 सीटों पे मजबूती से लड़ती आई है. उनके कार्यकर्ता मजबूत रहते हैं, तभी हमने 37 सीटें जीती हैं लोकसभा में 2024 में, और बीजेपी को 33 पे समेटा है. और जब हमारे साथ कोई अलायंस में भी लड़ेगा तो उसको भी मजबूती मिलती है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता मजबूत होते हैं. तो कोई भी अलायंस मेरे पास हमारे साथ आता है तो उसको भी हेल्प होती है, क्योंकि हमें जीतना है बीजेपी को. बीजेपी को हराने के लिए आप समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत है, गांव-गांव में संगठन है, इसलिए बीजेपी को हराना है हमें. तो मेरा
0: तो आपके जो सारे मजबूत कार्यकर्ता हैं उसमें राजकुमार भाटी जी भी शामिल है ना, जो कभी गुजर के बारे में बोलते हैं, कभी ब्राह्मण के बारे में बोलते हैं. उनको एकदम आप आगे रखिएगा अपने सारी 400 सीटों पर जब लड़ने जाएंगे तो, और सब जगह रखिएगा. जहां पर ब्राह्मण है वहां पे भी रखिएगा, जहां गुजर है वहां पे भी रखिएगा.
2: व्यक्तियों को सुने, ऐसे व्यक्तियों की समाजवादी कभी इंडोर्स नहीं करता ना. समाजवादी ऐसे
0: इंडोर्स किसी को नहीं करता, पर एक्शन नहीं लेते किसी के खिलाफ.
2: सुन तो लीजिए,
0: एंडोर्स तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे ना. अगर कोई कहेगा कि ब्राह्मण और वैश्या का कोई कंपैरिजन करेगा, उसको एंडोर्स नहीं करेंगे.
2: ऐसी भाषा मैं बोल रहा हूँ ना, अरे मैं तो खुद छतरी हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ऐसी भाषा का जो इस्तेमाल करेगा समाजवादी पार्टी उसका कभी सम्मान नहीं करेगी. मैं आपको लिख के दे सकता हूँ.
0: अरे तो बिना सम्मान का प्रवक्ता तो रखा हुआ है, भले से आप सम्मान ना करें, पर आपका आपका प्रवक्ता तो है सही. वो
2: ऐसे व्यक्तियों की ऐसे व्यक्तियों की समाजवादी पार्टी में कोई जगह नहीं होती है जो किसी भी जात वर्ग विशेष के बारे में शब्दों का इस्तेमाल करता है.
0: Okay, very quickly, I want to bring in one more angle, because remember, everyone will keep trying to distance themselves and say, yes, this was said, but we don't endorse it. As if somebody is going to come and endorse and say, yes, he abused and we completely endorse it. Or you will say, we don't respect them, but you will continue to platform them. I want to remind our viewers how common courtesy sometimes is not that common. You had the Prime Minister in just the last few days, in 2024, the Congress President Mallikarjun Kharge, he actually fell ill during a rally in Jammu and Kashmir. At that time, the Prime Minister reached out, asked about his well-being. He dialed Mallikarjun Kharge and asked him about his health. There have been plenty of people within the Congress, not just Sir Kharge ji. Sonia Gandhi in 2016, when she fell ill during a roadshow in Varanasi, the same seat where the Prime Minister and Ajay Rai are face to face, the Prime Minister offered to send an aircraft and medical help to Sonia Gandhi at that time, when she fell ill in the middle of the elections. Lalu Prasad Yadav and Mulayam Singh Yadav, there was a pre-wedding family function. They're also related to each other through marriage. And in 2015, the Prime Minister attended that event in Saifai. The point I'm trying to make is that these common courtesies are extended. There have been plenty of people, journalists, who have been very, very critical of the Prime Minister. He has condoled their death after they have passed away. Why can there not be some kind of reciprocity in all of this is my simple question. Think about it. Meanwhile, Radhika Kheda, respond.
1: Padmaja, the Samajwadi Party spokesperson was saying there's no place for people like Mr. Bhatia, or even for that matter Manoj Yadav, who the very next day after Mr. Bhatia spoke, said ki mere hum jo daan dete hain usi se brahmano ka ghar chalta hai. So he said since there's no place for such people, I'm sure Anurag bhai, aap logon ne un dono ko hata diya hoga as spokespersons. Please, wo bhi bata dijiyega, tweet kar dijiyega, karwa dijiye. Itna zeher aap logon ka count karta hai. Ye bhi tweet aa jana chahiye that humne unko party se nikal diya. Having said that, Prime Minister Shri Narendra Modi ji did not inherit power through a family surname called from the Gandhis or like the Yadav family. He earned it through sweat and blood and tears of serving this nature. Every time these people's dirty mouth vomits venom on him, the 1.4 billion people of India treat it as an insult to their own vote. Go ahead, bleed your toxic frustration as much as you want out on the roads, on national television, in debates, or even like Rahul Gandhi does, gaddar gaddar kehke. Because the more that you people,
0: okay, 30 seconds Anurag Bhadauria, last 30 seconds,
1: the deeper you bury your own party's future.
2: Bas main India to bas itna hi bolunga, bar bar Bharatiya Janata Party jo parivarvad ki baat karte hain, inhe shayad pata nahi hai कि को इस देश के अंदर में लोकतंत्र में जनता चुनती है. बहुत परिवार के लोग चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर रहे, उनके बेटे कुछ कर नहीं पाए. श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी दम पे पार्टी को आज 37 सीटें दिलवाई है. श्री अखिलेश यादव जी ने 37 सीटें दिलवाए पे यार, उनके पिता का आशीर्वाद के साथ, जनता के आशीर्वाद के साथ, जनता के सपोर्ट से उनको 37 सीटें मिली हैं. इसलिए आप जैसे लोग परिवार का मतलब समझते नहीं है. परिवार का मतलब सिर्फ आप उसका सरनेम समझते, कर्मठता नहीं समझते, उनका काम नहीं समझते.
0: ऑलराइट, वी विल लीव दैट असाइड फॉर अनदर डे. द इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर. वी विल हैव मच मोर टाइम टू डिस्कस दैट एट लेंथ. बट एज फार एज दिस काइंड ऑफ डिस्कोर्स इज कंसर्न्ड, I leave it to your wisdom. I still cannot wrap my head around the fact that somebody who is headed into elections, whose party has a lot at stake in the next few months, would let loose in this fashion in public, knowing that this is going to be recorded by somebody. Why would you do it? Either you think it is beneficial, or you simply have failed to gauge the pulse of the public. You decide. Thanks very much, all gentlemen, and Radhika Khera for having joined me. Coming up is Focus, where we will talk about the NEET pain that hundreds of aspirants across the country have faced. How do you deal with it? What is its root? We'll talk about that. That's our Focus.

0: प्रिपरेशन करने में तो सच बताऊं तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि एकदम अंदर से मन टूट चुका है इस चीज को लेकर के।
1: जस्ट आफ्टर द एग्जाम इज ओवर, यू नो द बॉडी इट इज दिस विच गोज इन ओवरड्राइव, सडनली कम्स डाउन, देयर इज अ क्रैश, फाइन, एंड द फैटिग सेट्स इन, फाइन, एट दैट वेरी मोमेंट, यू नो, ड्यूरिंग दैट टाइम वेन द बॉडी इज फैटिग, द माइंड इज फैटिग, वेन वन पर्सन कम्स टू नो दैट यू नो और शी हैज टू अपीयर फॉर एन एग्जाम इन द कमिंग डेज इज वेरी चैलेंजिंग, इट्स इमोशनली एग्जॉस्टिंग।
2: Madhu Shukla comes from a village called Bithauli in the Siddhi district of Madhya Pradesh. This is her room in Bhopal. In one corner stands an old iron bed without a mattress. Madhu spreads a sheet over it and spends her nights here. Heat, loneliness, and mounting mental pressure, everything feels trapped within the walls of this room. An uncle pays for her coaching fees, travel and living expenses. Madhu has been preparing and attempting to crack NEET UG for 4 years. And in 2026, she was confident of a 600 plus score that would get her an admission into a medical college.
0: ये मेरा second attempt था, emotionally तो ऐसा लगता है, देखिए कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अंदर से मन नहीं करता है, अंदर से कई बार चीज़ें वही रिपीट करना है, बार बार वही रिवीजन करना है, वही रिवीजन करना है, बहुत फ्रस्ट्रेशन सा होता है, ऐसा लगता है सब कुछ किसी काम का नहीं है, कई बार तो ऐसा मन करता है कि सुसाइड कर ले।
1: बेसिकली वी नीड टू ऑब्जर्व द बिहेवियर, सो इन द बिहेवियर the person's interpersonal connection would be affected, the person would be more irritable, the person may be more withdrawn, or sometimes the person may act out, be more aggressive towards persons whom they would have behaved properly. They might involve in activities which give them immediate pleasure. For example, getting hooked to social media, sleeping for long hours, or not sleeping at all. You know, when it comes to the food habits, the nutrition might go for a toss. You know, they might eat a lot of carbs. You know, proper nutrition might not be there. Might not go out. You know, physical involvement, physical activities might not be there. So these are some of the areas, and these are some of the behaviors. If we notice in a person, then we should be careful about the emotional, burnout.
2: Every day, Madhu spends around 30 rupees traveling from Anand Nagar to her coaching classes in MP Nagar. Her family somehow manages to send 2,000 rupees for the rent. Her father took loans for her education. Her mother mortgaged her jewelry.
3: जिस दिन नीट एग्जाम कैंसिल होने की न्यूज आई थी, तो उस दिन क्या हुआ था कि मैं छुट्टी पे थी, घर पे थी, तो मेरे पास एकदम से बच्चों के कॉल आना शुरू हो गए। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, और उस टाइम तक हमने न्यूज भी नहीं देखी थी। बच्चे ऐसे थे जो लिटरली रो रहे थे फोन पे, तो मैंने पूछा क्या हो गया, और वो बच्चे ऐसे थे जो अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं थे, दूसरे स्टेट से आए हुए थे, वेस्ट बंगाल से आए थे, मणिपुर से आए थे, वो यहाँ पीजी लेके रहते थे, और उनकी कंडीशन ये थी कि उनकी मम्मी ने जो उनकी ज्वेलरी होती है वो उसे गिरवी पे रख के यहाँ की उन्होंने फीस भरी।
2: Lakshya's father is a farmer and he grew up in a village near Jaipur. After he scored well in the class 12 exams, Lakshya's father decided that his son should become a doctor. So Lakshya went to Sikar and joined a coaching center there

0: to prepare for NEET UG. He appeared for the exam in 2026, but when days later the exam got cancelled, it was emotionally hard to accept for Lakshya. In his family, someone had already suffered. In 2015, his uncle had attempted NEET UG, but then too, his was the center where the exam got cancelled. And he never became a doctor.
1: कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें हो रही हैं ना उससे डिसअपॉइंटेड तो हैं ही ना कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलियर है पेपर को एक एजेंसी को बहुत एजुकेशन ही नहीं है तो हमारा हम क्या कर लेंगे
2: एक बार एक साल पूरी तैयारी की फिर उसने एग्ज़ाम लिखा फिर आया पेपर लीक हो गया तो बच्चे की तो मेहनत है ही है पेरेंट्स को फिर उसका मनोबल बढ़ाना पड़ता है क्योंकि बच्चा तो टूटता ही टूटता है साथ में माँ बाप की भी जो आशाएं थी वो भी टूट जाती है सबकी जेब पर भी फर्क पड़ता है बच्चों पर भी फर्क पड़ता है और घर की स्थिति सर मिडिल क्लास लोगों पर तो बहुत इफेक्ट पड़ता है
0: Earlier, Arnav was preparing while staying in a hostel. But now he has returned home. He has no other option but to start preparing again. But Arnav remains worried about what the paper will be like this time. His mother too is fearful about the uncertainty and confusion that Arnav is undergoing as he continues with his preparations.
3: गार्जियन अगर प्रेशर नहीं डालते हैं गार्जियन एक्सेसिव फेथ करते हैं कि नहीं ये बच्चा अच्छा है करने में इसका तो हो ही जाएगा तो वो जो एक फेथ होता है ना कई बार बच्चा उसको एक बर्डन के रूप में ले लेता है थोड़ा बहुत वो भी थोड़ा फील होता है कि नहीं मैं नहीं कर पाया तो सबका एक्सपेक्टेशन है मुझ पर मुझे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं मेरे गार्जियन जो मुझे बचपन से यहाँ लाए मुझे पढ़ाए मेरे सर मेरे भैया जो भी सारे टीचर लोग हैं मेरे मैं सबका एक्सपेक्टेशन को मीट करना थोड़ा एक चैलेंज रहता है कि नहीं मेरे को ऐसा करना है ताकि मैं उन लोगों से भी कह सकूँ कि सर आपने मुझे पढ़ाया तो मैंने आपके लिए रिजल्ट दिया मैंने किया तो थोड़ा प्रेशर रहता है बट ये फेथ भी अच्छा लगता है कि चलो सामने वाले आदमी को फेथ है मेरे पे कि मैं कर सकता
4: बच्चे बड़े परेशान हैं कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कुछ तो ऐसे हैं कि रोने लगते हैं डायरेक्टली कि अब मैम नहीं होगा हमसे उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है कि अब क्यों नहीं होगा होगा तुमसे होगा लेकिन कुछ देर के लिए हम उन्हें मोटिवेट कर देते हैं लेकिन वो मोटिवेशन होता है टेम्परेरी अगले दिन उनका फिर वही हाल हो जाता है फिर उनको समझाना पड़ता है
0: Harish is from Sikar and this was his fifth NEET attempt. Harish says that if someone truly wants to become a doctor, then the number of attempts don't matter.
5: अगर मुझे डॉक्टर बनना ही है तो वो चार अटेम्प्ट पांच अटेम्प्ट मायने नहीं रखते आपके लिए लेकिन जो अपने दोस्त जा चुके हैं मेडिकल कॉलेज में उनसे भी अपने को मोटिवेशन मिलता है लेकिन मन में रहता है कि यार मेरा दोस्त जा चुका है मुझे भी जाना ही है तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप अपने आप को मोटिवेट फील करोगे ही करोगे ऐसा कुछ नहीं है कि रीनीट हो रहा है मैं डिप्रेस हो जाऊंगा ऐसा कुछ भी
3: जो रीनीट के पेपर होते हैं वो एक्सेसिवली ज़्यादा टफ होते हैं क्वेश्चन की वाशनेस बढ़ जाएगी तो वो जिस डेप्थ तक पढ़ा था उसको उसका वाशनेस बढ़ाना पड़ जाएगा तो एक प्रेशर तो ये है कि जितना पढ़े उतना रिवाइज करना है और प्लस कुछ एडिशनल चीज़ें पढ़ने वाला तो वो बच्चा पढ़ने वाला हो नहीं पढ़ने वाला हो जिस भी तरह का स्टूडेंट हो एवरेज हो टॉपर हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो उसको दोबारा और मेहनत करना ही पड़ जाएगा उस पर और ये एक प्रेशर फील होता है
0: The NEET examination, introduced by the Medical Council of India, was first conducted in May 2013, and it replaced several medical examinations that had been there across the country. That first time, more than 10 lakh students had registered to take the exam. But not everyone was happy, and cases were filed in the courts. In July 2013, the Supreme Court of India put a stay on the exam in response to petitions received against the exam and said that the medical council could not interfere in the admission process. NEET made a comeback in 2016 and by 2020 NEET had become the one and only entrance exam for medical colleges across the country.

अनफॉर्चुनेटली जो रिज़ल्ट आया नीट का और जो उसके साथ इतना बड़ा केस हो गया है पेपर लीक का, तो उससे पूरी फैमिली हम लोग बहुत शॉक्ड हैं। और अब कुछ समझ में नहीं आता कि आगे ये कोशिश करें एक साल तक के पूरी तरह से पूरी तैयारी करें और फिर उसके बाद अगली बार पता नहीं क्या हो। तो ये डर सबके दिमाग में बैठ गया, तो डर के मारे इन्हीं ने कहा कि मैं नीट कंटिन्यू नहीं करूँगी और उसको जो है चेंज करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, तुम मेरे प्रोफेशन में आओ तो क्लैट करो, कोई अच्छा नेशनल कॉलेज लेके आओ और उसके बाद जो है फिर तुम ज्यूडिशरी में आओ और देश के लिए अपने कंट्री के लिए कुछ करो।

0: NEET till 2018 was conducted by the Central Board of Secondary Education, CBSE. But the responsibility was transferred to the National Testing Agency. NTA conducted the first NEET UG examination in 2019. NEET UG exam is conducted in 9 different languages other than English and Hindi: Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Marathi, Odia, Tamil, Telugu, and Urdu. While most major entrance exams in India take the computer-based route, NEET remained with the optical mark recognition or OMR technology that reads and captures data from paper forms. Even in the NTA basket of 16 national level examinations, NEET is the only one which remained in the OMR format.
1: अगर हम 2020 से 2026 तक का देखें, अभी तक 2 से 3 बार पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है, तो एनटीए को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि अगर पेपर लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं से तो हो रहा है। तभी उन्होंने उस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और एंड में बोला कि हमें पता चलते हमने रिपोर्ट कर दिया। उनके रिपोर्ट करने से कुछ फ़ायदा थोड़ा ना हो रहा है, हमें तो वही करना पड़ रहा है। और जैसे कि पेपर के बाद हम तो फ्री माइंड बैठ गए, 20 दिन ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम लोग अच्छे से थे कि हमारा तो हो जाएगा। पर वो 20 दिन का जो लॉस हुआ, हमने किताबों पे ध्यान नहीं दिया, उसको भी तो सर रिकवर नहीं कर सकते ना। और प्लस फिर वही है कि पेपर भी कैसे भी आ सकता है।
0: Inside Madhu's tiny room in Bhopal, the doctor poster on the wall every day reminds her of her goal in life. Whatever be the obstacle, Madhu still has to struggle on, because in the harshness of life, dreams spur hope for the future.
2: नीट एस्पिरेंट के मुझे लगता है कि उन्होंने जो ये नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं वो अपने लिए एक जो एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका होता है कि हाँ अपन नीट के एग्ज़ाम दे, डॉक्टर बने। लेकिन ये जो समाज के लोग हैं, इन्होंने ही इस एग्ज़ाम को मतलब कि तहस नहस कर रखा है, पेपर लीक करवाते हैं, उनको मतलब क्या है इस चीज़। आप अच्छा मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि आप कैसा करने से जो है अब कुछ नहीं होगा, आपको पैसे मिलेंगे और कुछ नहीं है उससे। लेकिन उससे जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो जिनका माइंडसेट अच्छा होता है, जिनके लिए डॉक्टर लोगों के लिए सिंपैथी होती है, वो लोग पीछे हट जाते हैं इस रास्ते से। तो ये गलत बात है कि आप पेपर लीक करवाते हो जो भी है ये।
0: Days after the NEET UG 2026 examination was cancelled, NTA announced a new examination date. While NEET will be computer-based from 2027, as promised by the Education Minister, NTA clarified that the repeat exam of 2026 will still be pen and paper. The re-exam on June 21st is expected under heightened security and monitoring measures.
3: अभी आपको मतलब दोबारा से वो चीज़ रिवाइज़ करनी पड़ेंगी, आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे दोबारा, आपको देखना पड़ेगा पेपर का लेवल, देखना पड़ेगा उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मतलब रीनीट अगर ये दे रहे हैं लोग, काफ़ी ज़्यादा बच्चे दे रहे हैं, हाँ टाइम थोड़ा कम है।
4: मेरा नाम है लक्ष्य, और मेरा नाम के अंदर ही मेरा लक्ष्य छुपा है।

0: Death mystery has also been uncovered. New videos accessed by NDTV now show Trisha's final known movement before her death. Hours before she was found dead, Trisha is seen calm and relaxed inside a salon, getting a head massage and a pedicure. But what changed in the hours after that visit? Take a look at our report.
1: It's been 10 days since 33-year-old Trisha Sharma was found dead at her in-laws' home in Bhopal. And the investigation is now intensifying as calls for justice grow louder. NDTV has accessed CCTV images that trace Trisha's last movements before her death. At 3:12 p.m. on May 12th, Trisha was seen entering a parlor. She seemed calm, she seemed relaxed. Minutes later, in the second footage from the parlor, she was seen getting a head massage, sitting at ease. That was around 3:26 p.m. And then, in the third footage captured roughly at 5:45 p.m., she is seen getting a pedicure at this salon. Her visit to the parlor just hours before her death has now raised fresh questions, further deepening the mystery surrounding the case.
2: When people are under stress or anxiety, we most of the time tell, or having depressive symptoms, we most of the time tell them to do self-care activities. Now, this particular case, when Trisha, you are telling me, like going to the parlor, and she is doing her self-care. And I would think it's a very positive sign. She must be very hopeful. Maybe if she's stressed also, or just a part of self-care. So I would say It shows that the positivity in her, maybe not having direct signs that she can commit suicide, but definitely it is showing the positive sign this girl is taking care of her health.
1: On the other hand, the CCTV footage that emerged earlier reportedly showed Trisha heading towards the terrace. That's around 7:20 p.m. While another clip allegedly captured her body being brought downstairs nearly an hour later. With all these fresh revelations, the cops are now closely examining fresh evidence that could prove crucial in reconstructing Trisha's final hours. In a major breakthrough for Trisha's family, the Madhya Pradesh High Court has now ordered a second autopsy in the case. The court directed that the procedure should be conducted by a special team from AIIMS Delhi, although the autopsy itself will take place in Bhopal.
3: हमें यह अपडेट मिला है कि PM2 की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई है. एंड अभी इसमें थोड़ा ये भी है कि एम्स दिल्ली से शायद से एक टीम आने वाली है एम्स भोपाल में, तो अभी इट इज़ येट टू बी कंफर्म कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है, बट आर प्ली हैज़ बीन एक्सेप्टेड. वी हैव गॉटन द डायरेक्शन. इट इज़ अ वेरी स्मॉल विन, द फाइट इज लॉन्ग. हमें एक सही राह पे हम जा चुके हैं बस.
1: For Trisha's family, the second postmortem is a crucial step towards answers, even as fresh CCTV footage and mounting timeline difference deepen the mystery surrounding her death. Bureau Report, NDTV.
0: Shifting our focus to Maharashtra, at least 19 people have been arrested for rioting and stone pelting during the demolition drive in Mumbai's Bandra East. All the accused have been arrested and sent to police custody till May 26. But the opposition has been claiming that the manner in which this was done was apparently in a biased manner. Sample the reactions.
4: तिथे जे कोण अजितदादांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते हे लोकांची माती भडकवत होते यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे. काल जे किरीट सोमय्या लोकांची घरं तुटत असताना मी तोडली करून आधीच त्यांना जे भडकवण्याची धंदे करत होते याचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे. म्हणजे एका बाजूला घरं तोडत असताना ज्यांनी लोकांची माती भडकवली, कोणी त्यांना प्रवृत्त केलं पोलिसांवर अटॅक करायला, या सगळ्या घटनेची चौकशी झाली पाहिजे. जर ती झाली नाही तर हे वारंवार संपूर्ण मुंबईभर महाराष्ट्रभर असंच होईल. उद्या जर कुठे दंगल घडली तर या दंगलीसाठी जबाबदार कोण हे सुद्धा पोलिसांनी शोधून काढलं पाहिजे.
5: हर जगह भाजपा करना चाहती है. आज तो बेरोजगारी बढ़ रही है, आज देख रहे हो हीट बढ़ रही है, आज देखो किसान आत्महत्या कर रहा है, आज युवा बेरोजगार है, और ये सब परिस्थिति में महिला भी पूछ रही है कि जो कीमतें हैं आसमान से टकरा गई है. लेकिन ये नहीं, आपको कहीं भटकाना है, पूरे इशू को कहीं और लेके जाना है.
6: और जो लोग बेचारे छोटे छोटे घर बना के बैठे हैं उनको इलीगल बोल के तोड़ दिया जाएगा तो जाएंगे कहाँ? वो ये बुलडोजर कार्रवाई जो यूपी से शुरू हुई है ना, एक फैशन बन गया, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए।
7: एमआईएम आए, मुस्लिम लीग आए, राहुल गांधी आए, उद्धव ठाकरे आके खड़े रह जाए, बांग्लादेशी को पकड़ पकड़ के वापस भेजा जाएगा। बांद्रा टर्मिनस बांग्लादेशी मुक्त बन गया है।
8: हम लोगों ने ऐसा बचाव पक्ष दिया कि कहा कोर्ट को कि भाई ऑलरेडी जब डेमोलिशन 19 तारीख से हो रहा था, ठीक है, तो फिर पथरावबाजी 20 तारीख की शाम में अचानक कैसे होता है? जब अगर पहले से प्रिपरेशन कोई करता है तो फिर 19 तारीख को ही पथरावबाजी होना चाहिए था, तो 20 तारीख की शाम में कैसे पथरावबाजी हो सकती है? ये पथरावबाजी जब हुई है, जब मस्जिद को डेमोलिशन और जो मस्जिद का जो गुंबद है, जो तोम बोला जाता है, उसको डेमोलिशन किया, तब जाके लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई और वहाँ पर फिर मोमेंट थोड़ा सा हीट हो गया, तब जाके वहाँ पे फिर पथरावबाजी हुई, दोनों तरफ से फिर लाठीचार्ज भी हुआ, यहाँ से वहाँ से पथरावबाजी भी। जब अगर सुनियोजित तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है तो फिर ये जो डेमोलिशन के लिए आते हैं तो 19 तारीख को ही हो जाना चाहिए था ना, ये ऑल ऑफ अ सडन 20 तारीख की शाम में कैसे होता है? इस वजह से होता है क्योंकि ये लोग जानबूझ के मस्जिद को डेमोलिश करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट हुए थे। तो जब मस्जिद को डेमोलिशन किया गया तब लोगों ने भड़का और लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि हमको वो हमारे हाथ से हम तोड़ेंगे, हमको एटलीस्ट जो रिलीजियस बुक है वो भी हमको निकालने नहीं दिया।
0: स्लिपिंग इनटू अ वेरी क्विक ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, कीप वाचिंग एनडीटीवी।

0: stressed also, or just a part of self-care. So I would say it shows that the positivity in her, maybe not having direct signs that she can commit suicide, but definitely it is showing the positive sign this girl is taking care of her health.
1: On the other hand, the CCTV footage that emerged earlier reportedly showed Twisha heading towards the terrace. That's around 7:20 p.m. While another clip allegedly captured her body being brought downstairs nearly an hour later. With all these fresh revelations, the cops are now closely examining fresh evidence that could prove crucial in reconstructing Twisha's final hours. In a major breakthrough for Twisha's family, the Madhya Pradesh High Court has now ordered a second autopsy in the case. The court directed that the procedure should be conducted by a special team from AIIMS Delhi, although the autopsy itself will take place in Bhopal.
2: हमें ये अपडेट मिला है कि PM2 की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई है एंड अभी इसमें थोड़ा ये भी है कि AIIMS Delhi से शायद से एक टीम आने वाली है AIIMS Bhopal में तो अभी इट इज येट टू बी कंफर्म कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है बट आवर प्ली हैज बीन एक्सेप्टेड वी हैव गॉटन द डायरेक्शन इट इज अ वेरी स्मॉल विन द फाइट इज लॉन्ग हमें एक सही राह पे हम जा चुके हैं बस
1: फॉर Twisha's फैमिली द सेकेंड पोस्टमार्टम इज अ क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स आंसर्स इवन एज फ्रेश सीसीटीवी फुटेज एंड माउंटिंग टाइमलाइन डिफरेंस डीपन द मिस्ट्री सराउंडिंग हर डेथ ब्यूरो रिपोर्ट NDTV
3: Shifting our focus to Maharashtra, at least 19 people have been arrested for rioting and stone pelting during the demolition drive in Mumbai's Bandra East. All the accused have been arrested and sent to police custody till May 26. But the opposition has been claiming that the manner in which this was done was apparently in a biased manner. Sample the reactions.
4: तिथे जे कोण अजित दादांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते हे लोकांची माती भडकवत होते यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे काल जे किरीट सोमय्या लोकांची घरं तुटत असताना मी तोडली करून आधीच त्यांना जे भडकवण्याचे धंदे करत होते याचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे म्हणजे एका बाजूला घरं तोडत असताना ज्यांनी लोकांची माती भडकवली कोणी त्यांना प्रवृत्त केलं पोलिसांवर अटॅक करायला या सगळ्या घटनेची चौकशी झाली पाहिजे जर ती झाली नाही तर हे वारंवार संपूर्ण मुंबईभर महाराष्ट्रभर असंच होईल उद्या जर कुठे दंगल घडली तर या दंगलीसाठी जबाबदार कोण हे सुद्धा पोलिसांनी शोधून काढलं पाहिजे
5: हर जगह भाजपा करना चाहती है आज तो बेरोजगारी बढ़ रही है आज देख रहे हो हीट बढ़ रही है आज देखो किसान आत्महत्या कर रहा है आज युवा बेरोजगार है और ये सब परिस्थिति में महिला भी पूछ रही है कि जो कीमतें हैं आसमान से टकरा गई है लेकिन ये नहीं आपको कहीं भटकाना है पूरे इशू को कहीं और लेके जाना है
6: और जो लोग बेचारे छोटे छोटे घर बना के बैठे हैं उनको इलीगल बोल के तोड़ दिया जाएगा तो जाएंगे कहाँ वो ये बुलडोजर कार्रवाई जो यूपी से शुरू हुई है ना एक फैशन बन गया ये बिल्कुल बंद होना चाहिए
7: MIM आए मुस्लिम लीग आए राहुल गांधी आए उद्धव ठाकरे आके खड़े रह जाए बांग्लादेशी को पकड़ पकड़ के वापस भेजा जाएगा बांद्रा टर्मिनस बांग्लादेशी मुक्त बन गया है
8: हम लोगों ने ऐसा बचाव पक्ष दिया कि कहा कोर्ट को कि भाई ऑलरेडी जब डेमोलिशन 19 तारीख से हो रहा था ठीक है तो फिर पथरावबाजी 20 तारीख की शाम में अचानक कैसे होता है जब अगर पहले से प्रिपरेशन कोई करता है तो फिर 19 तारीख को ही पथरावबाजी होना चाहिए था तो 20 तारीख की शाम में कैसे पथरावबाजी हो सकती है ये पथरावबाजी जब हुई है जब मस्जिद को डेमोलिशन और जो मस्जिद का जो गुंबद है जो तोम बोला जाता है उसको डेमोलिशन किया तब जाके लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई और वहाँ पर फिर मोमेंट थोड़ा सा हीट हो गया तब जाके वहाँ पे फिर पथरावबाजी हुई दोनों तरफ से फिर लाठीचार्ज भी हुआ यहाँ से वहाँ से पथरावबाजी भी जब अगर सुनियोजित तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है तो फिर ये जो डेमोलिशन के लिए आते हैं तो 19 तारीख को ही हो जाना चाहिए था ना ये ऑल ऑफ अ सडन 20 तारीख की शाम में कैसे होता है इस वजह से होता है क्योंकि ये लोग जानबूझ के मस्जिद को डेमोलिश करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट हुए थे तो जब मस्जिद को डेमोलिशन किया गया तब लोगों ने भड़का और लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि हमको वो हमारे हाथ से हम तोड़ेंगे हमको एटलीस्ट जो रिलीजियस बुक है वो भी हमको निकालने नहीं दिया
3: स्लिपिंग इनटू अ वेरी क्विक ब्रेक डोंट गो एनीवेयर कीप वाचिंग NDTV
9: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु
10: So many attacks.
9: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining...

0: otherwise be. So let's not, you know, judge Rahul Gandhi with one lens, and the Prime Minister can have all the free passes. He can say 50 crore ki girlfriend, Diddi yo Diddi, and all sorts of slurs which are objectionable to a very high degree. Let's instead talk about...
1: Okay, Radhika Khera, quickly respond to the AI charge. Then I want to open this up. This is not Ajay Rai, it's AI.
2: Okay, now he was talking about ki I cannot... He said the Prime Minister called Sonia Ji Jersey Cow. Please show me the video. He will not have that video. Secondly, he said ki I will not... if he has said something like this, I cannot be nice, I cannot be kind to Prime Minister Modi. Well, Prabhakaran killed Rahul Gandhi's father. Yet Rahul Gandhi chooses to get two ministerial berths and not utter a word when his own newfound brother pays homage to Prabhakaran just 2 days before his father's death anniversary. तब तो सब कुछ ठीक हो जाता है क्योंकि ना सत्ता की लालच एंड लस्ट फॉर पावर इज सो मच दैट ही फॉरगेट्स दैट हिज फादर वाज किल्ड बाय प्रभाकरन द रीजन व्हाई राहुल गांधी बिकॉज़ ही इज राजीव गांधी सन द रीजन व्हाई सोनिया जी इज सोनिया गांधी बिकॉज़ शी इज राजीव गांधी वाइफ बट आई डिडंट स्पीक ओवर यू काइंडली मेंटेन द साइलेंस एंड डेकोरम एंड स्पीक ओवर योर टर्न
1: Yes, let's come back to the topic, Radhika Khera. They are very clearly saying that this is an AI-generated video which is being done in order to put the Congress in the dock. Ajay Rai did not use this language, period.
2: If this is AI, please show me the FIR.
0: Come from the state of law and order.
2: If this is AI, please show me an FIR that Mr. Ajay Rai has filed claiming that this is AI and he's been... Malite, I'm sure Nikhil Jain here is a very well-known advocate. He can go file a case for him. Where is the complaint? I'm sure they must have filed a complaint. Agar Padmaja ji, aapka ya mera koi video aisa bana hua hoga and it's AI, we will definitely go to the police station and file an FIR. How are they okay with an AI video online?
0: Let the police take cognizance themselves.
2: He should have immediately filed an FIR. I'm sure that he can supply us with an FIR copy. अगर मेरे ही इज़ अ वेरी बिग लीडर एंड जो वर्ड यूज करे हैं निखिल सर आई कुडंट फाइंड द वीडियो एनीवेयर इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट व्हाट इज रॉन्ग विद यू व्हेन यू से समथिंग लाइक दैट यू आर जस्ट शोइंग दैट यू हैव नॉट इवन डन योर रिसर्च
0: एनडीटीवीज ओन
2: अरे एनडीटीवी छोड़ा ट्विटर
1: अरे भाई वी आर प्लेइंग दैट वीडियो आई डोंट नो हूज दिस टीम दैट यू कंटीन्यूअसली आर रेफरिंग टू वी हैव द वीडियो वी आर प्लेइंग दैट वीडियो
0: गिव मी द अनसेंसर्ड वीडियो प्लीज गिव मी द अनसेंसर्ड वीडियो How am I to know what objectionable thing
2: is? Twitter pe jao bhaiya.
1: Arey bhai, sara background research bhi aapko hum karke de de.
0: I could not find it. And again,
1: okay, you could not find it. Anurag Bhadauria, kya aapko mila wo video? Kya ye AI ka video hai? And you know, just to be a little more serious about this. What makes this even worse is that abhi ek mahina bhi nahi hua hai. Khud Ajay Rai aspatal mein the. अजय राय को प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपके लंबी आयु के लिए एंड यू नो होप यू गेट वेल सून उनकी दीर्घायु के लिए वो बात कर रहे हैं एंड देन यू रेसिप्रोकेटेड विद दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज व्हाई कुछ एक कॉमन कर्टसीज तो होती ही है ना आप कहेंगे मैं आपको अनुराग जी बोलूंगी आप भी राधिका खेड़ा को राधिका खेड़ा बोलेंगे आप उनसे गाली गलौज तू तड़ाक नहीं करेंगे ये कॉमन कर्टसीज अब क्यों भुलाई जा रही है अनुराग भदौरिया
3: बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने पद्मजा जी ये जो राजनीति में भाषा की मर्यादा लगातार जो गिरती जा रही है ये चिंता का विषय है और ये छोटी मोटी चिंता नहीं है बड़ी चिंता करनी चाहिए क्योंकि ये गंभीर मामला है 2014 के बाद से जो अजय राय ने मैं इस पर पहले बोलता हूँ जो अजय राय जी ने बोला अगर AI नहीं है सही वीडियो है तो भाषा की मर्यादा ये नहीं होनी चाहिए लेकिन साथ साथ सत्ता पक्ष के लोगों की भी भाषा विपक्ष के लिए अच्छी होनी चाहिए सत्ता पक्ष के लोग भी जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं माँ की गाली तक देते हैं लेकिन बीजेपी कभी कोई कार्रवाई नहीं करती है अगर ये सब चीज़ अगर बीजेपी भी कार्रवाई कर देती तो आज इन पे भी सवाल पूछने को होता था कि कांग्रेस भी कार्रवाई करे लेकिन बीजेपी ने तो जिन माँ की गाली दे देते हैं उन पर भी कार्रवाई नहीं करते हमारे जो सैनिक अधिकारी हैं उनको भी आतंकवादी की बहन बोल देते तब भी कार्रवाई नहीं करते और तो और सोचिए हम लोग तो उन संस्कारों में से हैं कि आपने देखा होगा कि हम श्री अखिलेश यादव जी उनको भी देखने गए जिन्होंने उनका पुतला जलाया हम तो वो लोग हैं हम तो इस मानते हैं कि राजनीति अलग चीज है व्यवहार जो हमारी व्यवहारिकता वो अलग चीज है सामाजिक व्यवहारिकता हमेशा रहनी चाहिए हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं कोई भाषा अगर जो पार्लियामेंट भाषा बोली गई थी जिस तरह भाषा का रमेश बिदुड़ी ने इस्तेमाल किया था अगर उसको पार्टी से निकाल दिया होता तो आज मैं भी यही कह रहा होता कि आज मैं भी आपके साथ आवाज में आवाज मिला रहा होता कि ऐसा व्यक्ति चाहे किसी दल में हो अगर किसी प्रधानमंत्री जी के बारे में या संवैधानिक पद के ऊपर बैठे लोगों के बारे में गलत भाषा का इस्तेमाल होगा तो ऐसे आदमी को पार्टी
1: आप ही के तो नेता थे अभी जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि पेट्रोल की बचत कीजिए आपके कौन से नेता

0: थे कौन, लोधी जी क्या नाम उनका याद नहीं आ रहा, उन्होंने किस शब्द का इस्तेमाल किया था अनुराग जी?
1: उसमें समाजवादी ने, सुने उसमें समाजवादी ने क्या बोला था, आपने मुझसे पूछा था, तुरंत हमने बोला था जिस भाषा की, जो भाषा का इस्तेमाल किया है समाजवादी पार्टी, ऐसी भाषा को इंडोर्स नहीं करती है।
0: निकाल दिया आपने उनको पार्टी से?
1: किसी नेता ने बोला, सुने
0: अभी आपने कहा ना कि बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेती है इसीलिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है।
1: मैं बोल रहा हूँ
0: लोधी जी को निकाल दिया पार्टी से?
1: अरे हाँ, आप वही, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या विजय शाह ने जिस बात का इस्तेमाल किया था, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसको कोई नोटिस दी? क्या पार्लियामेंट के अंदर में जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ था, क्या स्पीकर साहब ने कुछ बोला? जिस माँ की गाली दी गई थी जिसको, क्या उस माँ के बारे में, या मेयर साहब ने जो बोला था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लखनऊ के अंदर में, क्या उसमें कोई कार्रवाई हुई? माँ तक पहुंच जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग या कोई दूसरी पार्टी के लोग भी, भाषा की मर्यादा गिरती। मैं ऐसी भाषा को, जो अजय राय जी के माध्यम से हो या किसी के माध्यम से हो, ऐसी भाषा को हम समाजवादी लोग इंडोर्स नहीं करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए जिस भाषा शैली का वो चाहते हैं उनके लिए इस्तेमाल हो, वही भाषा शैली का इस्तेमाल हो।
0: तो अजेंद्र सिंह लोधी को अभी आपने रखा है पार्टी में, निकाल दिया है, क्योंकि उन्होंने तो सीधे सीधे मोदी जी का नाम लेकर के उनको गाली दी थी ना। मोदी जी ने पिछली बार किसको समाजवादी पार्टी के अंदर गाली दी है? और जिसने भी, आप जो कह रहे हैं कि किसी ने माँ की गाली दी है किसी को, आप उसका नाम लीजिए। और उसका मैं पॉइंटेड सवाल, आई विल आस्क टू राधिका खेड़ा एंड तुषार गुप्ता, आप मुझे बताइए कि अजेंद्र सिंह लोधी, उन्होंने नाम लेके प्रधानमंत्री को गाली दी है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? वो तो सांसद है आपके, उनको निकाल दिया ना आपने।
1: मैं पूछ रहा हूं,
0: उनको बेदखल कर दिया है पार्टी से।
1: सुनो, उत्तर प्रदेश की लखनऊ की मेयर साहिबा ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया था, आप उनसे पूछिएगा क्या,
0: किसके लिए
1: कार्रवाई,
0: किसके लिए?
1: श्री अखिलेश यादव जी के लिए।
0: क्या बोला उन्होंने?
1: पूछेगा अभी बार बार शब्दों, अब आप खुद ही, आपको मालूम है, अब मैं अपने शब्दों में बोल भी नहीं सकता, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं आपसे।
0: तो फिर आप मेयर साहिबा के खिलाफ एक्शन लीजिए और आप आपस में लड़िए ना।
1: मेरी बात तो,
0: प्रधानमंत्री को जो गाली दी जा रही है, क्या उन्होंने आपके किसी नेता को गाली दी है?
1: मैंने आपको बोला साफ साफ शब्दों में, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जिस भाषा शैली का इस्तेमाल हुआ है, हम कतई उसको इंडोर्स नहीं करते, हम कतई उसका समर्थन नहीं करते।
0: अरे इंडोर्स तो कोई भी नहीं करता, कौन सा प्रधानमंत्री जो मेयर ने भाषा इस्तेमाल किया उसका एंडोर्समेंट कर रहे हैं?
1: सुन तो लीजिए, नहीं हाँ, मैं प्रधानमंत्री जी, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, मैंने खंडन किया, हम ऐसी भाषा शैली का हम सपोर्ट नहीं करते। लेकिन सवाल ये कि 2014 के बाद से जिस भाषा शैली का स्तर गिर रहा है, इस पर रोकने की बात क्यों नहीं सरकार करती? सत्ता पक्ष अगर विपक्ष के बारे में भाषा, गलत भाषा का इस्तेमाल करता है, विपक्ष सत्ता के अगर गलत भाषा का इस्तेमाल करता है, दोनों गलत है। तो हम समाजवादी लोग तो हमेशा भाषा के, आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुंह से कभी किसी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं सुना होगा। हम अप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय,
0: ठीक है राधिका खेड़ा, जल्दी से इस पे रिस्पॉन्ड कर दीजिए प्लीज, रिस्पॉन्ड टू व्हाट अनुराग भदौरिया इज सेइंग, दैट समाजवादी पार्टी इवन बिलीव्स, एंड आई वांट टू टेल आवर व्यूअर्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हिच दैट एपिसोड ही मेंशनड, दैट देयर वर अ फ्यू पीपल हु वर बर्निंग द एफिजी ऑफ अखिलेश यादव, वन ऑफ द लेडीज सस्टेन्ड सम बर्न्स बिकॉज इट गॉट आउट ऑफ हैंड, ही वेंट टू विजिट द प्रोटेस्टर्स, दैट इज द काइंड ऑफ आउटरीच द समाजवादी पार्टी डज। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो रेसिप्रोसिटी फ्रॉम द बीजेपी साइड, एवरीथिंग इज गेटिंग वेरी कोर्सेंट। राधिका खेड़ा,
2: Padmaja ji, you rightly pointed out about Ajendra Singh Lodhi, who spoke a very bad word starting with H for the Prime Minister, and they didn't take any action. And it didn't end over there, Samajwadi Party. Manoj Yadav, aapke saath ke spokesperson hai Anurag ji, unhone kya kaha tha? Chirput. Chirput kaha tha na Pradhan Mantri ji ko. Bhul gaye, zyada din nahi hue. Azam Khan, unhone bhi kiska bachcha kaha tha Modi ji ko? Kaun se janwar ka bachcha kaha tha? Kutte ka bachcha. Yaad hai na aapko? बादशाह, कमीनापन, कमीना, ये सब शब्द कहे थे ना। मुझे ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए नेशनल टेलीविजन पर आप लोग तो एक सेकंड भी नहीं सोचते दुनिया के सामने, बच्चों के सामने, सबके सामने ये बोलने के लिए। लगातार मोदी जी के परिवार, उनकी माता जी पे आजम खान साहब ने कितनी बार अटैक किया, और आप क्या करते हैं, आजम खान को सर पे बिठाते हैं, दामाद बना के उनकी भैंसे खोती है, तो सरकार के अंडर आई हुई पुलिस भैंसों को ढूंढने जाती है। ये है प्यार आजम खान और अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव जी ने भी कई बार प्रधानमंत्री जी पे टॉन्ट्स लगाए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमेशा क्या बोला, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में बोला था कि अखिलेश यादव मेरे मित्र है, डिस्पाइट द फैक्ट्स कि कितने गंदे गंदे टॉन्ट्स अखिलेश यादव में बात है, क्या क्या बोला है, काशी में आखिरी वक्त बिताते हैं, याद है ना वो बात 2021 दिसंबर में, आपको तो याद होगा ये शब्द कहे थे अखिलेश यादव ने। खत्म करने दीजिए, नफरत के भाईजान किसने कहा था, वो भी आप ही के एक ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुआ था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के खिलाफ, आपको याद है। फिर फिरोज खान, आपके समाजवादी पार्टी के संभल के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, उन्होंने मोदी जी के लिए क्या कहा था, ये लोग बंदर हैं, ये लोग बस आतंक मचाते हैं, मोदी जी के लिए कहा था। तो ये तो बस मैं थोड़ी सी बातें बता रही हूँ, बट पद्मजा वन सेकेंड, आप उसके बाद बोल लीजिएगा। नाउ व्हेन द सुप्रीम मैट्रियार्क सेज मौत के

0: सौदागर, नीच आदमी, दे कॉल प्राइम मिनिस्टर रावण, भस्मासुर, दुर्योधन, बोटी
1: ओके
0: बोटी बोटी बोटी कर देंगे उसको, तो इन्होंने समाजवादी पार्टी में ले लिया था। उसके बाद कांग्रेस ने टिकट दी, एमपी बन गए इन दोनों के अलायंस में, एंड ही हैज अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद समाजवादी पार्टी।
1: ओके लेट हिम रिस्पॉन्ड, यू आर टॉकिंग अबाउट इमरान मसूद। यस अनुराग भदौरिया,
2: देखिए देखिए देखिए इतने सारे इन्होंने गिराए तो इनसे पूछिएगा कि मैं बोलना भी नहीं चाहता राम जादे, उसके बाद आगे क्या था, किसने बोला था ये शब्द बताइए आप, आपको तो याद होगा किसने बोला था, किसने बोला था यहाँ पे,
0: उन्होंने तो नहीं बोला था,
2: अनुराग
0: जिन्होंने कहा
2: ठाकुर
0: था
2: ने
0: कि
2: किस शब्द का
0: ब्राह्मण
2: इस्तेमाल
0: हमारे
2: किया था,
0: दिए हुए
2: सुनिए मैं
0: पैसों
2: आपके
0: से
2: बीच में
0: चलते
2: नहीं
0: हैं,
2: बोला, मैंने
0: ब्राह्मण
2: आपके
0: और
2: बीच में नहीं बोला,
0: वैश्या।
2: मैंने आपको सुना इतना, हमने,
0: आपको अच्छा
2: अरे
0: लगा
2: मैंने
0: था?
2: आपको सुना, मुझे सुनिए ना, हर तो मैं जवाब दे रहा हूँ, मैंने आपको सुन लिया, गद्दारों को गोली मारो किसने बोला था ये आपको याद होगा, आपको ये भी याद होगा कि किस तरह की गाली दी गई थी, एक एक एक जाखड़ा जी थे आपके सांसद, उन्होंने क्या बोला था, 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था, बोला था उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, बहनों को यही बोला था ना उन्होंने, और सुबह से लेकर शाम तक आपकी पार्टी के लोग, आपके कार्यकर्ता और जिले के प्रेसिडेंट और पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोलते रहते, मैंने मेयर की बात की तो आपने जवाब ही नहीं दिया। सवाल यह है कि आप उन शब्द आप अपने शब्दों की लिस्ट गिनाते हो, ये गिनाने की जरूरत नहीं है, भाषा की मर्यादा 2014 के बाद से गिरी है, ये जिम्मेदारी हमारी आपकी संयुक्त होती है, लेकिन बीजेपी की वजह
1: You know,
2: से
1: I really appreciate your concern about भाषा की मर्यादा, but very gently I would like to remind you, अनुराग जी, कभी जाकर के समाजवादी पार्टी मीडिया सेल का आप हैंडल देखिएगा प्लीज, और अगर वो इस वक्त देख रहे हो टीवी पे, आप प्लीज भाषा की मर्यादा थोड़ा सा एक मैनुअल आप प्रिपेयर करके
2: बोला तो,
1: जो भी उस हैंडल को देख रहा है उसको जरूर दीजिएगा, क्योंकि दैट हैंडल बॉस दैट इज अ केस स्टडी ऑन द लोअरिंग ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स।
2: राधिका खेड़ा जी, एक भी ऐसा शब्द सुना दे जो श्री अखिलेश यादव जी की, अखिलेश यादव जी ने अमर्याद भाषा का इस्तेमाल किसी के लिए भी किया हो,
0: अभी तो पढ़ के सुनाया,
2: आप
0: काशी में आखिरी
2: बार
0: बताते हैं दिसंबर 2020
2: परिवार
0: प्रधानमंत्री जी काशी
2: कैसा बातें कर रहे हैं,
0: उद्घाटन कर रहे थे,
2: अरे
0: क्या
2: वो राजनीतिक चुनाव की बात है,
0: बताया जाता है
2: चुनाव की बात है, चुनाव हार जाएंगे, चुनाव हार जाना बोलना अलग बात है, गाली बकना अलग बात है, कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें
0: बात
2: करते हैं आप, चुनाव हार जाना बात अलग होती है, आपको नहीं पता
0: रहने
2: है।
0: के आप, लिए आप, जगह अच्छी है।
2: आप समझ रहे हैं
0: समय पर
2: कभी भी नहीं वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मैं ये वादे के साथ और चैलेंज के साथ आपको बोलता हूँ, श्री अखिलेश यादव जी कोई भी भाषा का ऐसा इस्तेमाल नहीं करते जो अमर्यादित हो, असंसदीय हो, असंसदीय हो।
1: ओके लेट मी ब्रिंग इन तुषार गुप्ता नाउ, एंड आई वांट टू गो बैक टू द ओरिजिनल कंस्पिरेसी थ्योरी दैट आई हैड स्टार्टेड विद। Is this deliberate? Because I refuse to believe that Ajay Rai would not have known somebody around him has a smartphone that this will be captured. And he used that word twice. He said, Wahi jisne Modi ka, and then he said, Wahi jisne Modi ka. So he repeated it twice. Either there is a sense that this kind of language is going to fire up my worker, that my worker actually likes this. He wants to hear this. He is going to work harder. Is that really a sense?
3: No. I think that kind of language will get the worker fired in the eyes of the electorate. They'll fire him from his job. It's that simple. Anurag Bhadauria here was giving a long list of cuss words that were hurled at his party. It is his party that has been accusing the Congress of enabling the BJP in the center. समाजवादी पार्टी का ये बयान था ना कि कांग्रेस की वजह से आज बीजेपी सत्ता में है, तो अनुराग भदौरिया जी जो अजय राय जैसे भाषण देते हैं, जैसे गाली गलौज करते हैं, आपको लगता है यूपी की महिलाएं सुनेंगी, उनको क्या लगेगा, यूपी के बच्चे सुनेंगे, युवा सुनेंगे, क्या सोचेंगे, आपको लगता है वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या वो आपकी पार्टी के साथ जाएंगे जो कांग्रेस के साथ खड़ी होती है, आपको लगता है कि भाजपा जीती है तो क्या हुआ कैसे हुआ, यही यही कारण है, ये जो भाषा है जो गाली गलौज हो रही है, आप कहते हैं भाजपा किस नेता ने वो कहा, उसने ऐसा कह दिया तो हमने ऐसा कह दिया, कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है उसकी हालत हो चुकी है ऐसे ही कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनके अलायंस पार्टनर्स उन्हें गद्दार कहते हैं तो वो प्रधानमंत्री को गद्दार कह देते हैं,
2: नहीं नहीं आप
3: उनके
2: क्या
3: अलायंस पार्टनर को छोड़ना चाहते हैं तो वो बीजेपी
2: क्या घोषित प्रवक्ता लग रहे हैं,
3: अलायंस पार्टनर
2: उनको बड़ी दिक्कत है भैया इंडिया गठबंधन से,
3: क्यों तकलीफ हो रही है?
2: क्या है आप, क्या
1: पॉलिटिकल एनालिस्ट है अनुराग भदौरिया? पॉलिटिकल एनालिस्ट है और एक तरीके से तो आपको खुशी होना चाहिए ना, जितना अजय राय ऐसा बोलेंगे उतना आपकी स्थिति मजबूत होगी। आज अखिलेश यादव ने बोली दिया है कि सारी की सारी सीटों पर इस बार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ने को तैयार।

0: हो रहे हैं, एक तरीके से आपके जमीन तैयार कर रहे हैं अजय राय।
1: 400 देखो, समाजवादी पार्टी हमेशा 403 सीटों पे मजबूती से लड़ती आई है, उनके कार्यकर्ता मजबूत रहते हैं, तभी हमने 37 सीटें जीती हैं लोकसभा में 2024 में, और बीजेपी को 33 पे समेटा है। और जब हमारे साथ कोई अलायंस में भी लड़ेगा तो उसको भी मजबूती मिलती है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता मजबूत होते हैं। तो कोई भी अलायंस मेरे पास हमारे साथ आता है तो उसको भी हेल्प होती है, क्योंकि हमें जीतना है बीजेपी को, हराना है बीजेपी को। हराने के लिए आप समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत है, गांव गांव में संगठन है, इसलिए बीजेपी को हराना है हमें। तो मेरा
0: तो आपके जो सारे मजबूत कार्यकर्ता है उसमें राजकुमार भाटी जी भी शामिल है ना, जो कभी गुजर के बारे में बोलते हैं, कभी ब्राह्मण के बारे में बोलते हैं, उनको एकदम आप आगे रखिएगा अपने सारी 400 सीटों पर जब लड़ने जाएंगे तो, और सब जगह रखिएगा, जहां पर ब्राह्मण है वहां पे भी रखिएगा, जहां गुजर है वहां पे भी रखिएगा।
1: व्यक्तियों को सुने, ऐसे व्यक्तियों की समाजवादी कभी इंडोर्स नहीं करता ना, समाजवादी ऐसे व्यक्तियों
0: को इंडोर्स किसी को नहीं करता, पर एक्शन नहीं लेते किसी के खिलाफ।
1: सुन तो लीजिए,
0: एंडोर्स तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे ना, अगर कोई कहेगा कि ब्राह्मण और वैश्या का कोई कंपैरिजन करेगा उसको एंडोर्स नहीं करेंगे।
1: ऐसी भाषा मैं बोल रहा हूँ ना, अरे मैं तो खुद क्षत्रिय हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ऐसी भाषा का जो इस्तेमाल करेगा समाजवादी पार्टी उसका कभी सम्मान नहीं करेगी, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ।
0: अरे तो बिना सम्मान का प्रवक्ता तो रखा हुआ है, भले से आप सम्मान ना करें पर आपका आपका प्रवक्ता तो है सही। वो
1: व्यक्तियों की समाज सुन तो ऐसे व्यक्तियों की समाजवादी पार्टी में कोई जगह नहीं होती है, जो किसी भी जात या वर्ग विशेष के बारे में शब्दों का इस्तेमाल करता है।
0: ओके, वेरी क्विकली आई वांट टू ब्रिंग इन वन मोर एंगल, बिकॉज़ रिमेंबर एवरीवन विल कीप ट्राइंग टू डिस्टेंस देमसेल्व्स एंड से यस दिस वाज सेड बट वी डोंट एंडोर्स इट, एज इफ समबडी इज गोइंग टू कम एंड एंडोर्स एंड से यस ही अब्यूज्ड एंड वी कंप्लीटली एंडोर्स इट, और यू विल से वी डोंट रिस्पेक्ट देम बट यू विल कंटिन्यू टू प्लेटफॉर्म देम। आई वांट टू रिमाइंड आवर व्यूअर्स हाउ कॉमन कर्टेसी समटाइम्स इज नॉट दैट कॉमन। यू हैड द Prime Minister in just the last few days in 2024, the Congress President Mallikarjun Kharge, he actually fell ill during a rally in Jammu and Kashmir. At that time the Prime Minister reached out, asked about his well-being, he dialed Mallikarjun Kharge and asked him about his health. There have been plenty of people within the Congress, not just Sir Kharge ji, Sonia Gandhi in 2016 when she fell ill during a road show in Varanasi, the same seat where the Prime Minister and Ajay Rai are face to face, the Prime Minister offered to send an aircraft and medical help to Sonia Gandhi at that time when she fell ill in the middle of the elections. Lalu Prasad Yadav and Mulayam Singh Yadav, there was a pre-wedding family function, they're also related to each other through marriage, and in 2015 the Prime Minister attended that event in Saifai. The point I'm trying to make is that these common courtesies are extended. There have been plenty of people, journalists, who have been very, very critical of the Prime Minister. He has condoled their death after they have passed away. Why can there not be some kind of reciprocity in all of this is my simple question. Think about it. Meanwhile, Radhika Kheda, respond.
2: The Samajwadi Party spokesperson was saying there's no place for people like Mr. Bharti, or even for that matter Manoj Yadav, who the very next day after Mr. Bharti spoke said ki mere hum jo daan dete hain usi se brahmanon ka ghar chalta hai. So he said since there's no place for such people, I'm sure अनुराग भाई आप लोगों ने उन दोनों को हटा दिया होगा एज स्पोक्स पर्सन, प्लीज वो भी बता दीजिएगा, ट्वीट कर दीजिएगा, करवा दीजिए, इतना जहर आप लोगों का काउंट करता है, ये भी ट्वीट आ जाना चाहिए दैट हमने उनको पार्टी से निकाल दिया। हैविंग सेड दैट, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी डिड नॉट इनहेरिट पावर थ्रू अ फैमिली सरनेम कॉल फ्रॉम द गांधीज और लाइक द यादव फैमिली, he earned it through sweat and blood and tears of serving this nature. Every time these people's dirty mouth vomits venom on him, the 1.4 billion people of India treat it as an insult to their own vote. Go ahead, bleed your toxic frustration as much as you want out on the roads, on national television, in debates, or even like Rahul Gandhi does, gaddar gaddar kehke, because the more that you people,
0: okay, 30 seconds Anurag Bhadauria, last 30 seconds,
2: deeper you bury your own party's future.
1: Bas main to bas itna hi bolunga, bar bar Bharatiya Janata Party jo parivarvad ki baat karte hain, inhe shayad pata nahi hai कि कोई इस देश के अंदर में लोकतंत्र में जनता चुनती है। बहुत परिवार के लोग चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर रहे, उनके बेटे कुछ कर नहीं पाए। श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी दम पे पार्टी को आज 37 सीटें दिलवाई है।
2: श्री अखिलेश यादव जी ने
1: 37 सीटें दिलवाए हैं उनके पिता का आशीर्वाद के साथ, जनता के आशीर्वाद के साथ, जनता के सपोर्ट से उनको 37 सीटें मिली हैं। इसलिए आप जैसे लोग परिवार का मतलब समझते नहीं है, परिवार का मतलब सिर्फ आप उसका सरनेम समझते, कर्मठता नहीं समझते, उनका काम नहीं
0: समझते। Elections are around the corner. We will have much more time to discuss that at length. But as far as this kind of discourse is concerned,

0: loneliness and mounting mental pressure, everything feels trapped within the walls of this room. An uncle pays for her coaching fees, travel and living expenses. Madhu has been preparing and attempting to crack NEET UG for 4 years. And in 2026, she was confident of a 600 plus score that would get her an admission into a medical college.
1: ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था. इमोशनली तो ऐसा लगता है, देखिए कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है. अंदर से मन नहीं करता है, अंदर से कई बार चीज़ें वही रिपीट करना है, बार बार वही रिवीजन करना है, वही रिवीजन करना है. बहुत फ्रस्ट्रेशन सा होता है, ऐसा लगता है सब कुछ किसी काम का नहीं है. कई बार तो ऐसा मन करता है कि सुसाइड कर ले.
2: Basically, we need to observe the behavior. So in the behavior, the person's interpersonal connection would be affected. The person would be more irritable. The person may be more withdrawn. Or sometimes the person may act out, be more aggressive towards persons whom they would have behaved properly. They might involve in activities which give them immediate pleasure. For example, getting hooked to social media, sleeping for long hours or not sleeping at all. You know, when it comes to the food habits, the nutrition might go for a toss. You know, they might eat a lot of carbs. You know, proper nutrition might not be there, might not go out. You know, physical involvement, physical activities might not be there. So these are some of the areas, and these are some of the behaviors. If we notice in a person, then we should be careful about the emotional, burnout.
0: Every day, Madhu spends around 30 rupees traveling from Anand Nagar to her coaching classes in MP Nagar. Her family somehow manages to send 2,000 rupees for the rent. Her father took loans for her education. Her mother mortgaged her jewelry.
3: जिस दिन नीट एग्जाम कैंसिल होने की न्यूज़ आई थी, तो उस दिन क्या हुआ था कि मैं छुट्टी पे थी, घर पे थी, तो मेरे पास एकदम से बच्चों के कॉल आना शुरू हो गए. मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, और उस टाइम तक हमने न्यूज़ भी नहीं देखी थी. बच्चे ऐसे थे जो लिटरली रो रहे थे फ़ोन पे. तो मैंने पूछा क्या हो गया, और वो बच्चे ऐसे थे जो अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं थे, दूसरे स्टेट से आए हुए थे, वेस्ट बंगाल से आए थे, मणिपुर से आए थे, वो यहाँ PG लेके रहते थे. और उनकी कंडीशन ये थी कि उनकी मम्मी ने जो उनकी ज्वेलरी होती है वो उसे गिरवी पे रख के यहाँ की उन्होंने फीस भरी.
0: Lakshya's father is a farmer, and he grew up in a village near Jaipur. After he scored well in the class 12 exams, Lakshya's father decided that his son should become a doctor. So Lakshya went to Sikar and joined a coaching center there to prepare for NEET UG. He appeared for the exam in 2026, but when days later the exam got cancelled, it was emotionally hard to accept for Lakshya. In his family, someone had already suffered. In 2015, his uncle had attempted NEET UG, but then too, his was the center where the exam got cancelled. And he never became a doctor.
4: कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें हो रही हैं ना, उससे डिसअपॉइंटेड तो हैं ही ना, कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलियर है. पेपर को एक एजेंसी को बहुत एजुकेशन ही नहीं है, तो हमारा हम क्या कर लेंगे.
5: एक बार एक साल पूरी तैयारी की, फिर उसने एग्ज़ाम लिखा, फिर आया, पेपर लीक हो गया. बच्चे की तो मेहनत है ही है, पेरेंट्स को फिर उसका मनोबल बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बच्चा तो टूटता ही टूटता है, साथ में माँ बाप की भी जो आशाएं थी वो भी टूट जाती है.

0: सबकी जेब पर भी फ़र्क पड़ता है, बच्चों पर भी फ़र्क पड़ता है, और घर की स्थिति सर मिडिल क्लास लोगों पर तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है।
1: Earlier, Arnav was preparing while staying in a hostel, but now he has returned home. He has no other option but to start preparing again. But Arnav remains worried about what the paper will be like this time. His mother too is fearful about the uncertainty and confusion that Arnav is undergoing as he continues with his preparations.
2: गार्जियन अगर प्रेशर नहीं डालते हैं, गार्जियन एक्सेसिव फेथ करते हैं कि नहीं ये बच्चा अच्छा है करने में, इसका तो हो ही जाएगा, तो वो जो एक फेथ होता है ना, कई बार बच्चा उसको बर्डन के रूप में ले लेता है थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा फील होता है कि नहीं मैं नहीं कर पाया तो सबका एक्सपेक्टेशन है मुझ पर, मुझे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मेरे गार्जियन जो मुझे बचपन से यहाँ लाए मुझे पढ़ाए, मेरे सर मेरे भैया जो भी सारे टीचर लोग हैं मेरे, मैं सबका एक्सपेक्टेशन को मीट करना थोड़ा एक चैलेंज रहता है कि नहीं मेरे को ऐसा करना है ताकि मैं उन लोगों से भी कह सकूँ कि सर आपने मुझे पढ़ाया तो मैंने आपके लिए रिजल्ट दिया मैंने किया, तो थोड़ा प्रेशर रहता है, बट ये फेथ भी अच्छा लगता है कि चलो सामने वाले आदमी को फेथ है मेरे पे कि मैं कर सकता
3: हूँ। बच्चे बड़े परेशान हैं कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं, कुछ तो ऐसे हैं कि रोने लगते हैं डायरेक्टली कि अब मैम नहीं होगा हमसे, उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है कि अब क्यों नहीं होगा, होगा तुमसे होगा, लेकिन कुछ देर के लिए हम उन्हें मोटिवेट कर देते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन होता है टेम्परेरी, अगले दिन उनका फिर वही हाल हो जाता है, फिर उनको समझाना पड़ता है।
1: Harish is from Sikar and this was his fifth NEET attempt. Harish says that if someone truly wants to become a doctor, then the number of attempts don't matter.
4: अगर मुझे डॉक्टर बनना ही है तो वो चार अटेम्प्ट पांच अटेम्प्ट मायने नहीं रखते आपके लिए, लेकिन जो अपने दोस्त जा चुके हैं मेडिकल कॉलेज में उनसे भी अपने को मोटिवेशन मिलता है, लेकिन मन में रहता है कि यार मेरा दोस्त जा चुका है मुझे भी जाना ही है, तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप अपने आप को मोटिवेट फील करोगे, ऐसा कुछ नहीं है कि रीनीट हो रहा है मैं डिप्रेस हो जाऊंगा ऐसा कुछ भी।
2: जो रीनीट के पेपर होते हैं वो एक्सेसिवली ज़्यादा टफ होते हैं, क्वेश्चन की वाशनेस बढ़ जाएगी, तो वो जिस डेप्थ तक पढ़ा था उसको उसका वाशनेस बढ़ाना पड़ जाएगा, तो एक प्रेशर तो ये है कि जितना पढ़े उतना रिवाइज करना है और प्लस कुछ एडिशनल चीज़ें पढ़ने वाला, तो वो बच्चा पढ़ने वाला हो नहीं पढ़ने वाला हो जिस भी तरह का स्टूडेंट हो, एवरेज हो टॉपर हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, उसको दोबारा और मेहनत करना ही पड़ जाएगा उस पर, और ये एक प्रेशर फील होता है।
1: The NEET examination, introduced by the Medical Council of India, was first conducted in May 2013, and it replaced several medical examinations that had been there across the country. That first time, more than 10 lakh students had registered to take the exam. But not everyone was happy, and cases were filed in the courts. In July 2013, the Supreme Court of India put a stay on the exam in response to petitions received against the exam and said that the medical council could not interfere in the admission process. NEET made a comeback in 2016 and by 2020 NEET had become the one and only entrance exam for medical colleges across the country. Alia Fatima scored 99% in her board examinations and she had planned to prepare for NEET UG 2027 with the dream of becoming a doctor. But she is no longer sure she wants to become one because of what happened in 2026. When the examination got cancelled, she began feeling mentally disturbed and uncertain about whether future efforts would be rewarded fairly.
5: Becoming a doctor had been my goal and aim and aspiration from class 5, and it was really very shocking to hear that, and because of that I took biology in my class 11th and 12th, so it affected me much, but seeing owing to the circumstances I had to take the tough decision of, you know, leaving this particular stream of biology and NEET UG and going into the career of law where I feel that I would definitely be doing my best.

अनफॉर्चुनेटली जो रिज़ल्ट आया नीट का, और जो उसके साथ इतना बड़ा केस हो गया है पेपर लीक का, तो उससे पूरी फैमिली हम लोग बहुत शॉक्ड हैं। और अब कुछ समझ में नहीं आता कि आगे ये कोशिश करें एक साल तक के पूरी तरह से पूरी तैयारी करें, और फिर उसके बाद अगली बार पता नहीं क्या हो। तो ये डर सबके दिमाग में बैठ गया, तो डर के मारे इन्हीं ने कहा कि मैं नीट कंटिन्यू नहीं करूँगी और उसको जो है चेंज करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो मेरे प्रोफेशन में आओ, तो क्लैट करो, कोई अच्छा नेशनल कॉलेज लेके आओ, और उसके बाद जो है फिर तुम ज्यूडिशरी में आओ और देश के लिए, अपने कंट्री के लिए कुछ करो।

0: NEET till 2018 was conducted by the Central Board of Secondary Education, CBSE. But the responsibility was transferred to the National Testing Agency. NTA conducted the first NEET UG examination in 2019. NEET UG exam is conducted in 9 different languages other than English and Hindi: Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Marathi, Odia, Tamil, Telugu, and Urdu. While most major entrance exams in India take the computer-based route, NEET remained with the optical mark recognition or OMR technology that reads and captures data from paper forms. Even in the NTA basket of 16 national level examinations, NEET is the only one which remained in the OMR format.
1: If we look at 2020 se 2026 tak ka dekhein, abhi tak 2 se 3 bar paper already leak ho chuka hai. To NTA ko is cheez mein dhyan dena chahiye ki agar paper leak ho raha hai to kahin na kahin se to ho raha hai. तब भी उन्होंने उस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और एंड में बोला कि हमें पता चलते हमने रिपोर्ट कर दिया. उनके रिपोर्ट करने से कुछ फ़ायदा थोड़ा ना हो रहा है, हमें तो वही करना पड़ रहा है. और जैसे कि पेपर के बाद हम तो फ्री माइंड बैठ गए, 20 दिन ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम लोग अच्छे से थे कि हमारा तो हो जाएगा. पर वो 20 दिन का जो लॉस हुआ हमने किताबों पर ध्यान नहीं दिया, उसको भी तो सर रिकवर नहीं कर सकते ना. और प्लस फिर वही है कि पेपर भी कैसे भी आ सकता है.
0: Inside Madhu's tiny room in Bhopal, the doctor poster on the wall every day reminds her of her goal in life. Whatever be the obstacle, Madhu still has to struggle on, because in the harshness of life, dreams spur hope for the future.
2: नीट एस्पिरेंट के मुझे लगता है कि उन्होंने जो ये नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं वो अपने लिए एक जो एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका होता है कि हाँ अपन नीट के एग्ज़ाम दे, डॉक्टर बने. लेकिन ये जो समाज के लोग हैं, इन्होंने ही इस एग्ज़ाम को मतलब कि तहस नहस कर रखा है, पेपर लीक करवाते हैं. उनको मतलब क्या है इस चीज़, आप अच्छा मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि आप कैसा करने से जो है अब कुछ नहीं होगा, आपको पैसे मिलेंगे और कुछ नहीं है उससे. लेकिन उससे जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो जिनका माइंडसेट अच्छा होता है, जिनके लिए डॉक्टर लोगों के लिए सिंपैथी होती है, वो लोग पीछे हट जाते हैं इस रास्ते से. तो ये गलत बात है कि आप पेपर लीक करवाते हो जो भी है ये.
0: Days after the NEET UG 2026 examination was cancelled, NTA announced a new examination date. While NEET will be computer-based from 2027, as promised by the Education Minister, NTA clarified that the repeat exam of 2026 will still be pen and paper. The re-exam on June 21st is expected under heightened security and monitoring measures.
3: अभी आपको मतलब दोबारा से वो चीज़ रिवाइज करनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे दोबारा, आपको देखना पड़ेगा पेपर का लेवल, देखना पड़ेगा उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. मतलब रीनीट अगर ये दे रहे हैं लोग, काफ़ी ज़्यादा बच्चे दे रहे हैं, हाँ टाइम थोड़ा कम है.

0: कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है, बट आर प्ली हैज बिन एक्सेप्टेड. वी हैव गॉटन द डायरेक्शन. इट इज अ वेरी स्मॉल विन, द फाइट इज लॉन्ग. हमें एक सही राह पे हम जा चुके हैं बस.
1: For Tushar's family, the second postmortem is a crucial step towards answers, even as fresh CCTV footage and mounting timeline difference deepen the mystery surrounding her death. Bureau Report, NDTV.
2: Shifting our focus to Maharashtra, at least 19 people have been arrested for rioting and stone pelting during the demolition drive in Mumbai's Bandra East. All the accused have been arrested and sent to police custody till May 26. But the opposition has been claiming that the manner in which this was done was apparently in a biased manner. Sample the reactions.
3: तिथे जे कोण अजित दादांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते हे लोकांची माती भडकवत होते यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे. काल जे किरीट सोमय्या लोकांची घरं तुटत असताना मी तोडली करून आधीच त्यांना जे भडकवण्याचे धंदे करत होते याचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे. म्हणजे एका बाजूला घरं तोडत असताना ज्यांनी ज्यांनी लोकांची माती भडकवली कोणी त्यांना प्रवृत्त केलं पोलिसांवर अटॅक करायला या सगळ्या घटनेची चौकशी झाली पाहिजे. जर ती झाली नाही तर हे वारंवार संपूर्ण मुंबईभर महाराष्ट्रभर असंच होईल. उद्या जर कुठे दंगल घडली तर या दंगलीसाठी जबाबदार कोण हे सुद्धा पोलिसांनी शोधून काढलं पाहिजे.
4: हर जगह भाजपा करना चाहती है. आज तो बेरोजगारी बढ़ रही है, आज देख रहे हो हीट बढ़ रही है, आज देखो किसान आत्महत्या कर रहा है, आज युवा बेरोजगार है, और ये सब परिस्थिति में महिला भी पूछ रही है कि जो कीमतें हैं आसमान से टकरा गई है. लेकिन ये नहीं, आपको कहीं भटकाना है, पूरे इशू को कहीं और लेके जाना है.
5: और जो लोग बेचारे छोटे छोटे घर बना के बैठे हैं उनको इलीगल बोल के तोड़ दिया जाएगा तो जाएंगे कहाँ वो. ये बुलडोजर कार्रवाई जो यूपी से शुरू हुई है ना एक फैशन बन गया. ये बिल्कुल बंद होना चाहिए.
6: एमआईएम आए, मुस्लिम लीग आए, राहुल गांधी आए, उद्धव ठाकरे आके खड़े रह जाए, बांग्लादेशी को पकड़ पकड़ के वापस भेजा जाएगा. बांद्रा टर्मिनस बांग्लादेशी मुक्त बन गया है.
7: हम लोगों ने ऐसा बचाव पक्ष दिया कि कहा कोर्ट को कि भाई ऑलरेडी जब डेमोलिशन 19 तारीख से हो रहा था ठीक है, तो फिर पथरावबाजी 20 तारीख की शाम में अचानक कैसे होता है. जब अगर पहले से प्रिपरेशन कोई करता है तो फिर 19 तारीख को ही पथरावबाजी होना चाहिए था. तो 20 तारीख की शाम में कैसे पथरावबाजी हो सकती है. ये पथरावबाजी जब हुई है जब मस्जिद को डेमोलिशन और जो मस्जिद का जो गुंबद है जो तोम बोला जाता है उसको डेमोलिशन किया, तब जाके लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई और वहाँ पर फिर मोमेंट थोड़ा सा हीट हो गया, तब जाके वहाँ पे फिर पथरावबाजी हुई. दोनों तरफ से फिर लाठीचार्ज भी हुआ, यहाँ से वहाँ से पथरावबाजी भी. जब अगर सुनियोजित तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है तो फिर ये जो डेमोलिशन के लिए आते हैं तो 19 तारीख को ही हो जाना चाहिए था ना. ये ऑल ऑफ अ सडन 20 तारीख की शाम में कैसे होता है, इस वजह से होता है क्योंकि ये लोग जानबूझ के मस्जिद को डेमोलिश करने के लिए वहाँ पर प्रेजेंट हुए थे. तो जब मस्जिद को डेमोलिशन किया गया तब लोगों ने भड़का और लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि हमको वो हमारे हाथ से हम तोड़ेंगे, हमको एटलीस्ट जो रिलीजियस बुक है वो भी हमको निकालने नहीं दिया.
2: स्लिपिंग इनटू अ वेरी क्विक ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, कीप वाचिंग एनडीटीवी.

0: Shifting our focus to Maharashtra, at least 19 people have been arrested for rioting and stone pelting during the demolition drive in Mumbai's Bandra East. All the accused have been arrested and sent to police custody till May 26. But the opposition has been claiming that the manner in which this was done was apparently in a biased manner. Sample the reactions.
1: तिथे जे कोण अजित दादांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते हे लोकांची माती भडकवत होते यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे. काल जे किरीट सोमय्या लोकांची घरं तुटत असताना मी तोडली करून आधीच त्यांना जे भडकवण्याचे धंदे करत होते याचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे. म्हणजे एका बाजूला घरं तोडत असताना ज्यांनी लोकांची माती भडकवली कोणी त्यांना प्रवृत्त केलं पोलिसांवर अटॅक करायला या सगळ्या घटनेची चौकशी झाली पाहिजे. जर ती झाली नाही तर हे वारंवार संपूर्ण मुंबईभर महाराष्ट्रभर असंच होईल. उद्या जर कुठे दंगल घडली तर या दंगलीसाठी जबाबदार कोण हे सुद्धा पोलिसांनी शोधून काढलं पाहिजे.
2: हर जगह भाजपा करना चाहती है. आज तो बेरोजगारी बढ़ रही है. आज देख रहे हो हीट बढ़ रही है. आज देखो किसान आत्महत्या कर रहा है. आज युवा बेरोजगार है. और ये सब परिस्थिति में महिला भी पूछ रही है कि जो कीमतें हैं आसमान से टकरा गई है. लेकिन ये नहीं आपको कहीं भटकाना है, पूरे इशू को कहीं और लेके जाना है.
3: और जो लोग बेचारे छोटे छोटे घर बना के बैठे हैं उनको इलीगल बोल के तोड़ दिया जाएगा तो जाएंगे कहाँ वो. ये बुलडोजर कार्रवाई जो यूपी से शुरू हुई है ना एक फैशन बन गया. ये बिल्कुल बंद होना चाहिए.
4: एमआईएम आए, मुस्लिम लीग आए, राहुल गांधी आए, उद्धव ठाकरे आके खड़े रह जाए, बांग्लादेशी को पकड़ पकड़ के वापस भेजा जाएगा. बांद्रा टर्मिनस बांग्लादेशी मुक्त बन गया है.
5: हम लोगों ने ऐसा बचाव पक्ष दिया कि कहा कोर्ट को कि भाई ऑलरेडी जब डेमोलिशन 19 तारीख से हो रहा था ठीक है तो फिर पथरावबाजी 20 तारीख की शाम में अचानक कैसे होता है. जब अगर पहले से प्रिपरेशन कोई करता है तो फिर 19 तारीख को ही पथरावबाजी होना चाहिए था. तो 20 तारीख की शाम में कैसे पथरावबाजी हो सकती है. ये पथरावबाजी जब हुई है जब मस्जिद को डेमोलिशन और जो मस्जिद का जो गुंबद है जो तोम बोला जाता है उसको डेमोलिशन किया तब जाके लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई और वहाँ पर फिर मोमेंट थोड़ा सा हीट हो गया तब जाके वहाँ पे फिर पथरावबाजी हुई. दोनों तरफ से फिर लाठीचार्ज भी हुआ यहाँ से वहाँ से पथरावबाजी भी. जब अगर सुनियोजित तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है तो फिर ये जो डेमोलिशन के लिए आते हैं तो 19 तारीख को ही हो जाना चाहिए था ना. ये ऑल ऑफ अ सडन 20 तारीख की शाम में कैसे होता है. इस वजह से होता है क्योंकि ये लोग जानबूझ के मस्जिद को डेमोलिश करने के लिए वहाँ पर प्रेजेंट हुए थे. तो जब मस्जिद को डेमोलिशन किया गया तब लोगों ने भड़का और लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि हमको वो हमारे हाथ से हम तोड़ेंगे. हमको एटलीस्ट जो रिलीजियस बुक है वो भी हमको निकालने नहीं दिया.
0: स्लिपिंग इनटू अ वेरी क्विक ब्रेक. डोंट गो एनीवेयर. कीप वाचिंग एनडीटीवी.

0: police custody till May 26. But the opposition has been claiming that the manner in which this was done was apparently in a biased manner. Sample the reactions.
1: तिथे जे कोण अजितदादांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते हे लोकांची माती भडकवत होते यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे. काल जे किरीट सोमय्या लोकांची घरं तुटत असताना मी तोडली करून आधीच त्यांना जे भडकवण्याची धंदे करत होते याचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे. म्हणजे एका बाजूला घरं तोडत असताना ज्यांनी लोकांची माती भडकवली कोणी त्यांना प्रवृत्त केलं पोलिसांवर अटॅक करायला या सगळ्या घटनेची चौकशी झाली पाहिजे. जर ती झाली नाही तर हे वारंवार संपूर्ण मुंबईभर महाराष्ट्रभर असंच होईल. उद्या जर कुठे दंगल घडली तर या दंगलीसाठी जबाबदार कोण हे सुद्धा पोलिसांनी शोधून काढलं पाहिजे.
2: हर जगह भाजपा करना चाहती है. आज तो बेरोजगारी बढ़ रही है. आज देख रहे हो हीट बढ़ रही है. आज देखो किसान आत्महत्या कर रहा है. आज युवा बेरोजगार है. और ये सब परिस्थिति में महिला भी पूछ रही है कि जो कीमतें हैं आसमान से टकरा गई है. लेकिन ये नहीं आपको कहीं भटकाना है. पूरे इशू को कहीं और लेके जाना है.
3: और जो लोग बेचारे छोटे छोटे घर बना के बैठे हैं उनको इलीगल बोल के तोड़ दिया जाएगा तो जाएंगे कहाँ. वो ये बुलडोजर कार्रवाई जो यूपी से शुरू हुई है ना एक फैशन बन गया. ये बिल्कुल बंद होना चाहिए.
4: एमआईएम आए, मुस्लिम लीग आए, राहुल गांधी आए, उद्धव ठाकरे आके खड़े रह जाए, बांग्लादेशी को पकड़ पकड़ के वापस भेजा जाएगा. बांद्रा टर्मिनस बांग्लादेशी मुक्त बन गया है.
5: हम लोगों ने ऐसा बचाव पक्ष दिया कि कहा कोर्ट को कि भाई ऑलरेडी जब डेमोलिशन 19 तारीख से हो रहा था ठीक है तो फिर पथरावबाजी 20 तारीख की शाम में अचानक कैसे होता है. जब अगर पहले से प्रिपरेशन कोई करता है तो फिर 19 तारीख को ही पथरावबाजी होना चाहिए था. तो 20 तारीख की शाम में कैसे पथरावबाजी हो सकती है. ये पथरावबाजी जब हुई है जब मस्जिद को डेमोलिशन और जो मस्जिद का जो गुंबद है जो तोम बोला जाता है उसको डेमोलिशन किया तब जाके लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई और वहाँ पर फिर मोमेंट थोड़ा सा हीट हो गया तब जाके वहाँ पे फिर पथरावबाजी हुई. दोनों तरफ से फिर लाठीचार्ज भी हुआ. यहाँ से वहाँ से पथरावबाजी भी. जब अगर सुनियोजित तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है तो फिर ये जो डेमोलिशन के लिए आते तो 19 तारीख को ही हो जाना चाहिए था ना. ये ऑल ऑफ अ सडन 20 तारीख की शाम में कैसे होता है. इस वजह से होता है क्योंकि ये लोग जानबूझ के मस्जिद को डेमोलिश करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट हुए थे. तो जब मस्जिद को डेमोलिशन किया गया तब लोगों ने भड़का और लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि हमको वो हमारे हाथ से हम तोड़ेंगे. हमको एटलीस्ट जो रिलीजियस बुक है वो भी हमको निकालने नहीं दिया.
0: स्लिपिंग इनटू अ वेरी क्विक ब्रेक. डोंट गो एनीवेयर. कीप वाचिंग एनडीटीवी.
6: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
7: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स. दिस इज अबाउट हाउ यू मूव.
8: This car makes no sense, yet it makes every sense.
9: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
10: Your friend said, yeah, Lily. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
11: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
12: Across the country,
13: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
0: Bengaluru's garbage black spots continue to remain an eyesore, with residents furious over poor waste management ahead of the civic polls. The Greater Bengaluru Authority has now launched the Declutter mobile app to tackle bulky waste dumping across the city. Residents have been alleging that daily garbage collectors refuse to pick up furniture, mattresses and other heavy waste, forcing people to dump it in the open space. Take a look at the report sent by my colleague Ritu Raj Purohit from Bengaluru.
14: Bengaluru IT city has been in news for garbage crisis all the time, and in fact the GBA had also been facing the public heat because public believes that the bulky waste are really not getting cleared on the roadside. That is really causing an inconvenience to public, to commute.